0: में आना चाहते हैं। जिमनास्ट में बहुत सारे हमने देखे हैं बच्चों को करते हुए, जिमनास्टिक करते हुए देखा है, तो हमें लगता है कि ये बच्चे तो एक जादूगर है, कि ऐसे लगता है अगर आम भाषा में बोलें कि ये बच्चे इतनी कलाबाजियां खा लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं या जिमनास्टिक का ये थ्रो कर लेते हैं, तो ये क्या करने में क्या कैसा लगता है आपको? मतलब बच्चे करते होंगे या आप कोचिंग देते समय आप बताती होंगी बच्चों को, तो एक अंदर की जो अनुभूति होती है, एक एक उमंग होती है, एक एक उत्साह होता है, वो क्या शब्दों में कैसे बयां कर सकते हैं?
1: सर, इस चीज के लिए मैं आपको एकदम शब्दों में तो बयां नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब बच्चा हमारे पास, जब छोटा बच्चा जब आता है हमारे पास, तो हम उसको एकदम से कोई लोड या एकदम से उसको वो नहीं कराते, हम धीरे धीरे उसके अंदर मनोरंजन करके उसका जो है मन मतलब प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। धीरे धीरे हमने उसको फन एक्टिविटी द्वारा करा दिया, उसको फिटनेस करा दिया, थोड़ा रनिंग वगैरह करा दिया, तो उसका क्या धीरे धीरे इंटरेस्ट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, हम उसके अकॉर्डिंग उसके स्किल्स को इम्प्रूवमेंट कराते रहते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। बच्चा खुद भी जब धीरे धीरे जब इन्वॉल्व हो जाता है ना गेम में पूरी तरीके से, तो क्या होता है उसको खुद ही मतलब खुद बढ़ने के लिए उसको मतलब उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है।
0: बहुत बढ़िया बात आपने कही है। लेखा, हम ये भी जानना चाहेंगे, जब आप कोच बनी जिमनास्टिक की, मतलब जिमनास्ट की कोच बनी, तो क्या आपने कोई कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है, जिसके बाद आपको कोच के रूप में देखा गया? उसके विषय में भी अगर कोई बच्चा जिमनास्ट सीखने के बाद कोच बनना चाहेगा तो वो कैसे बन सकता है?
1: जी सर, बिल्कुल सर। जैसे उसने बच्चे ने क्या, वो बच्चा खेलता गया, एक टाइम पे हो गया कि ठीक है अभी मुझे खेलना नहीं है, अभी मुझे क्या करना है, स्पोर्ट्स में जाना है, मतलब मुझे कोच बनना है, तो उसको क्या करने का, ग्रेजुएशन करेगा एंड बीपीएड करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, एनएसएनआईएस कोर्स होता है हमारा, डिप्लोमा कोच का।
0: अच्छा।
1: जो कोलकाता से होता है सर, तो उसको मतलब तैयारी करेगा, देन उसमें एडमिशन लेगा, एक साल का पूरा कोर्स होता है हमारा, जिसमें सिखाया जाता है कि कैसे बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, कैसे क्या करना है आपको, कैसे उनके साथ बिहेवियर रखना है, वो सब चीजें सर उसमें सिखाई जाती है, देन वो फिर वो कोच बनता है सर।
0: अच्छा, तो आप कोच बन, आप इस समय वर्तमान में रहने वाली तो आप बरेली की है, लेकिन वर्तमान में आप इस समय कहाँ पर बच्चों को कोचिंग दे रही हैं?
1: सर अभी मैं उड़ीसा में राउरकेला में जो है मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ सर।
0: अच्छा, तो वहाँ आपके अंडर में कितने बच्चे होंगे?
1: यहाँ पे 100+ बच्चे हैं, इसमें कम से कम सर बच्चे अभी 25-30 जो बच्चे हैं जिनको हम रेगुलर प्रैक्टिस देते हैं, और बाकी बच्चे 50+ बच्चे हमारे 2 डेज के लिए आते हैं, जो अभी जिनका तो सर एक प्रोसेस रहता है हमारा कि उनको हम 3-4 महीने प्रैक्टिस देते हैं, फिजिकल फिटनेस कराते हैं, देन उसमें से सर हम उनको एक टेस्ट रखते हैं, फिजिकल टेस्ट करने के बाद सर हम उसमें सिलेक्ट करते हैं बच्चों के लिए रेगुलर डेज के लाने के लिए, तो हमारा एक थोड़ा सा सर एक प्रोसेस रहता है।
0: ओके, अच्छा लेखा, ये भी बताइए, वर्तमान समय में किसी भी बच्चे के माता पिता अपने बच्चों को जिम्नास्टिक की ओर क्यों प्रोत्साहित करें, मतलब वो जिम्नास्टिक में क्यों डालना चाहें, क्या ऐसा कोई विशेष कारण हो सकता है कि वो जिम्नास्टिक में बच्चों को डालें?
1: सर बेसिकली मतलब बच्चा अगर आपका 5-6 साल की उम्र में अगर हो रहा है, हो गया है, 4 से 5 से 6 से 7 के सेट में आ गया है, तो बच्चे को सर सब जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और जो हम लोग जितना सीखे हैं, जितना हम चीजें ऑब्जर्व किए हैं, तो माता पिता को सबसे पहले बच्चे को किसी भी, इवन जिमनास्टिक में सर, किसी भी एक्टिविटी में बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी कराना बहुत जरूरी है सर आज के जमाने में।
0: जी,
1: क्योंकि आजकल बच्चे क्या है सर, फोन के बहुत आदी हो गए।
0: जी बिल्कुल
1: जी, तो मतलब मैं माता पिता से उनके यही मतलब बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए आप अपने ही जगह में कहीं पर भी देखिए, कोच कीजिए, थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा बच्चों को कुछ बनाने के लिए। तो पेरेंट्स से मैं यही चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कहीं आप देखिए कुछ, कौन सी जगह पे कहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो कोशिश कीजिए बच्चों को 1 घंटे के लिए सही, उनको फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, वो जरूर कराना है।
0: अच्छा लेखा, एक बात और, जो बच्चे जिम्नास्टिक में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: जो भी बच्चा अगर जिम्नास्टिक में अपना करियर बनाना चाहता है, तो अपना जिम्नास्टिक कोई भी अकेडमी ज्वाइन करे, अपना एक अच्छे कोच के अंदर में प्रैक्टिस करे, और डिसिप्लिन मेंटेन करे, पूरे डेडिकेशन के साथ ना पूरा 100% देने का पूरा कोशिश करे।
0: शुभकामनाएं देते हैं आकाशवाणी बरेली की ओर से, ये आपके सिखाए हुए बच्चे ओलंपिक में जाकर स्वर्ण पदक जीते और अपने देश का नाम रोशन करें। लेखा, आपने समय दिया, आपका बहुत

0: बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सर।
2: तो श्रोताओं, आज की बातचीत से ये बात साफ है कि जिम्नास्टिक केवल कलाबाजी या शारीरिक प्रदर्शन का खेल नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास की मांग करने वाला खेल है।

साथियों, शहर और जिले के युवा, जी हाँ, हम बरेली की बात कर रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ खेल, कला, संगीत, रंगमंच और विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कह सकते हैं कि अभी सीमित संसाधन रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई युवा लगातार अभ्यास और मेहनत के जरिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। प्रोग्राम के माध्यम से हमारा सुझाव तो यही है, सफलता के लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और धैर्य जरूरी है। सोशल मीडिया पर समय बिताने के बजाय उसका इस्तेमाल अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए करें।

तो दोस्तों आज के यंग बरेली में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी बातें आपको पसंद आई होंगी और आपको कुछ नया सोचने, कुछ नया करने की प्रेरणा भी मिली होगी। याद रखिए, युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं, आज की ताकत भी है।

0: खाती रहना मैं।
1: अपने सपनों पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने बरेली को, अपने समाज को और अपने देश को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाते रहिए। मैं हूँ संजय, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य कार्यक्रम में।

साथियों, अभी हम आपको सुनवा रहे थे प्रोग्राम यंग बरेली 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली से। अब लेकर आए हैं मदन मोहन के स्वर में कुछ लोकगीत। पहचानिए किस क्षेत्र का ये लोकगीत अब आप सुनेंगे, ब्रज क्षेत्र का है या बुंदेली लोकगीत है, पहचानिए।

श्रोताओं, मदन मोहन के स्वर में गाए इस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का ये सफर यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। 9 बजने को है, थोड़ी ही देर में हम रिले कर रहे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और आपने ट्यून किया है विविध भारती। आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम सनक, आवाज श्रेया घोषाल की, रश्मि विराग की रचना है और जीत गांगुली का संगीत।

0: लिए कपास की खेती को अधिक टिकाऊ बनाने और किसानों के हितों पर ध्यान देने की भी जरूरत को याद दिलाता है। आइए सुनते हैं अगला गीत, पर उससे पहले ये संदेश।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: तो इंस्टाग्राम पर विविध भारती के पेज को फॉलो किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का ये गीत, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में, रचना रश्मि विराग की और धुन बनाई है कौशिक गुड्डू आकाश ने।

बताती हूँ कि आपको पता है कपास का एक छोटा सा पौधा हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। शायद हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। खेतों में उगने वाला यही सफेद रेशा हमारे कपड़ों से लेकर कई जरूरी उत्पादों तक पहुंचता है और किसानों तथा लाखों लोगों की आजीविका का आधार बनता है। अब आप सोच रहे होंगे आज अचानक इस कपास की बात क्यों? तो ऐसा है कि 7 अक्टूबर को कपास यानी कि विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस इसी सफेद रेशे से जुड़े पूरे संसार को समझने का अवसर देता है

लिखा और संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए सत्य प्रेम की कथा फिल्म से। इसे गाया है मनन भारद्वाज और तुलसी कुमार ने।

है विविध भारती कार्यक्रम है चित्रलोक। साथियों, कुछ बातें कहने के लिए कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और कुछ एहसास सिर्फ संगीत कह देता है। तो ऐसे ही खूबसूरत एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शिद्दत फिल्म का गीत अंकित तिवारी की आवाज में। कुंवर जुनेजा ने इसे लिखा है और गौरव दास गुप्ता का संगीत।

संगीत सुनिए वरुण जैन और राघव चैतन्य की आवाजों में। इंद्रनील ने इसे लिखा है, सचिन जिगर का संगीत।

आदित्य रिखारी तुलसी कुमार की आवाजों में, आदित्य रिखारी ने इसे लिखा है और संगीत है लिजो सरिजो का।

निर्देशन में ये गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 3 से। इसी के साथ दीजिए चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को इजाजत। नमस्कार।

बहुत बहुत

नहीं रहा जो गजल सुनने के लिए।

बचपन से संगीत की तरफ रुझान था, परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन चाचा ने साथ दिया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सरंगी के उस्ताद ईमान खान और अता मोहम्मद खान से संगीत की शुरुआती तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बचपन की एक बहुत ही यादगार घटना है। उन दिनों अख्तरी बाई सही सुर नहीं लगा पाती थीं। उनके गुरु ने इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वो सीख नहीं पाईं तो डांट दिया। उसके बाद बेगम अख्तर रोने लगीं और कहा, हमसे नहीं बनता नाना जी, मैं गाना नहीं सीख पाऊंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बिटिया इतने में हार मान लिए? नहीं बिट्टू, ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ।

हिंदी फिल्मों का दौर आया तो बेगम अख्तर के सामने कोलकाता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने अपनी फिल्मों में अभिनय की पेशकश की। इस तरह सन 1933 में बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद मशहूर निर्देशक महबूब खान ने उन्हें सन 1942 में आई अपनी फिल्म रोटी की नायिका बनाया। इस फिल्म में चंद्रमोहन और शेख मुख्तार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था और फिल्म के तकरीबन 6 गीत

अपने शबाब पर थी, तब उन्होंने इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया और अख्तरी बाई फैजाबादी बेगम अख्तर बन गई। वो गायकी छोड़कर पर्दा नशी हो गई। उन दिनों में वो बीमार रहने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी की एक वजह ये है कि वो अपने पहले प्यार यानी गायकी से दूर हैं और उनके शौहर ने उन्हें प्रेरित किया। सन 1949 में एक बार फिर वो गायकी की दुनिया में लौटी और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाना गाने लगी।

और बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी का एक गाना गाया।

0: को तब से जानती थी जब वो लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। बेगम अख्तर दिल्ली आई हुई थी और उन्होंने रेडियो पर मदन मोहन का एक गाना सुना। फिर आधी रात को बेगम अख्तर ने मदन मोहन को फोन किया और कहा कि वही गाना सुनाओ, कदर जानी ना। मदन मोहन ने फोन पर ही गजलों की रानी बेगम अख्तर को ये गाना सुनाया और करीब 22 मिनट तक मदन मोहन फोन पर ट्रंक कॉल के जमाने में बार बार ये गाना सुनवाते रहे और बेगम अख्तर सुनती रही।
1: कदर

0: है उनका क्लासिकी गजलों को गाना और क्लासिकी अंदाज में गाना। गजलों की शुद्ध दुनिया को उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, नए साजों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। बेगम अख्तर गजलों की दुनिया की एक क्लासिकी आवाज के तौर पर हमेशा बहुत इज्जत के साथ याद की जाती है।
1: बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां मौसीकी ने भी नई कदरों की कदर की है। मैं नएपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये

0: 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1972 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला और सन 1975 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: गजल में एक ऐसी कैफियत है और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान, सुन के तबीयत खुश हो जाती है। तो बताइए, ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है

1974 को अचानक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गजलों की दुनिया की एक शम्मा हमेशा के लिए बुझ गई, लेकिन शुक्रगुजार हैं उन रिकॉर्ड्स का जिनके जरिए बेगम अख्तर की आवाज को हमने संजो कर रखा।

करता शकील बख्शी।

পুরী গোস্বামী ভাই কল্লু মিস্ত্রী।

0: मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: गम का अगला गीत जिंदगी और तूफान फिल्म का नाम है। मुकेश और साथियों की आवाजें सुनना चाहे कस्बा बराड़ा अम्बाला से रवि कुमार राहुल रंजीत को जयप्रकाश प्रियंका मन्नत गुरु कीरत गुरु शब्द सिंह महेशपुर खेम मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी अतीक अहमद मोहम्मद दानिश सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक अनिल जयवीर कालका से शुभचंद बजाज साहिल और बिट्टा बजाज

कृष्णा पार्क दिल्ली से।

कॉलोनी हंसी से राजू मिगलानी बबीता सुभाष बब्बू डब्बू।

के भेरूलाल बागतरिया, भोला, प्रवीण, रियांश, साथ में प्रतीक। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। दूलापुर मुरादाबाद के मुकेश कश्यप, शीतल सोनू, राजपाल और काजल मानवी, लक्ष मोहिनी, बलबीर सिंह। ग्राम बपोस्त बिरखेरा, हमीरपुर उत्तर प्रदेश के मणिराम पाल, मलखान सिंह, सुधांशु, हिमांशु। पलारी छत्तीसगढ़ के नितेश कुमार देवंगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम और कृष्णा देवंगन। मुजफ्फरपुर बिहार

रानी गीत का अवम्बहानु। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ के उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल भारती, कोलाम रोड हरगोबिंद नगर नवाशहर पंजाब के सुरेंद्र संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीश और नेक्स्ट।

दोस्तों आगे है उस गीत की ओर जो प्रोग्राम आपकी पसंद को पहुंचाएगा अपनी मंजिल पर। आज के प्रोग्राम का अंतिम गीत फिल्म है सूरज। गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और साथियों ने। सुना चाहे नजमुल हुदा और उनके बहुत सारे परिवार के लोगों ने। करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, इस्लामुद्दीन अंसारी और मुन्ना भाई आशिक हुसैन। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के पीएस निहाब का निर्मला विशाल सोपान। क्योलड़िया नवाबगंज बरेली के राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू

चंद्रपाल उल्फत, बबलू वेदपाल, संजीव गंगवार। आष्टी जालना महाराष्ट्र के दत्ता। दत्ता ढूंढने के बाद पसंद आती है बरबट बकाल, बुंडाड़ा से नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय। सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग। सिहारा बिजनौर के आसिफ चौधरी, अराफत चौधरी, अदीब और खादिर चौधरी। आसाम से हितेंद्र दास। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल। दुढांडा ओसिया जोधपुर राजस्थान के गणेश मेघबाल, चंपा मधुबाला, विवेक और पीयूष मेघबाल।

चलते चलते कहना चाहेंगे सभी सुनने वाले श्रोताओं से कि प्रोग्राम आपको जैसा भी लगा हो, आप अगर लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम और भी रोचकता के साथ जब आपके सुझाव आएंगे तो कार्यक्रम पेश करने का प्रयास करेंगे। आपके खतों के इंतज़ार में, आपके ईमेल के इंतज़ार में, आपके कमेंट के इंतज़ार में अब कार्यक्रम से अपने दोस्त संजय को दें इजाज़त।

श्रोताओं, इस गाने के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम आपकी पसंद यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 11 बजने को हैं, बस अब हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम सबरंग। सुनिए और सोचिए।

0: ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: और अब हम आपको सुनवा रहे हैं सबरंग की अगली पेशकश, एक अलग मूड, एक अलग शेड, आइए सुनते हैं।

शुभा मुद्गल और साथियों के गाए इस पेशकश के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम सबरंग यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। 11:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

फैलाते और कभी केले के छिलके भी फेंक देते हैं, शीशा खोल कर कभी चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं, कृपया ऐसा ना किया करें। अच्छा, इन्होंने साथ में कार की फोटो भी भेजी है किस तरीके से खोल करके वो लोग इस तरह से करते हैं। तो अजय सिंह जी, आपने बहुत छोटी और बहुत प्रैक्टिकल सी बात लिखी है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अपना बस अगर कुछ फेंकना है बाहर तो शीशा खोल के कार का वो फेंक देते हैं, आगे की चिंता नहीं करते हैं। तो ये आपके बात के संदेश के माध्यम से लोग इससे थोड़ा सा अवेयर हो रहे होंगे। और संदेश आपके में इन्होंने लिखा है, रॉयल अमित यादव जी ने और श्रिया यदुवंशी जी, अच्छा जी, गंगागंज रोड भानमऊ से इन्होंने लिखा है और बाराबंकी से, प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही हैं आप मैम। और लिखती हैं संदेश में कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जॉब केवल जॉब के लिए नहीं, उचित व्यवहार, संस्कार और आत्मविकास के लिए भी शिक्षित होना ज़रूरी है। यह आपका बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का एक आपका मेल और ये संदेश, ये मैसेज आया है कि एजुकेशन आपके हर मोड़, हर पड़ाव, हर पल में काम आती है और संस्कार हैं, आत्मविकास है, इन सब में आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। थैंक यू। उसके बाद वकील अहमद जी ने भी मेल कर दिया है और लिखने की आवाज़ अच्छी लग रही है। संदेश कुछ ये है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। वकील अहमद मंसूरी, कटरा हथौरी, जिला सत्यापुर से, साहिब अंसारी, शाजी अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफ शाह सिद्दीकी, अहमद नवाब, इन सब का नाम शामिल किया और इन सभी लोग को जो लोग सुन रहे हैं इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश जी का भी मेल आ गया है, ये लिखते हैं, हाँ अच्छा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिंकू सोनी हूँ और बाराबंकी से मेल किया। संदेश है कि बरसात का सीजन है तो जब आप बस या ट्रेन का सफर करें तो अपने पास कुछ बीज जैसे खरबूजे, तरबूज, करेले या अन्य तरह के, तो उनको जब आप कहीं झाड़ियों से होकर जाएं तो वहां पे उसे बिखेर दें। इससे क्या होगा कि जब पेड़ उगेंगे तो जानवरों के खाने के लिए इंतजाम हो जाएगा। और कृपया जरूर ध्यान दें, ऐसा जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मेश सोनी जी, बहुत काम की बात आपने लिखी है। चूंकि अक्सर घर में कूड़े में या फिर डस्टबिन में इस तरह के बीज या कुछ यूजफुल हो सकते हैं पक्षी के लिए, जानवरों के लिए, वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और जल्दी जल्दी इन चीज़ों को हटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपने टिप दी है वो ज़रूर आजमानी चाहिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, संदेश आपके सबके हमने शामिल करे, बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। आप लोग जितने भी लोग संदेश करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भर भर के संदेश करें और सबके मेल हम शामिल करने की संदेश भेज रहे हैं। जो आप मेल शामिल करने की पूरी कोशिश हमारी, सुनते रहे 100.7 FM रेनबो।

0: सूचनाएं, दृश्य और घटनाएं तो इंसान भूल जाता है, मगर वो ये बात कभी नहीं भूलता कि आपने उसे कैसा महसूस कराया है।
1: FM रेनबो ने अपने सुनने वालों को कुछ ऐसा ही एहसास दिया है जिसे भूल कर पाना नामुमकिन है।
0: बदलते वक्त के साथ रेडियो भी बदला, मगर नहीं बदले तो वो एहसास,
1: जैसे बरसात की किसी भीगी रात में FM रेनबो पर बज रहे संगीत को सीने से लगाए, सितारों को निहारती किसी युवती के मन के भाव जो बेहद कांति है।
0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: एलआईसी की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और एलआईसी की गारंटी।
1: एलआईसी हर पल आपके साथ।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

वेल 11:38 हो रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। आप लोग आज बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम के दरमियान आप लोग संदेश भेज रहे हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल भी हैं। तो इसके साथ रियाज अहमद जी का भी आ गया, रियाज अहमद जी का मेल आ गया, इनका प्रणाम अब तक पहुंच गया। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और ये बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है, हमको बहुत पसंद है, लिखते हैं इसका, मैं नियमित श्रोता हूँ, संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम बहुत पसंद है इनको। और लिखना चाहते हैं इस कार्यक्रम में कि मेरे दोस्त रियाज अहमद, जुबैर अली, तौफीक, पीयूष और मृत्युंजय सभी श्रोताओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। धरती को हरा भरा बनाना और पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा आपने। आइए हम सब मिलकर पौधे लगाएं, पानी बचाएं और इस खूबसूरत पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी और आपने जिन दोस्तों का नाम लिखा है उनको तक तो ये बात पहुंची, लेकिन उसके अलावा जितने भी श्रोता हैं हजारों लोगों तक ये बात पहुंची। और पर्यावरण संदेश को शामिल करके समाज में एक अच्छी अलग जगाने में हमारी मदद करेगा ये संदेश आपका, ये आपने खुद लिखा है। और आपका जागरूक श्रोता रियाज अहमद और मित्र विभूति खंड लखनऊ से, अच्छा आपने लखनऊ से ही मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज जी इतना प्यारा सा संदेश भेजने के लिए। और कौशिक वधवाना जी ने तो उनका नमस्कार पहुंच गया, लेकिन इन्होंने लिखा है कि केम छू और आज गाने बहुत अच्छे हैं, इनको अच्छे लग रहे हैं, आज का संदेश इनका है कुछ, इन्होंने लिखा है, अच्छा इन्होंने लिखा है राजकोट गुजरात से कौशिक वधवाना जी ने। और कौशिक, अस्मिता, मम्मी पापा, महेश वधवाना, परिवार पूरा, इनका संदेश क्या है चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। और हैव अ नाइस डे, इन्होंने लिखा है सेम टू यू, लिखा है जिंदगी में विचार और व्यवहार का बहुत बड़ा महत्व है, एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। बहुत प्यारी सी बात आपने लिखी, क्योंकि हमारे विचारों पर बहुत ज़्यादा हमारा डे या फिर हमारे आगे की बातें डिपेंड करती हैं। कुलदीप गुप्ता जी फिर से मेल कर रहे हैं, उनका मेल पहले भी प्रोग्राम में आया था, लिखते हैं कि घर है खराब तो उसे खराब कहिए, जरूरी नहीं हर किसी को जनाब कहिए, कागज के फूलों से महक ना आएगी इसलिए जो गुलाब है उसे गुलाब कहिए, अंधेरी रातों में जुगनू ही सूरज है फिर उस घड़ी को ही आफ्ताब कहिए, जो नींद टूटने पर भी रह जाए आंखों में उसे ही सचमुच कोई ख्वाब कहिए। सभी साथियों को सादर नमस्कार इनका। और उधौली बाराबंकी से कुलदीप गुप्ता जी ने एक प्यारी प्यारी शायरी की, बहुत ही खूबसूरत लाइनों के माध्यम से अच्छी बात इन्होंने हम तक प्रेषित की है, संदेश आपका बहुत प्यारा, धन्यवाद। धर्मवीर भारती जी भी आ गए हैं संदेश के साथ प्रोग्राम में और इनका है लखनऊ से, उन्होंने मेल किया है, लिखते हैं गुड मॉर्निंग एफएम रेनबो लखनऊ टीम एंड हेलो टू रत्ना मैम जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और लिखते हैं मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले को भी नमस्कार, मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है जी, बताइए आपका मैसेज हम पढ़ रहे हैं, संदेश आपका, हम सभी उस काम को ना करें जो दूसरे करें और आपको पसंद ना आए। अच्छा, जब दूसरे कोई ऐसा काम करते हैं जो हम लोगों को पसंद नहीं आता तो हमें भी वो काम नहीं करना चाहिए, इनका ऐसा कहना है। और लिखते हैं मैं धर्मवीर भारती शुक्लागंज उन्नाव से और बड़े दिल से इस स्टेशन को सुनता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एफएम पर सुनता हूँ, उन्नाव से तीसरी मंजिल पर एंटीना लगाकर, ओके अच्छा एंटीना लगाकर आप तीसरी मंजिल पर जाकर ये प्रोग्राम सुनते हैं एफएम रेनबो के, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया भाई, इतनी मेहनत करते हैं और एफएम रेनबो से जुड़े रहना पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सुकून, तंदुरुस्त, चुस्ती और एंटरटेनमेंट जरूर देता होगा और सूचनाएं भी, खबरें भी आप तक पहुंचाता होगा। इन्होंने पूरी टीम को थैंक यू कहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर भारती जी, इतनी मेहनत आप करते हैं एफएम रेनबो से जुड़ने के लिए। और देखिए इस तरह से मेल आते ही जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आप तक एक गाना यानी कि एक सॉन्ग आप तक भेजते हैं जो इस तरह से है, और इन्जॉय करिए।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
1: और हमें बहुत खुशी है कि आप लोग इतने ज्यादा मेल कर रहे हैं। मेल करने के साथ साथ बहुत अच्छी बातें भी आप संदेश के रूप में लिख रहे हैं जिसे हम शामिल कर रहे हैं। और आप लोग बड़े मन लगाकर एफएम रेनबो से जुड़े रहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जिनका मेल आ गया उनको शामिल करते हैं। इन्होंने लिखा है, अच्छा पूरी टीम को तो इनका धर्मवीर भारती जी का इन्होंने लिखा है, इनका मेल शामिल हो चुका है। और अजय सिंह जी का भी मेल आ गया है और शिवांशी पांडे इनका नाम है। और मैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवांशी पांडे जी। मेरा संदेश ये है कि अपने घर को साफ रखते हैं लोग, वैसे ही गंदगी ना, अच्छा गंदगी ना करें, अपने घर को सिर्फ साफ रखते हैं और दूसरों के लिए गंदगी कर देते हैं। ये इनका संदेश है कि गंदगी ना फैलाएं। तो अजय सिंह जी के नाम से मेल आए, लेकिन शिवांशी पांडे इनका मेल है, छत्तीसगढ़ से आप मेल कर दें, इसकी हमें बहुत खुशी है। इसी तरह से सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो लखनऊ को। वीरपाल सिंह जी आपका भी मेल आ गया, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। लिखते हैं माता पिता से संदेश है इनका कि माता पिता से है मार डांट कर स्कूल भेजते हैं। अच्छा ऐसा ना करें, बच्चे तो मिट्टी का बर्तन होते हैं, उनको किसी चीज़ का लालच देकर भेजो स्कूल ज़रूर जाएंगे। जैसे माटी के बर्तन में पानी ना लगाओ तब तक नहीं ढलते हैं, इस प्रकार बच्चे भी होते हैं। धन्यवाद, अच्छा कुछ मिला जुला टाइप का इन्होंने लिखा है। और यानी कि कुल इनका संदेश है कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए डांटे और मारे नहीं, उनको समझा कर, वो बिल्कुल मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं, जैसा शेप देंगे जैसा समझाएंगे उस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो इनकी बात भी अच्छी है। और वीरपाल सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहाँ से मेल किया है? अतरौली संडीला हरदोई से। एमन नवाब जी भी आ गई हैं हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है संडीला से। और लिखती हैं आपको भी बहुत बहुत हेलो दीदू, मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ एमन जी। और इनका निवेदन है कि प्रोग्राम पॉप टाइम में कुछ लोगों के नाम लाने की इन्होंने फरमाइश लिखा है कि उनको लाया जाए और अच्छा इस विषय पर ध्यान दिया जाए और हमारे मेल को भी शामिल किया जाए। संदेश है कि बिना सोचे समझे एक फॉरवर्ड बटन दबाना किसी की दुनिया उजाड़ सकता है। ओके, अफवाहें वायरस से भी तेजी से फैलती हैं। अगर अगली बार कोई अगर खबर आगे भेजने से पहले एक पल के लिए रुकिए, सोचिए क्या ये सच है, क्या इससे किसी का भला होगा, तब फिर आगे उस मैसेज या मेल को आप फॉरवर्ड करिए। और एमन नवाब ने लिखा है संडीला से मेल और इन्होंने कुछ नाम दिए जिनको ये पॉप टाइम प्रोग्राम में सुनना चाहती हैं। तो चलिए ये संदेश आपका है वो ज़रूर पहुंचाया जाएगा और इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो एमन जी हमें मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बता देते हैं कि अभी भी आप लोग मेल कर सकते हैं 100.7 FM रेनबो के प्रोग्राम संदेश आपकी गीत हमारे, लेकिन चूंकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त भी आ रहा है, 11:53 होने को है भाई, तो हम एक फिलहाल पहले आपके पास ये सॉन्ग भेजते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे वक्त क्या कहता है, कितनी इजाज़त देता है।

बहुत ही खूबसूरत सा गाना प्ले कर चुकी हूँ मैं जो आप लोग सुन रहे हैं, उसके साथ आपको नाम बता देते हैं। बाबू अंसारी जी का भी मेल आ गया है, अहमद नवाब जी का मेल हमने शामिल कर लिया था, और बाबू अंसारी जी का भी मेल है कि गानों का सिलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ्लावर्स भी भेजे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी के नाम शामिल कर लिए। 11:55 हो रहा है, तो यानी कि ये प्रोग्राम कह रहा है कि संदेश आपकी गीत हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। अगले कुछ घंटे शिल्पी रहेंगे आपके साथ, आपको अपने अंदाज में आप सभी को एंटरटेन करेंगी। फिलहाल कुछ कमर्शियल ब्रेक भी हैं और ये गाना भी आप एंजॉय करें। रत्ना शुक्ला आपसे कहती है जल्दी मिलूंगी आपसे इसी चैनल पर, अपना रखे ख्याल, और शिल्पी के साथ अगले कुछ घंटे एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो को, और उसके बाद शिल्पी के बाद तरन्नुम आपसे जुड़ जाएंगे इसी चैनल पर। तो रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

0: LIC जीवन लक्ष्य जो दे मैच्योरिटी बेनिफिट रिस्क कवर टर्म पेमेंट चुनने का फ्रीडम और सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल रिवर्जनरी बोनसेस
1: LIC हर पल आपके साथ
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ईश्वर से उन्हें और अधिक शक्ति और ऊर्जा देने की प्रार्थना की ताकि वे पूरी निष्ठा के साथ दिन रात देश और जनता की सेवा करते रहें। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गुजरात के वडनगर से काशी के लिए शुरू हुई बाइक सेवा संकल्प यात्रा के आज वाराणसी पहुंचने पर यात्रियों का स्वागत किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में सेवा यात्रियों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान यात्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुनाया गया। कार्यक्रम में सेवा यात्रियों ने यात्रा के दौरान अपने अनुभव और संस्मरण साझा किये। इटावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने पर सेवा ज्योति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और हजारों लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को सुना। भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री जितेंद्र गौड़ ने बताया कि 18 अक्टूबर तक सेवा सुशासन के कार्यक्रम चलेंगे और विकसित भारत संकल्प सभा के बाद कार्यकर्ता पूरे शहर में यात्रा निकालेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। फरवरी 2023 के बाद यह पहली बार है जब आरबीआई ने नीतिगत दर में बढ़ोतरी की है। बैंक ने वर्ष 2025 में कुल 125 आधार अंक कटौती के बाद पिछली 4 मौद्रिक नीति समीक्षाओं में रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। ये बढ़ोतरी खुदरा महंगाई बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

100.7 एफएम रेनबो यानी सुरु का लखनवी एहसास पर शत्रुपा लेकर हाजिर हो गई आपकी अपनी दोस्त शिल्पी। कैसे हैं आप सब? एन उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हर दिन बहुत खास होता है। अब अगर आज की बात की जाए तो आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज है विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे। और कपास सिर्फ कपड़े में ही नहीं है, हर घर की कहानी में है। जब बात कॉटन की हो तो हमारे देश का जिक्र दोस्तों सबसे पहले होता है, क्योंकि आपको मालूम है पूरी दुनिया को कपास से कपड़ा बनाना किसने सिखाया है? जी हाँ, जिसने सिखाया है वो है हमारा देश भारत। और क्या आपको मालूम है कि आज से हजारों साल पहले जब दुनिया को कपड़ों की समझ नहीं थी, तब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कपास उगा रहे थे और इनके सूती कपड़े पहन रहे थे। व्हाइट गोल्ड यानी कि सफेद सोने के नाम से जाने वाले कपास की खेती हमारे देश के करीब 10 राज्यों में होती है। तो भाई, कपास हमारे देश में हो रहा, और आपको हमने ये भी बताया कि कॉटन की खेती में हमारा देश सबसे आगे है। तो जब हमारा देश आगे है तो क्यों ना अपने देश को डेडिकेट करते हुए पहले ये गाना सुने, और उसके बाद हम बात करेंगे आज इस कॉटन के बारे में। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी।
1: LIC हर पल आपके साथ।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो सुरों का लक्ष्य।

वेल वर्ल्ड कॉटन डे की इस साल की जो थीम है वो है कॉटन फॉर गुड, यानी बदलाव और समृद्धि का धागा। हमें हर किसी की शुरुआत अपना चेहरा धोकर यानी फेस वॉश करने के साथ होती है, और जिस मुलायम तौलिये से या टॉवल से हम अपना चेहरा पोंछते हैं वो कॉटन का ही होता है।

अरे आप तो सचमुच ये कॉटन यानी कपास की दुनिया में खो गए, और खोना भी चाहिए भैया, आज वर्ल्ड कॉटन डे जो है। बहरहाल 12:24:36 हो गए, आपको बता दूं शिल्पी है आपके साथ आज प्रोग्राम शत्रुपे में, वर्ल्ड कॉटन डे पर बात हो रही है। और कॉटन ऐसा फैब्रिक जिसको हर कोई पसंद करता है, गर्मी के मौसम में तो खासतौर पर सबको लगता है कॉटन के अलावा कुछ नहीं वियर करना। और आप जो अपनी पर्स में करारी नोट रख के रहते हैं, यानी कागज के जो नोट होते हैं, वो हमारे देश की करेंसी, वो 100% कागज की नहीं होती है, बल्कि उसमें 75% से ज्यादा कॉटन फाइबर का यूज होता है। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है, ताकि वो फटे नहीं। तो इस तरह कपड़ों की बात करें तो सिंथेटिक कपड़ों जैसे कॉटन हमारे स्किन को एलर्जी देता है, ये हमारे स्किन को खुलकर सांस लेने देता है, यानी कॉटन खुलकर सांस लेने देता है और ये हमारे स्किन को एलर्जी जरा भी नहीं देता। तो सेहत भी, इकोनॉमी भी और आराम भी, तो है ना, क्या सौदा खरा खरा।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7 सुरों का लखनवी एहसास।

जी तो इस अपने फेवरेट फैब्रिक की बात करते करते 12:30 हो गए, समय का पता नहीं चलता है, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और हमारी बातें हैं कि कंप्लीट होने नहीं पाते। जी चाहता है ढेर सारी बातें करूं आपसे बैठ के, और बैठ के मैं बातें कर ही रही हूं, हवा के जरिए हम आपसे कनेक्ट है, यानी 100.7 की फ्रिक्वेंसी पर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। शिल्पी आपके साथ है, वक्त का पता नहीं चल रहा है मैं बता रही हूँ, लेकिन वक्त भी मैंने बता दिया है जी। तो टाइम अपना मिला लीजिए, बिल्कुल राइट टाइम 12:43:41। और आजकल दोस्तों सस्टेनेबल फैशन का दौर है, आप मानते होंगे इस चीज को, यानी बड़े बड़े डिजाइनर्स आज खादी और सूती कपड़ों को इंटरनेशनल रैंप पर ले जा रहे हैं। तो कपास की सबसे बड़ी खूबी है कि ये इको फ्रेंडली है। जी हाँ, अगर इसे आप मिट्टी में मिला दीजिए तो कुछ ही महीनों में खुद ब खुद खत्म हो जाता है, और प्लास्टिक की तरह सालों साल आपके एटमोसफियर को यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और हमें क्या चाहिए, एक साफ सुथरा पर्यावरण, एक साफ सुथरी हवा जिसमें हम सांस ले सकें, और ऐसे कपड़े जो हमें सांस लेना अलाउ करें, यानी कि ऐसा वेयर जो हमें कंफर्टेबल फील कराए, और वो है सिर्फ कॉटन से बड़े कपड़े।

दल जो कॉटन है ये हम आपको बता दें कि जब गीला होता है तो और अधिक मजबूत होता है, यानी बहुत सारे जो कपड़े होते हैं और फाइबर्स के वो गीला होने पर गलने से लगते हैं, सिकुड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं। बट कपास वास्तव में सूखे की तुलना में ये जैसे ये लिक्विड आता है यानी पानी डाला जाता है तो ये और मजबूत हो जाती है, और ये इसकी विशेष कहिए ताकत है उसकी। और इससे इसीलिए वेट वाइप्स हैं या कॉस्मेटिक पैड्स हैं या और भी चीजें जिसमें अब्सॉर्प्शन वाली चीज होती है उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन का काम करती है।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7, सुरों का लखनवी एहसान।

आराम और मजबूती का ताना बाना समेटे कॉटन हमारे बिस्तरों पर बिछे चादर के रूप में हमारा रोज साथ देता है और ऐसे चादरों पर हम चैन की नींद भी लेते हैं। भला आपके घर के पर्दे हों या टेबल कवर, हर जगह कॉटन है। हॉस्पिटल्स जाइए, नजर दौड़ाइए तो आपको हर जगह यहाँ पर कॉटन मिलेगा। यानी किसी भी बैंडेज को करना हो तो उसमें पहले आपको कॉटन की ही चीजें काम में आती हैं। और साथ ही अगर हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं यानी कि भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान के सामने घी या तेल का दीप जलाने में जो गोल या लंबी बत्तियां बनाई जाती है ना, तो वो भी कपास की ही होती है। बहुत सारी चीजें जिसमें से इन्वॉल्व है आपके कॉटन पैड्स हैं या फिर ईयरबड्स हैं, सैनिटरी पैड हैं, उन सब में इनका यूज होता है। एंड डेली लाइफ में हम हर तरफ अपने आप को कॉटन फाइबर से जुड़ा पाते हैं।

लीजिए भाई 12:54 हो गए और ये टाइम हमें इशारा कर रहा है कि शिल्पी चलो इस प्रोग्राम से जल्दी से टाटा बाय बाय करो क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में एक बार फिर तुम्हें आना है, अपने लिसनर से आपको मुखातिब होना है और सबसे बड़ी बात है कि एक नया प्रोग्राम में नए एनर्जी के साथ फिर हमें आपसे करनी है ढेर सारी बातें, आपके जाननी है व्यूज, तो बिल्कुल नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए बिल्कुल हम रेडी हैं। और इस प्रोग्राम से टाटा बाय बाय करने से पहले हम बस यही कहेंगे कि जो कपास है ये बेहतरीन और कहते हैं नेचुरल रेशे जो होते हैं उनमें से एक है और इतनी इसके सादा क्वालिटीज हैं कि आज भी ये लोगों की फर्स्ट चॉइस बना हुआ है। तो आप भी कॉटन कपड़े यूज कीजिए और इसकी जो एक खास बात है यानी जो इनकी विशेषताएं होती है जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि कोमलता मिलती है, आराम मिलता है और एब्जॉर्प्शन पावर इनकी सबसे ज्यादा होती है। और साथ ही भाई आप हमारे पास एक गाने की पावर है जो हम आप तक भेजते हैं जो आप एंजॉय कीजिए 100.7 FM पर और हम आपसे मिलते हैं बस कुछ ही पलों में यानी एक न्यूज ब्रेक के बाद फोटो पे तेरी बात में मिलते हैं।

परी कल्याण महिला सेशन की। दोपहर 1 बजे सुनिए मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि अब 2001 में इसी दिन श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज पर एक बज चुका है और आपको इंतजार होगा प्रोग्राम अनुरोध गीत का। आज दोस्तों स्टूडियो में बड़े खुशी के पल के साथ हम ये प्रोग्राम अनुरोध गीत आपके रेडियो सेट पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम प्रमुख मिथिलेश श्रीवास्तव जी मेरे साथ स्टूडियो में ही बैठे हुए हैं और हमारे एक बहुत आदरणीय श्रीमान जी यहाँ उपस्थित हैं और इस स्टूडियो में हम उनके सामने आज पहला गीत आप सबके लिए भेज रहे हैं आप सबके अनुरोध पर। और जो आदरणीय श्रीमान जी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अधिकारी महोदय मिथिलेश श्रीवास्तव जी के साथ यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम तारुफ उनका दे देते हैं। डॉक्टर सुब्रतो कुमार घोष, प्रधान वैज्ञानिक एनिमल। जी हाँ दोस्तों, आईवीआरआई से हैं हमारे डॉक्टर सुब्रतो कुमार घोष यहाँ उपस्थित हैं। स्वागत अभिनंदन। और साथ में हमारे छोटे भाई के रूप में यहाँ उपस्थित हैं राज सुबाल का। राज सुबालका जी एसटीओ एलपीडी यहाँ भी उपस्थित हैं और बड़े गौर से प्रसारण आज का सुन रहे हैं। पहला गीत आप सबके अनुरोध पर फिल्म है दूसरा आदमी। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं। सुनना चाहा है चंडीगढ़ से सतीश आनेजा और बिमला आनेजा ने। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान, इरफान आसमा और

इसी गीत को सुनना चाहे जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी सोनम और आदबा ने। इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम डब्लू अकरम वली अकरम उल्लाह अकरम। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण कोमल किरण कपिल और कुणाल मेहरा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा।

लिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित और हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल रॉय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश प्रीति और नवनीत। बड़ी ठंडी की जगह से एक लेटर खत हमें प्राप्त हुआ है और वो है जसपुर उत्तराखंड से। सुनने वाले रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार, आसिफ। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबली, राजदीप, राशि और शीतल राजेश। तो लीजिए दोस्तों, हम सब आपके साथ सुनते हैं, आपको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत। सुने और इंजॉय करें।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर अगला गीत घर फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। सुनना चाहे छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक जावेंद्र। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राई, मेरा जहां। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा, आकाश कुमार। छत्तीसगढ़ भूरसूडा से भगवानी संतोषी सेन, चंद्रप्रकाश, गजेंद्र, चिराग सेन। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश के दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, अस्मा नाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा। सारेमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। तो लीजिए पेश खिदमत है आप सबके अनुरोध पर अनुरोध गीत कार्यक्रम में फिल्म घर का ये गीत।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हम आपको सुनवा रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम अनुरोध गीत। अब

गाना है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का, अलका याग्निक साथियों की आवाज़ें। सुनना चाहे गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोचो कमरावती महाराष्ट्र के कमरुल्ला, अरनसीम बेगम, आयशा हादिया, अस्मा सालिया, शुएब खान, मुस्ताबा खान, शाहिद और राउफ। आंवलागंज बरेली से मेहताब हुसैन खान, गजाला आरिफ हुसैन। कनेरा मोहल्ला पटियाला बत्ता परिवार से मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहार का वंश। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुस्ताक, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश कौर और शराब खत्री। आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निभान। तो पेश है आप सबके अनुरोध पर फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अगला गीत भी आप सबके अनुरोध पर फिल्म है दोस्ताना, मोहम्मद रफी की आवाज है। सुना जाए दुर्गा प्रसाद मोहल्ला बीसलपुर पीलीभीत के विमल वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहे निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज बरेली के नसीम अहमद अंसारी मेरा।

जहां मुस्कान बी रेहान, अलशिफा मन्नत और उनके परिवार के सभी लोग। गंज डुंडवारा से मुनव्वर लल्ला, मिर्जा नसरीन बेगम, अरबाज खान, शहबाज खान, सूफिया, पप्पू अफसाना, मैज अभिषेक और उनके बहुत सारे साथी। ककराला बदायूं के डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास करमबीर, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भरत यादव, अमजद अंसारी और दीपक। फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब के विनोद, बीपी रंजू, अशोकपुरी सुशील, बीकेपुरी कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा, गगन, गुंजन, लालसा, रामा, कुणाल, निधि, हरीश, सतीश, राकेश, विनोद, पाली, डीसीपुरी और अरुणपुरी। अभी और भी हैं साथ में, नेहा, एकता, शमी, सुनील, बीकेपुरी और आरएसपुरी।

इस समय आप 100.4 FM आकाशवाणी बरेली के साथ हैं। अगर कहीं जा रहे हैं आपकी कार में हमारा 100.4 FM बज रहा है, गाने सुन रहे हैं, थोड़ी सी वॉल्यूम और बढ़ा लीजिए क्योंकि अब हम भेज रहे हैं आप सबके अनुरोध पर ही किशोर कुमार का वो गीत जिसे लिया है अनाड़ी फिल्म से। सुनना चाहे खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा और लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, गांधी चौक रोपड़ा पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदा बिरक, जयतेक और मीका बिरक, बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेली से विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान, कटरा चांद का मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी प्रकाश, रिंकी कपिल, साथ में है वेतराम कैलाश, सुनील खुशबू, एरोही स्वाति, बरेली जंक्शन से गरीब भाई नासिर भाई, बिक्की भारद्वाज, रामप्रसाद शर्मा, फजरुद्दीन, वंदना, मनोरमा, अजय, रीता, विनोद, ये हमारे श्रोता। जी हाँ दोस्तों, छावनी अशरफ खां होली चौक मंदिर के सामने बरेली से, परिमहल कासगंज से आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ, नवील, एम असलम सैफी, आदर्श दिवाकर, कल्लू भाई मिस्त्री, मीरगंज निकट बिजली घर। तो लीजिए पेश खिदमत है आप सबके अनुरोध पर फिल्म अनाड़ी का ये गीत।

साबन को आने दो। जी हाँ दोस्तों, ये है फिल्म का नाम। गाने को आवाज दी है यसुदास ने। सुना जाए करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नवेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। जमशेदपुर बड़ा बाबू गांव सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश, कुमारी निशा, प्रकाश, देवेंद्र जी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन, देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल। रोहिणी सेक्टर 17 से रामेश्वर दास राजोरा, सिंकी, पल्लवी, आरडी चंद्रा। न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित, अनीता, राजीव ढींगरा। रिन्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। महादेवगढ़ अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और रियांश। तो अब हम सुनवा रहे हैं आपको 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली पर आपका अनुरोध किया गया वो गीत जो अब आप सुनेंगे।

आप ऐसे ही सुनते रहिए और हम ऐसे ही आपको सुनाते रहेंगे। बीबी हो तो ऐसी, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं। अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, नवनीत, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल। पीर बोहरा बरेली से आजाद खां, देशाद, मुस्तकीम, तबस्सुम, मेहरुन्निसा।

प्रोग्राम का अंतिम गीत जो पहुंचाएगा प्रोग्राम को अपनी मंजिल पर, द बर्निंग ट्रेन, मोहम्मद रफी साथियों की आवाजें। जौनपुर लपरी ग्राम मुंडेला से कुमारी चंदा, चांदनी, आकाश, कन्हैया, रीता, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोट के नंदा, हनुमान और उनके साथी, अस्तुपुरा मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया सादिक, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनबर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद, शंकरपुर पुष्ट उसाबा, दातागंज से सोमेंद्र, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरत, श्री यादव, खरगोन मध्य प्रदेश के डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक

तो दोस्तों आज के अनुरोध गीत में बस इतना ही। आपकी पसंद, आपका अनुरोध, आपकी फरमाइशें इस संगीत सफर को और भी खास बना देती हैं। साथियों कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वे यादों में उतरते हैं, रिश्तों को छूते हैं और दिल की अनकही बात कह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इजाजत दीजिए संजय को, जुड़े रहिए आकाशवाणी 100.4 FM के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संगीत से यूं ही लवरेज होते रहिए।

0: तो दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का अनुरोध गीत प्रोग्राम का सफर यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लेकर आगे हैं प्रोग्राम रसरंग, कव्वाली और गजलों से ओत प्रोत ये प्रोग्राम अब हम आपको सुनवा रहे हैं। पहली कव्वाली सुनिए काला समुंदर फिल्म से, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजें, आइए सुनते हैं।
1: का जो गीत

100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर हम आपको सुनवा रहे हैं रस रंग प्रोग्राम। प्रोग्राम की अगली पेशकश भूपेंद्र सिंह और साथियों की आवाजों में।

तलत अजीज की आवाज में गई इस गजल के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम रसरंग यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। थोड़ी देर में हम रिले कर रहे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये आज और कल, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व.

0: सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100-100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
0: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बहुरानी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत सी रामचंद्र का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: बीन का जादू, ये फिल्म का नाम है। सुमन कल्याणपुर की आवाज, बी डी मिश्रा का लिखा हुआ गाना, संगीत एस एन त्रिपाठी का।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत, फिल्म का नाम भरोसा। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: की सहेली।
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को चंचल वर्मा का नमस्कार
2: और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: तो कैसी हैं मंदाकिनी जी?
2: भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
1: मेरे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले भी खुश होंगे और अभी जो ये माहौल चल रहा है उत्सव का, तैयारियों का, इसमें लगे होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल लगे होंगे। और देखिए उत्सव तो हर बात में है। अभी हमारे देश की जो चार बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है उसका भी पूरा देश जो है उत्सव मना रहा है ना। देखिए चार बेटियां 400 मीटर की चार चार जिम्मेदारियों को लेकर, एक तिरंगे का सपना था उनका,
1: क्या बात।
2: और यही थी भारत की महिला जिन्होंने 4x400 मीटर रिले टीम की जो कहानी हमारे देश को दी है, जिस पर आज हम गर्व कर रहे हैं। किरण जी हैं वो, किरण पहल ने दौड़ की शुरुआत की और उसके बाद एमआर पुवम्मा, फिर प्राची चौधरी और आखिर चरण में विथ्या रामराज ने मोर्चा संभाला। और चंचल शुरुआत में भारत तीसरे स्थान पर था लेकिन पुवम्मा ने रफ्तार बढ़ाकर टीम को आगे पहुंचाया और प्राची ने उसकी बढ़त को कायम रखा। और आखिरी 400 मीटर में विथ्या पर सबसे बड़ा दबाव था और बहरीन की धाविका लगातार करीब आ रही थी लेकिन विद्या ने आखिरी पलों में हिम्मत नहीं छोड़ी और कुल मिलाकर इन चार बेटियों ने 3:29.69 में पूरा किया अपना राउंड और स्वर्ण पदक जीत लिया।
1: तो हम भी बधाई देते हैं इन चारों बेटियों को और देश की सभी बेटियों को जो इतनी लंबी दौड़ लगाने का, ऊंची छलांग लगाने का, पंख फैलाकर उड़ने का सपना देख रही हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे खूबसूरत बात यह है चंचल कि इन चारों की कहानियां अलग है, संघर्ष बिल्कुल अलग है ना, लेकिन मंजिल एक थी। क्या? कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना। और ये जो जीत है हर उस लड़की के लिए, हर उस महिला के लिए, युवती के लिए, स्त्री के लिए एक संदेश है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर कदम रुकते नहीं है

0: हौसला बनाए रखती हैं बेटियां तो मंजिल की रफ्तार बिल्कुल आप पा सकती हैं।
1: और इसमें सबसे बड़े साथ की जरूरत होती है परिवार के, तो बेटियों का हौसला बढ़ाइए, उनके हौसले को कभी भी गिरने मत दीजिए। और बता देते हैं कि आज किस विषय पर सखी सहेलियां बात होगी, तो महत्वाकांक्षा की बात होगी। और जब महत्वाकांक्षी होती हैं बेटियां या कोई भी, तो उनका भविष्य निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है, इस बारे में बात होगी। और आज साड़ियों का दिन है, यानी बुधवार के दिन हम किसी एक खास साड़ी की बात करते हैं, तो नंदना साड़ी की बात की जाएगी। और फिर हम हमारे जो श्रोता हैं किसी एक शब्द पर अपने विचार हमें देने वाले हैं, तो वो शब्द है प्रकृति। यानी
0: क्या बात है,
1: शब्द हमारा और विचार आपके।
0: बिल्कुल, तो प्रकृति के बारे में ये बताइए कि वो आप प्रकृति से प्रेम कितना करते हैं। अभी आप प्रकृति का डेफिनेशन तो लिख देंगे कि प्रकृति ये है, हम आप प्रकृति से कितना प्यार करते हैं।

0: इस बारे में बात होगी। और आज साड़ियों का दिन है यानी बुधवार के दिन हम किसी एक खास साड़ी की बात करते हैं, तो नंदना साड़ी की बात की जाएगी। और फिर हम हमारे जो श्रोता हैं किसी एक शब्द पर अपने विचार हमें देने वाले हैं, तो वो शब्द है प्रकृति। यानी
1: क्या बात है,
0: शब्द हमारा और विचार आपके।
1: बिल्कुल, तो प्रकृति के बारे में ये बताइए कि वो आप प्रकृति से प्रेम कितना करते हैं। अभी आप प्रकृति का डेफिनेशन तो लिख देंगे कि प्रकृति ये है, और हम आप प्रकृति से कितना प्यार करते हैं, आपने अपने जीवन में कितने पौधे लगाए, पेड़ लगाए कि नहीं, अपने घरों के आसपास आपने प्रकृति को स्थान दिया कि नहीं।
0: और प्रकृति का अर्थ हर जगह जाकर थोड़ा सा बदल जाता है। कहते हैं ना कि भाई आग की प्रकृति है जलाना, तो यहाँ भी प्रकृति का अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि तीन तरह की प्रकृति के शरीर होते हैं, वात प्रकृति, पित्र प्रकृति और कफ प्रकृति। तो प्रकृति का जो शब्द है वो वहीं कहीं कहीं उसका अर्थ भी बदलता है।
1: आप इसको बड़े डेफिनेशन में ले सकते हैं। अब हमारे श्रोता किस अर्थ में प्रकृति को लेकर अपने विचार लिखेंगे उसका हमें इंतजार रहेगा।
0: बिल्कुल, इसके अलावा विश्व कपास दिवस है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और गुड़ की मिठाई यानी कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान उनका होता है, वो गुड़ की मिठाइयां किस तरह बनाते हैं, खाते हैं, इस पर बात होगी। लेकिन मिठाई की बात और मीठा का गीत ना हो।
1: बिल्कुल, ये गीत होना चाहिए।

0: हाँ जी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।
1: और हमारे जो साथी हैं सुनने वाले, वो भी हर जगह हमारे साथ होंगे। बहुत सारे संदेश वो हमें भेज रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण के बारे में। तो मंदाकिनी जी, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कुछ बड़ा सोचना या बड़ी अपेक्षाएं रखना। और देखा जाए तो एक सफल इंसान बनने के लिए ये जरूरी भी होता है,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अगर हम एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं ना, तो किसी बड़े लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाता है।
0: मुश्किल हो जाता है। और चंचल, महत्वाकांक्षा या आवेग, दोनों ही जो है हमारी एनर्जी होते हैं। बस दोनों में फर्क इतना ही है कि महत्वाकांक्षा में एक दिशा होती है और आवेग जब आता है तो उसमें गति होती है। और जब गति बिना दिशा के हो जाती है तो भविष्य नहीं बनता, बिखर जाता है। और महत्वाकांक्षा अकेली भी खतरनाक हो सकती है। तो परेशानी कब शुरू होती है? तब शुरू होती है जब महत्वाकांक्षा कब और कैसे को भूलकर सिर्फ क्या चाहिए पर अटक जाती है।
1: बहुत सही बात बताई आपने मंदाकिनी जी। और इसी तरह की बड़ी इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं अगर आपकी हैं, जैसे भाई आपको इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, या बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इस तरह की जो भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कई बार ये जिंदगी में बोझ भी बन जाती है।
0: बिल्कुल।
1: भविष्य आदमी भविष्य की तरफ एक कल्पना के चित्र में ही जीने लगता है। उसे लगता है कि जब वो मिल जाएगा तब मुझे खुशी होगी, और वो जो दिन है ना कि ये मिलने पर खुशी होगी या ये महत्वाकांक्षा पूरी होने पे खुशी होगी, वो दिन जिंदगी में कभी भी नहीं
0: आता
1: आता।
0: नहीं है, क्योंकि हम वैसी मेहनत नहीं करते ना चंचल।
1: जी
0: उस दिशा में हम अपना कार्य कर नहीं रहे होते,
1: जी
0: केवल ख्वाबों की दुनिया में बैठे होते हैं।
1: हाँ
0: इसलिए निराधार जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो हमें थकाती हैं, क्योंकि हम हर दिन खुद को असफल महसूस करते हैं। और आवेग जो है महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आवेग का अर्थ ही है बिना सोचे तुरंत एक्शन रिएक्शन दे देना, प्रतिक्रिया दे
1: बिल्कुल।
0: देना।
1: और इसीलिए केवल आवेग में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमें बहुत ज्यादा भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हर थोड़े समय के बाद अपने करियर की फील्ड को बदल लेना, जॉब को बदलना, दिखावे में आकर ईएमआई की सुविधाओं चीजें लेते जाना, गुस्से में इस्तीफा दे
0: दे
1: देना
0: देना।
1: अपने नौकरी पर, किसी से रिश्ता तोड़ देना। तो आवेग में किसी भी तरह का निर्णय हो, चाहे वो निजी तौर पर हो या आपके कामकाजी तौर पर हो, ये आपको तकलीफ तो देगा ही देगा,
0: बिल्कुल
1: नुकसान देगा।
0: देगा। और आपका जो एक हर्डल आपकी जिंदगी में हमेशा आती रहेगी आपके इस व्यवहार से भी।
1: जी
0: ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान यही है चंचल, कि महत्वाकांक्षा में अनुशासन को हम जोड़ें।
1: जी
0: सबसे बड़ी बात है कि भविष्य न तो सिर्फ सपने देखने से बनता है और न ही जोश से बनता है। एक सूत्र याद रखें हम, कि महत्वाकांक्षा दिशा है, अनुशासन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, और आवेग जो है वो स्पीड ब्रेकर है।
1: हाँ, यानी कि जब भी आवेग आए तो थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए, अपनी गति को धीमा कर दीजिए।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और महत्वाकांक्षा सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल।
1: असली महत्वाकांक्षा शोर नहीं करती, वो चुपचाप से रोज हमें जगाती है। क्योंकि हमारी अगर कोई सच्ची महत्वाकांक्षा है तो वही हमारा भविष्य बना सकती है, अगर तीन चीजों से हम उसको जोड़ दें, अनुशासन, धैर्य और भविष्य।
0: बिल्कुल। और भविष्य में कुछ अच्छे आपको नतीजे चाहिए तो अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा छोटा कर ले, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। 5 साल का लक्ष्य सीधे न देकर उसे 6 महीने के टुकड़ों में तोड़कर आप तैयारी कर सकते हैं, है ना।
1: और कोई भी बड़ा फैसला अगर आपको लेना है, जैसे नौकरी छोड़ना है, कोई बड़ा

0: निवेश करना है, किसी को गुस्से में जवाब देना, इन सब के लिए अपने आप को हमेशा 2 से 3 दिन का समय दे देना चाहिए कि चलिए थोड़ा रुक जाए फिर ये काम करेंगे। अगर नौकरी छोड़ने का झट से मन में विचार आया तो नहीं, कुछ रुक जाते हैं, आज ही नहीं छोड़ना। कोई बहुत बड़ा निवेश करने का सोचा तब भी थोड़ा रुक जाइए। तो जैसे शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ बहुत जल्दी अप डाउन आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो कोई भी बड़ा निर्णय है थोड़ा सा रोक लें अपने आप को, क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है कि 90% आवेग जो है वो 72 घंटे में मर जाता है। इसी तरह से कोई बड़ा नुकसान अगर हमारा होने वाला है तो उससे भी हम बच जाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही बात कही। शेयर बाजार की तरह जो सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है ना, उस तरह से हमारे विचार भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर आपका फैसला जो है दृढ़ है तो वो कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, अटल होगा वही दादा। तो भविष्य बनाने वाले काम का 80% समय बोरिंग होता है, रोज वही अभ्यास है, वही बचत है, वही पढ़ाई है, लेकिन जो व्यक्ति इस बोरियत को सह गया वो ही आगे निकल जाता है।
0: और हर इंसान सोचता है कि बड़ा आदमी बनना है, ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, ना ही फैंटेसी है। महत्वाकांक्षा होती है हमारे भविष्य का नक्शा बनाना। और जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और नियोजनबद्ध तरीके से उस पर काम भी करते हैं तो वही महत्वाकांक्षा है जो हमारा भविष्य बनाती है, क्योंकि इसमें क्या, कब, कैसे,
1: तीनों चीजें आती है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही चंचल तूने। और पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था,
0: क्या कहा?
1: जो हमारे कितने बड़े आइडियल हैं, आज भी
0: हम सबके लिए किसी ना किसी तरह से वो प्रेरणा के।
1: बिल्कुल, उन्होंने कहा था सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद न आने दे।
0: क्या बात,
1: मतलब
0: है?
1: सपना बड़ा रखो पर उसे पूरा करने के लिए रोज नींद कुर्बान करने की तैयारी में भी रखो।
0: बिल्कुल। और इसी तरह से हमें अगर इसे आसानी से समझना चाहे तो महत्वाकांक्षा हमें गाड़ी में बिठाती है और आवेग उसका स्टेयरिंग छीन लेता है और अनुशासन जो है वो हमें
1: मंजिल तक पहुंचा देता है। और इसलिए बड़ा सोचो पर आज के छोटे फैसले को हल्के में मत लो, क्योंकि भविष्य कल नहीं बनता, वो आज के आवेग पर काबू पाने से बनता है।
0: और देखिए हमारे साथ ही लिख रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण, महत्वाकांक्षा वो जीवन को आगे बढ़ने के लिए दिशा देती है। सपने तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें मेहनत, धैर्य और सही दिशा का साथ मिलता है। भविष्य अचानक से नहीं बनता, वो आज के छोटे छोटे प्रयासों और निर्णयों से आकार लेता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण उन्होंने भी दिया है और आगे लिख रहे हैं कि साधारण परिस्थितियों से आगे बढ़कर उन्होंने भी अपने ज्ञान, परिश्रम, दृढ़ संकल्प के बल पर ही देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त किया था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जीवन तो हमें सिखाता है चंचल कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, बड़े सपने और निरंतर प्रयास ही हमारा भविष्य बदल सकते हैं।
0: और भी आगे संदेश हैं?
1: बस अभी तो हमने इतने ही पढ़े हैं, एक गाना सुन ले ताकि कार्यक्रम की थोड़ी दिशा बदल जाए।
2: वो है कि मर कर भी तुमको

0: चंचल।
1: हाँ, तो बड़ा प्यारा गीत तुमने सुनवाया अभी, और हमारे श्रोता भी बहुत पसंद करते हैं इस गीत को, और साथ ही हमारी जो सखियां हैं वो पसंद करती हैं नंदना साड़ी को भी।
2: हाँ, और कई सखियां ऐसी भी हैं जिन्हें नंदना साड़ी के बारे में नहीं पता था। हमारी एक सखी ने लिखा भी है कि इस साड़ी के बारे में, भैया इसका नाम जो है उन्होंने
1: पहली
2: पहली
1: बार
2: बार
1: सुना
2: सुना है।
1: है।
2: तो चलिए बताते हैं कि नंदना साड़ी या नंदना प्रिंट मध्य प्रदेश के कोई एकदम गुमनाम 400 साल पुरानी ये कला है। और ये साड़ी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुरा और उम्मेदपुरा गाँव की एक कला है, और इसे वहीं के खास समुदाय के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से आज भी जिंदा रखा हुआ है।
1: तो ये नंदना जो प्रिंट है कोई बुनाई नहीं है चंचल, बल्कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और डाबू रेजिस्ट प्रिंट की एक तकनीक है। यानी पहले के समय में कुछ खास जनजाति की महिलाओं के मोटे सूती घाघरे लेंगे इसी प्रिंट के बनते थे, पर अब साड़ी, सूट, दुपट्टा, बेडशीट और सब इसी से बनने भी लग गए हैं। साथ ही नंदना साड़ी की खासियत यही है कि ये 100% प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। इसमें केमिकल नहीं लगता, इसके रंग बनते हैं नील यानी इंडिगो, अनार के छिलके, हरड़ा, अलेजरीन और लोहे के जंग जैसी चीजों से ये साड़ी बनती है, और कपड़े को नरम करने के लिए अरंडी के तेल और सोडा के पानी में इसको गलाया जाता है।
2: और देखिए ना, हमारी एक सखी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कहती हैं कि मैं गुस्ताखी के लिए माफी मांगते हुए अपनी सखियों को इस सखी सहेली के मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी
1: क्या?
2: कि साड़ी के बारे में मेरा ये कहना है कि गूगल से हमें सभी तरह की जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से हम सभी बांटेंगे तो वो ज्यादा परफेक्ट होती है। तो अगर किसी के पास इस टाइप की साड़ी या इस टाइप के कपड़े होते हैं तो वो अपनी बात को साझा करें, और ये बड़ी अच्छी बात लिखी है इन्होंने।
1: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने हमारी बात कह दी एक तरह से। हम भी अपने सखियों से अक्सर कहते हैं कि भाई आपके पास ये नंदना या कोई भी साड़ी है तो उसका जिक्र कीजिए। अभी भी हम कहेंगे अगर आपके पास नंदना साड़ी है और या आप कभी लेने गई थी, आपको पसंद आई या आपने किसी को गिफ्ट दी, तो उसका जिक्र अभी आप कर सकती हैं, तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे।
2: तो ये जो साड़ी है इसका लॉट जो है वो लगभग 800 मीटर का होता है, और उसे तैयार करने में करीब करीब 18 स्टेप और 20 25 से 30 दिन की मेहनत लग जाती है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कपड़े को गलाना, अरंडी के तेल में भिगोना, तो सोडे से धुलाई करना, हरड़ा का पाउडर लगाना, बिछलाई यानी कि गोंद और मिट्टी की छपाई होती है ना उसको रोकना, ब्लॉक की छपाई, नील में रंगाई, धूप में सुखाना, फिर अंत में धुलाई, और इतने स्टेप से होकर जब ये गुजरता है ना तभी कपड़ा जो है वो पक्का बनता
1: पक्का
2: है।
1: होता है। यानी ये वो हीना की तरह हो गई कि
2: जी
1: पिसकर ही हीना जो है रंग
2: रंग
1: लाती
2: लाती
1: है ना। और नंदना में पारंपरिक रूप से चार मुख्य बूटे होते हैं और हर डिजाइन और मोटिफ का अलग मतलब होता है। मिर्ची का मतलब है तीखापन और बुरी नजर से बचाओ, तो चंपाकली का मतलब है कि इसे खास समुदाय की अविवाहित लड़कियां पहनती थी। अंबा का मतलब है कि इसे साड़ी और गर्भावस्था के समय शुभ माना जाता था। और जलम यानी बूटा का मतलब है प्रिंट। तो आजकल इनमें अमरूद, यूकेलिप्टिस, सागवान, नीम के पत्तों के इको प्रिंट भी बन।
2: और इस साड़ी में जो है रंग का विज्ञान और इसकी मान्यताएं वो भी अलग अलग हैं। नीले और हरे रंग जो हैं वो इसीलिए खेत में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए होता है ताकि वो गंदा कम

0: देखिए।
1: अच्छा
0: और नील को सबसे शुभ भी माना जाता है, इसीलिए कारीगर भी ये मानते हैं कि गाय जो है वो नील का पानी पीती है तो ताकतवर बनती है, और नील के लगे हाथ से खाना खाने से पेट की बीमारियां भी नहीं होती। कुछ पारंपरिक मान्यता है वहां की।
1: अच्छा, ऐसा। तो ये साड़ी बनाते समय इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं।
0: जी
1: और नंदना साड़ी में जितनी बारीकी से काम किया जाता है तो साड़ी की कीमत भी उतनी ज्यादा, यानी एक असली हाथ की बनी नंदना साड़ी 2,500 से लेकर 8 से 10 हजार तक की होती है। और पहले तारापुर उमेदपुरा में लगभग 100 से ज्यादा परिवार ये काम करते थे, और अब सिर्फ 8-10 परिवार ही बचे हैं, क्योंकि ये बहुत थकाऊ और समय लेने वाला काम है, और बाजार में इसका केमिकल प्रिंट भी मुश्किल से
0: जी
1: मिलता होगा, तो कम लोग अब इसको बनाते हैं।
0: हाँ, क्योंकि कई बार कारीगरों को भी लगता है ना कि मेहनत बहुत ज्यादा है और उसकी अपेक्षा में जो दाम है वो उनको नहीं मिल पाते, और इस तरह से जो बहुत सारी कलाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, तो
1: बिल्कुल
0: हम सभी को मिलकर इनको बढ़ावा देना चाहिए। और इसीलिए सरकार अभी से GI टैग दिलाने की प्रक्रिया में है और इसका जरिया बना रही है। बनवारी जरिया, पवन जरिया को राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 और स्टेट अवार्ड 2002 और 2022 में भी मिल चुका है। व्यवसाय, राजनीति, फिल्म जगत, हर क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इस साड़ी को अपनी पसंद में शुमार करती
1: क्या
0: हैं।
1: बात है, बहुत सुंदर है नंदना साड़ी। तो हमारी सखियां बताएं कि उनके पास नंदना साड़ी है भी कि नहीं।
0: तो हम एक गीत सुन लें।
1: हाँ

0: और इस समय घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: बिल्कुल।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
0: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
0: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
0: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
0: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
0: श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
0: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
0: बिल्कुल सही,
2: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की

0: कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं शुरू करते हैं
1: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा?
0: अजीत जी, सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे।
1: जी, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी, श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
0: अजीत जी, ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
1: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है।
0: जी।
1: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
0: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गाँव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
0: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
0: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
0: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
0: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओ, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए। महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
0: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी।
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
0: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: हरपल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी। सचमुच

0: कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम।
1: ओहो, मैं तो थक गई।
2: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
2: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं अभी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
2: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
3: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
3: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं और।
2: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
2: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
2: पेड़ हंसने लगा।
4: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
2: सिमरन ने आंखें झुका ली।
1: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
2: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
1: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
5: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और तो और।
1: बस बस, मैं समझ गई।
2: वो सोचने लगी,
1: परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
2: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
0: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
6: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना। है ना ये हमारा अपना काम।

0: तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
2: साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: भाई वाह, कमाल। पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
2: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था,

0: हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है, इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
1: सर,
2: गुड मॉर्निंग सर।
3: नमस्ते।
1: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
4: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
1: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
5: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
4: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा, इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
5: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
4: क्यों?
5: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
4: हो।
5: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
1: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए सक्कर में कर दिया जाए।
5: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
1: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
5: थैंक यू।
0: साथियों, विश्वेश्वरैया के सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
6: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
0: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
7: किसने खींची चेन?
4: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
5: जी सर, मैंने ही चेन खींची है सर। मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
7: व्हाट? क्या मजाक है, ये आप कैसे कह सकते हैं?
5: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
7: आइए आइए, देखते हैं।
5: आइए, हम भी चलते हैं।
7: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
5: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
0: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
5: आइए सर, आइए देख लीजिए।
7: अभी तक तो यहाँ भी ठीक ही है।

0: आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहां पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहां पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
1: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
0: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
2: We are so thankful to you. It's amazing. May I know your name, please?
1: I am Dr. Moksh Gundam Vishweshwaraiya.
2: Oh, the engineer in chief of Mysore State.
3: और रेलवे सचिव भी।
0: नमस्कार सर।
1: जी जी सर, मैं वही हूँ।
2: नमस्कार सर, नमस्कार। We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
1: धन्यवाद।
4: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
5: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
4: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
5: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
4: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
7: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आपने सुना। आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां पे आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बम्पर एंटरटेनमेंट। लीजिए प्रस्तुत है आप सभी का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का विषय है आपको पहले कभी पूर्वाभ्यास इंट्यूशन हुआ है जो कुछ देर में सच हो गया है। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ के आज के ज्ञानवर्धक और सुरीले सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो, हाँ जी,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं कलाम रोड हर गोविंद नगर नमज शहर पंजाब से सुरेंद्र संधु बोल रहे हैं जी।
0: सुरेंद्र संधु जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया जी, आप सही? अपना कैसे है जी, परिवार सब ठीक है जी?
0: बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। तो संधु साहब, कब से हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं?
1: प्रोग्राम तो हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं जी, बस मैं आपके स्टेशन से कुछ टाइम से 2 साल से शुरू किया जी आपका प्रोग्राम सुनना।
0: तो अच्छे लगते हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
1: अच्छे लगते हैं, सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं जी।
0: तो संधु साहब, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि आपको पहले कभी पूर्वाभास हुआ है जो कुछ देर में सच हो गया है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखो, परमात्मा जो भी शासन पता है जी, जो भी इशारा कर देते हैं उसमें से जो अपनी है वो पूरे हो जाते हैं जी, कोई अधूरे भी रह जाते हैं जी।
0: जी जी जी,
1: क्योंकि परमात्मा तो इशारा कर देता भी ऐसे जी, ऐसे आज होएगा जी, ऐसे होएगा जी।
0: जी जी,
1: बाकी तो परमात्मा के हाथ की सब कुछ होना जी।
0: मनुष्य के अंदर छठी इंद्री जिसे कहते हैं ना, सिक्स सेंस, तो
1: जी,
0: वो कभी कभी आपको आगाह कर देती है कि आपके साथ ये घटित होगा, तो बाद में फिर वो घटित भी होता है। तो कभी कभी आत्मा, छठी इंद्री कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, आपको आगाह
1: करती है। आज से 2 महीने पहला कुछ हो गया, मेरे से भी हादसा हुआ जी, मैं कभी सोचा नहीं था मैं परमात्मा पर बहुत ही, पर कभी आज तक नहीं, मैं बहुत देर से स्कूटी चला रहा हूँ।
0: जी जी जी,
1: बस मैं ऐसे ही जितने नवा शहर को जा रहे हैं सर, जाते जाते अचानक एकदम बच्चों ने मोटरसाइकिल मेरे आगे कर दिए।
0: अरे,
1: मोटरसाइकिल आगे आने से जी, बस मैं मोटरसाइकिल के बीच जा गया जी, मेरी दोनों टांगे यानी के लत पेट से नीचे नीचे जो सारा चीज मेरा रुक गया जी, 2 महीने हो गए यानी कि अब ठीक है, एक जो लत है जी उसके ऊपर वजन नहीं आ रही जी, पैर के ऊपर ना।
0: जी जी, हम चाहेंगे कि आप
1: कभी देखो परमात्मा हमारे साथ कभी है ठीक है, उस दिन हमारे साथ नहीं, क्या कोई ऐसी कोई होगा मन दे कोई?
0: जी जी जी,
1: हो सकता है जी कोई सबसे गलती हो गई उस दिन हमारे साथ, बच्चे भी अचानक खड़े जी, जैसे ही मैं बोल गया एकदम मोटरसाइकिल आगे का।
0: तो हम चाहेंगे कि आप शीघ्र ही स्वस्थ हों और फिर से अपने काम में लगे, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: और होता क्या है, कई लोग बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं, बिना हाथ दिए गाड़ी मोड़ देते हैं, बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी मोड़ देते हैं, तो अगर जो पीछे से आदमी आ रहा है तो एकदम से ब्रेक लगा देंगे, तो आदमी फिर हड़बड़ाहट में फिर एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो
1: मैं जी वैसे ना, मेरा है जी पहले गाँव जाड़ला टाउन जी, आप सुने था उन्हें जाड़ला टाउन, हमारा नाम काफी अच्छे से पहले।
0: जी जी जी,
1: फिर मैंने हमने कुछ 1.5 साल से मैं मकान नवा शहर में बनाया, शिफ्ट किया ना जी उन्हें।
0: जी जी जी,
1: मैं वैसे 3-3 चक्कर भी जाड़ लेके लगाता जी, 12 किलोमीटर आना जाना, कभी कोई ऐसा नहीं आज तक सीरीज नहीं, उस दिन पता नहीं मेरे साथ केड़ा कोई ऐसा ना, परमात्मा कोई गलती हो गई होगी, कोई मेरा कोई हिसाब जो साथ।
0: चलिए कोई नहीं, हो सकता है कोई बड़ा हादसा होने वाला हो, छोटे में टल गया है ना
1: जी। देखो जीटी रोड इतना चलता है जी, उस टाइम कोई पीछे से गाड़ी नहीं, जब पीछे से गाड़ी होंगी तो गाड़ी ऊपर भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात,
1: मैं तो वही कहता कि मेरे साथ कोई बड़ा हादसा होना चाहिए, परमात्मा मुझे बचा करेगा, छोटा सा
0: घटेगा। बिल्कुल सही बात। तो संधु साहब, आज से आपसे बात हुई मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मैंने जी फिल्म लोपड़दा जी मोहम्मद रफी जी, आज मौसम बड़ा बेईमान है जी, ये वाला मुझे गीत सुना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो सुनते हैं गीत आप, हम और सारे श्रोता।

0: डाउनलोड से भी सारथी ऐप।
1: हेलो
2: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
1: जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं साहब?
2: हम जिला बनाए हूँ, ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं।
1: मुन्ना सिंह कठेरिया जी, आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है सर, आपकी दुआओं का सर है।
1: तो
2: भगवान से प्रार्थना करते हैं आप भी परिवार से सब कुशल पूर्वक होंगे।
1: बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि आप भी कुशल से रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो मुन्ना सिंह जी, कैसे लग रहे हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
2: आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं सर, अभी चार पाँच में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था जब कार्यक्रम सुनने को ये नहीं मिला। आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
1: वो एक्चुअल में कभी कभी नेट की प्रॉब्लम हो जाती है ना।
2: जी हाँ हाँ,
1: हमारे यहाँ से तो डेली जा ही रहा था कार्यक्रम, है ना। तो आज हमारा विषय है, आपको पहले कभी पूर्वाभास हुआ है जो कुछ देर में सच हो गया है?
2: यहाँ ऐसा आवाज।
1: तो बताइए जरा।
2: मेरे पिताजी बहुत बीमार।
1: जी जी।
2: दूने सता दिए थे, तो उम्मीद नहीं पड़ रही थी कि बचेंगे।
1: जी जी।
2: और रास्ता में जब हम उससे जा रहे थे बस से, तो रास्ते रास्ते देखते जा रहे थे कि शायद उनकी उनका शव आता हुआ खत्म हो गए पास में लड़की के मिशन में।
1: जी।
2: यहाँ पहुँच पाए थे हम सोरह के पास से, हमने बस में से देखा तो उनकी लाश आ रही है टांग पर रखी हुई।
1: जी जी।
2: कि जो हम खोज रहे थे वही हमारी नजर के सामने आ गए।
1: हाँ, कभी कभी हो जाता है, ऊपर वाला आपको आभास करा देता है ना।
2: अरे से आभास हो गया था हमें।
1: जी जी।
2: क्योंकि हमारी बाई आँख खड़क रही थी।
1: जी जी। तो पुरानी जो कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, वो बात कभी कभी सच भी होती हैं ना। तो मुन्ना सिंह जी, आज आपसे बात हुई, ऊपर वाला आपके पिताजी की आत्मा को शांति दे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। और आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
2: गाना सुनना चाहेंगे फिल्म काजल, गाने के बोल रहे तेरा मन दर्पण कहला।
1: तो सुनते हैं ये गीत आप और हम और सारे श्रोता।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हेलो
2: जी, जी।
1: कौन बोल रहे हैं?
2: मोहम्मद रिजवान खान, बाजार किला बरेली।
1: तो रिजवान खान कहाँ से बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए।
2: किला बरेली।
1: अच्छा, किला बाजार बरेली से रिजवान खान जी हैं हमारे साथ
2: जी।
1: तो रिजवान भाई क्या करते हैं आप?
2: जी, मेरे रेडीमेड का काम है बरेली।
1: अच्छी बात है। और तो रिजवान भाई कब से हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली के?
2: जी सर, 93 से सुन रहा
1: हूं। अच्छा, इतने पुराने श्रोता हैं आप हमारे?
2: बहुत अच्छे लगते हैं सर, एक बढ़िया प्रोग्राम होता है, एंकर भी बहुत अच्छे होते हैं।
1: जी जी। तो रिजवान भाई, आज जो हमारा विषय है वो ये है कि आपको पहले कभी पूर्वाभास हुआ है जो कुछ देर में सच हो गया? हेलो
2: जी, जी।
1: कौन बोल रहे हैं?
2: जी, मोहम्मद रिजवान खान, बाजार किला बरेली।
1: तो रिजवान खान कहाँ से बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए।
2: किला बरेली।
1: अच्छा, किला बाजार बरेली से रिजवान खान जी हैं हमारे साथ
2: जी।
1: तो रिजवान भाई क्या करते हैं आप?
2: जी, मेरे रेडीमेड का काम है बरेली।
1: अच्छी बात है। और तो रिजवान भाई कब से हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली के?
2: जी सर, 93 से सुन रहा हूं।
1: अच्छा, इतने पुराने श्रोता हैं आप हमारे?
2: जी, बहुत अच्छे लगते हैं सर, एक बढ़िया प्रोग्राम होता है, एंकर भी बहुत अच्छे होते हैं।
1: जी जी। तो रिजवान भाई, आज जो हमारा विषय है वो ये है कि आपको पहले कभी पूर्वाभास हुआ है जो कुछ देर में सच हो गया है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी, ऐसा होता है कभी कभी, मतलब फील होता है कि ये घटना होने वाली है, कभी कभी कभी कभार होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी होती है वही होता है।
1: जी जी जी
2: जी।
1: तो रिजवान भाई, कभी कभी तो ऊपर वाला भी आपको आगाह कर देता है कि क्या आपके साथ घटित होने वाला है ना?
2: जी जी।
1: तो आज आपकी कॉल लगी है, कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा, ये मेरी तीसरी बार कॉल लगी।
1: तो हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रमों में शामिल हों, और हमारा एक कार्यक्रम आता है आपका पत्र मिला, प्रत्येक रविवार को आता है, तो उसमें हम एक फोन नंबर भी बताते हैं, उस पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं या हमें पत्र भेज सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो उसमें आपको कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगा, कैसा लगा और क्या हम बेहतर कर सकते हैं, उस विषय में अपने सुझाव दे सकते हैं। तो हम इंतजार करेंगे कि आप अपने खत खतूत का सिलसिला चालू करेंगे, है ना? तो आज कौन सा गीत सुनाएं आपको? हत्या फिल्म का ये गीत आपके नजर रिजवान भाई है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: ऐसा होता है कभी कभी, मतलब फील होता है ये घटना।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं नाज रेडियो क्लब ग्राम करेली जिला बरेली से निसार अहमद अंसारी बात कर रहा हूँ सर।
0: निसार भाई, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत अच्छा हूँ सर, और काफी दिनों के बाद आज मेरी बात हो रही है क्योंकि फोन ही खराब चल रहा था आपका, तो हम कमेंट के माध्यम से आपसे जुड़ रहे थे बराबर।
0: जी, हम आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप हमेशा इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज का जो विषय है वो तो आपको पता है, तो क्या कहना चाहेंगे उस विषय में?
1: जी विषय भी सर बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा विचार सोचते हैं या हम कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आज हमारे साथ ये हो जाए या कोई काम हो जाए। कभी यही ले लीजिए सर, हम सोचते हैं आज हमारी किसी से कोई व्यक्ति है, आज मैं यही सोचूं कि मेरी आज देवेंद्र रावत जी से मुलाकात हो जाए तो वो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, तो बड़ा आश्चर्य होता है। और मैं यही सोचता हूं कि अभी मैंने सोचा था और आज मेरी सर से मुलाकात हो गई, तो बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप को ये लगता है ये एक

0: इत्तेफाक है या मैं समझ में आता है क्या मेरी बात ऊपर वाले ने सुन ली जो मेरी आज आपसे मुलाकात हो गई।
1: बिल्कुल सही बात, ऊपर वाला भी इशारा कर देता कभी कभी, है ना
0: जी, जी आपके तो साथ ऐसा एकदम अचानक हो जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है सर।
1: जी जी, तो बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो निसार भाई कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: सर मेरे घर एक बेटी आई है और मैं बेटी की खुशी के लिए एक गीत सुनना चाहूंगा कि मेरे घर आई एक नन्ही परी।
1: तो सुनते हैं ये गीत आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम सिंह सिसोदिया जी।
1: जी सर।
0: तो सिसोदिया जी, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: दोनों ही काम आप बहुत बेहतरीन करते हैं। एक तरफ आप अन्न का उत्पादन करते हैं, साथ ही प्रभु के भजनों में लीन रहते हैं ना?
1: जी बिल्कुल, जब दिन में काम होता है ना खेतों में
0: जी
1: तो वो काम निपटा लेते हैं, और क्योंकि भजन की प्रस्तुति तो ज्यादातर हम रात में ही देते हैं
0: जी
1: तो
0: जी
1: हमारा काम भी नहीं चलता, मतलब काम भी चलता रहता है और हमारे भजनों में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है।
0: तो सिसोदिया साहब, आज जो विषय है वो ये है कि आपको पहले कभी पूर्वाभास हुआ है जो कुछ देर में सच हो गया है?
1: जी ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, हमें पूर्वाभास हो जाते हैं कभी कभार कि हमारे साथ ऐसा मतलब होने वाला है, या कोई ऐसी ऐसी कोई अच्छी खबर आने वाली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें आगे जाने में समस्या है, या फिर कभी कभार लगता है हमें कि आगे हमारे साथ में कुछ बुरा भी होने वाला है, तो ऐसे थोड़ा बहुत अंदेशा हमें पहले से मिल जाता है। बट हम क्या करते हैं कि अरे हमारे पास में तो सब कुछ क्या होगा, ऐसे करके हम टाल देते हैं बात को, बट ऐसे कभी कभार अनुभव बिल्कुल होता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है।
0: बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, और गाने के बोले तो

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बरेली जिले गरीब भाई बात कर रहा हूँ।
0: गरीब भाई, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: तो गरीब भाई, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि आपको पहले कभी पूर्वाभास हुआ है जो कुछ देर में सच हो गया है?
1: हाँ, एक बार हुआ था ऐसा ही,
0: क्या हुआ था,
1: कुछ
0: कैसा
1: देर
0: हुआ?

0: मैं इसी के लिए मैं सोचा था कि ये मुझे मिलने वाला है और वो अचानक मेरे सामने आके खड़ा हो गया। एक रिश्तेदार थे हमारे
1: जी जी जी,
0: तो उनको थोड़ी देर पहले मैंने सोचा कि वो मैं उनके साथ बैठा हूँ और थोड़ी देर बाद अचानक जो है वो मेरे सामने खड़ा हो गया।
1: जी जी
0: जी, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी।
1: हाँ, तो कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: आज गीत वही कोई आज अपनी पसंद का सुना दो।
1: तो ठीक है, सुनते हैं ये गीत हम और आप और सारे श्रोता।
2: लैला, मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, बरेली से ही बोल रहे हैं सर जी।
0: तो राजेंद्र गंगवार जी, नवाबगंज बरेली के हमारे पुराने श्रोता हैं, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है सर जी, स्वस्थ है, मस्त है। और आप कैसे हैं?
0: बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। तो राजेंद्र जी, आज का हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो ये है कि आपको पहले कभी पूर्वाभास हुआ है जो कुछ देर में सच हो गया है?
1: हाँ जी, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है सर जी।
0: तो बताइए जरा एक आध घटना।
1: वैसे तो

0: बताने वाली बात नहीं है, लेकिन बता सकते हैं कि आपने कुछ सोचा था कि आज हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला है, लेकिन जब एक घंटा हुआ उसके बाद हमें पैसे मिल गए सर जी।
1: चलिए कभी कभी
0: आज कल हमें पैसे तो कुछ नहीं, ऊपर वाले जानते हैं जो भी है, लेकिन जब भी हम सोचते हैं वो काम जरूर हो जाता है।
1: ठीक है, अच्छी बात है। तो रायन जी कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: हाँ जी, बलबा मूवी का कोई सा भी सॉन्ग चला दीजिएगा सर जी, और कुछ दो चार साथियों के नाम लेंगे, ज्यादा नहीं।
1: जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए।
0: हाँ जी, सारू अंसारी जी है, गंगर सावंकर जी है, और सतीश रघुवंशी जी है, सबनों बातें जी, और जितने स्टाफ के लोग हैं सभी को।
1: तो सुनते हैं गीत, आप और हम और सारे श्रोता।

कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। पहला कमेंट हम शामिल कर रहे हैं शार्दुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रिवाड़ चलकर रिवाड़ का। आप कहते हैं पूर्वाभास ये तो हर रोज होता है, जब भी आकाशवाणी बरेली से फरमाइश का प्रोग्राम प्रसारित होता है तो हमें पूर्वाभ्यास हो जाता है कि इस प्रोग्राम में हमारा नाम अवश्य शामिल होगा। और चंद्रकला जी जब मायके जाती हैं तो हमें पूर्वाभास हो जाता है कि सोने से पहले उनका फोन अवश्य आएगा और आ जाता है। जब भी हम किसी दोस्त को याद करते हैं तो उसके तुरंत बाद उसका फोन कॉल आ जाता है, ये हमें पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो अच्छे बुरे का भी पूर्वाभास हो जाता है। आस्था और विश्वास में ताकत है। ग्राम व पोस्ट कोठा खंडवा से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, शीतल मिश्रा, राधा मिश्रा, सलोनी मिश्रा, शिवम मिश्रा कहते हैं, आज की प्रश्न से हमें एक पुरानी याद ताजा हो गई। उस समय हमारी शादी भी नहीं हुई थी, उस समय हम हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। उसी समय हमारे बहन बहनोई पूरे परिवार के साथ हमारे यहां पर रहकर गल्ला खरीदने का काम करते थे और आड़त पे ले जाकर बेचते थे। एक दिन की बात है, हमारा भांजा भी साथ में चला गया लेकिन शाम ढल

चुकी थी, वो वापस नहीं आए। तो दिल में ये खटका, कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है, वो सत्य साबित हुई। उनको बंधक बनाकर चोरों ने सब पैसे लूट लिए और बंदा ही छोड़ गए। तब कोई व्यक्ति उधर से निकला तो इनको बंधन मुक्त किया। तब वो लोग लौट के आए। उस दिन की यह घटना सही साबित हुई। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य कहते हैं, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मन में जो विचार आता है या कोई इच्छा होती है, वो कभी अचानक से कोई व्यक्ति पूरा कर दे, या मेरे साथ अक्सर कई बार होता है। जैसे मैंने नोटिस किया, मैं कई बार नोटिस कर रहा था कि मेरा नाम सवेरे 10 से 11 बजे आपकी पसंद में नहीं बोल पाया, तो मैं सोचता हूँ दोबारा कमेंट डालता हूँ, तुरंत मेरा नाम कमेंट में आ जाता है। अरे आज ही की बात देख लो, 11:45 बज चुके थे, हमारे मित्रगण कह रहे थे कि तुम्हारा नाम बुला ही नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा कमेंट डाल दूं। जैसे ही मैंने कमेंट खोली तुरंत मेरा नाम भूल गया। मित्र आश्चर्य करने लगे। ये होता निरंकार, सबकी सुनता है और दिलों तक मन की आवाज पहुंचा देता है, इसलिए कहते हैं निरंकार प्रभु परमात्मा हमारे साथ है। वैसे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक बार कमेंट करने के बाद दोबारा ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो परफॉर्मर कर रहा होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा, ऋषि नारायण कुशवाहा कहते हैं, मित्रों जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है। जैसे हम खेतों पर जाते हैं, कटी हुई फसल रखी है और पूर्वाभास हो रहा है कि पानी बरसेगा और खेत में कुछ समय बाद पानी बरसने लगता है। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से अनुकलाल कहते हैं कि कोई भी चीज हम सोचते हैं हमारी पूरी हो जाती है, उम्मीद से ज्यादा बेहतर होती है।

ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी कहते हैं, दोस्तों जिंदगी में कई बार हमारे साथ ऐसे अजीब इत्तेफाक होते हैं जिन्हें देखकर हम खुद हैरान रह जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने पहले किसी बात के बारे में बात सोचा और थोड़ी ही देर बाद वही बात सच होती दिखाई दी। कभी कभी किसी शख्स का अचानक ख्याल आया और थोड़ी देर बाद उसका फोन आ गया। कभी किसी जगह जाने के बारे में सोचा और उसी दिन वहां जाने का मौका मिल गया। ऐसे लम्हों में दिल कह उठता है, आखिर ये महज इत्तेफाक है या हमारे जहन में चल रहे ख्यालों और आने वाली घटनाओं के बीच कोई अनजान रिश्ता है। मैं इसे कोई करामात या भविष्यवाणी नहीं मानता, बल्कि जिंदगी का एक दिलचस्प इत्तेफाक समझता हूँ। हमारा जहन बहुत कुछ महसूस करता है, कई छोटी छोटी बातों को याद रखता है और कभी कभी हमारा अंदाजा सही निकल जाता है। ऐसे वक्त में हमें हैरान होने के साथ साथ शुक्रगुजार भी होना चाहिए कि जिंदगी हमें इतने खूबसूरत और हैरतअंगेज लम्हे देखने का मौका दे रही है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब शायद हमारे पास नहीं होता, लेकिन उनकी याद दिल में एक प्यारी सी कहानी बनकर हमेशा रह जाती है। प्रवीण चौहान जी कहते हैं कि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैंने एक दोस्त को याद किया और कुछ समय बाद उसका कॉल आ गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि रेडियो पर गाना सुनते समय मेरे मन में कोई गाना चल रहा है और तभी वो गाना बजने लगे। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान और मेरी छोटी बहन शहनाज खान कहते हैं, ये उन दिनों की बात है जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, वो सुपरवाइजर के पद पर थे। एक दिन माँ से बोले कि तुम लोगों को मैं सरप्राइज दूंगा। मेरी माँ को उनकी बात समझ में नहीं आई। अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया कि मेरे बाबू को अब ऊंचा पद मिलेगा। मेरी माँ ने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। वही हुआ, मेरे फादर का प्रमोशन कुछ दिनों बाद हो गया, वो फोरमैन बना दिए गए। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी लालू स्त्री अंसारी कहते हैं, एक नहीं बल्कि कई बार ऐसा होता है जिस चीज की कल्पना की जाए या किसी को याद किया जाए तो थोड़ी देर बाद वही बात वही व्यक्ति सामने होता है। उस वक्त बहुत अजीब सा लगता है। एक बार का वाक्य है, दुकान पर बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया। सोचने लगा कि हमारे एक दोस्त हैं इकराम भाई, बहुत दिनों से बातचीत होती रहती है, क्या कभी मुलाकात होगी भी। कुछ देर बाद घर से बच्चा आया और बोला, घर में चलो मेहमान आए हैं। घर जाकर देखा तो दो लोग बैठे थे। हुआ सलाम के बाद पूछा, कहां से आना हुआ? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम इकराम है, मैं गखरपुर मुरादाबाद से आया हूं। उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे दिल में ख्याल आया, आज मैं जो भी मांगता हूं वो मुझे मिल जाता है। मेरे रेडियो दोस्त।

है जो कुछ देर में सच हो गया है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेगा हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी कार्यक्रम विवरण में। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रमों को सुनिएगा रात्रि 8 बजे और 10 बजे। समाचार संदेश सुनेंगे दिल्ली केंद्र से 8:45 पे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुनेगा मुंबई केंद्र से रात 9 बजे। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भजन संध्या में कुछ भजन शाम 5:05 पे। नारी संसार सुनेंगे शिप्रा श्रीवास्तव के साथ शाम 5:30 पे। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। इसमें चर्चा सुनेंगे, विषय रहेगा सौर ऊर्जा का महत्व और दूसरी चर्चा रहेगी रसोई की सफाई विषय पे। साथ में होंगे हेल्थ टिप्स और इनसे मिलिए। युवाणी सुनेंगे आबिदा फातिमा के साथ शाम के 6 बजे। प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना की। इसमें कुछ खास है आज में विश्व सूती दिवस पे जानकारी दी जाएगी, साथ ही होगी प्यार की धुन और चक्रव्यूह। शाम 6:30 पे आप तेजा भैया और कृष्णा भैया के साथ सुनिएगा ग्राम जगत। चर्चा होगी धूम्रपान ना करें। साथ में सुनेंगे क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता कामकाजी महिला ममता से तेजा भैया की बातचीत। साथ ही होंगे लोकगीत। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। IVRI द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि पाठशाला सुनेंगे 7 बजे। विषय रहेगा दुग्ध मूल्य संवर्धन के माध्यम से आय के अवसर। विशेषज्ञ रहेंगे राज सुवाल का। आपसे बातचीत करेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव। रेडियो हेल्पलाइन में विषय रहेगा हाइट्स हार्निया, पेट की गंभीर बीमारी, कारण और आधुनिक इलाज। विशेषज्ञ रहेंगे गंगाशील और गंगाचरण अस्पताल के वरिष्ठ गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर अतुल कुमार राठौर। समय रहेगा 7:31। हमारी कल की सभा आरंभ होगी प्रातः 5:50 पे। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनेंगे आप कार्यक्रम 5:50 पे। 11:30 पे रात 8 बजे और 10 बजे समाचार प्रभात सुनेंगे दिल्ली केंद्र से 8:00 और समाचार संध्या लखनऊ केंद्र से 7:18 पे। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से 9:00 9:45 पे, 2:30 पे और रात 9:00। नमस्ते बरेली सुनेंगे नीतू त्रिपाठी के साथ 8:15 पे। लोकगीत 8:45 पे। आपकी पसंद 10 बजे। सब रंग 11 बजे। झुमका गिरारे का समय रहेगा 11:15। अनरोल गीत 1 बजे। रसरंग 2 बजे। आपका स्वास्थ्य का समय रहेगा 9:30 और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर रतन गंगवार। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग का समय रहेगा 3:30। आपकी बात आकाशवाणी के साथ सुनेगा मोहम्मद परवेज के साथ शाम 4 बजे। भजन संध्या 5:05 पे। अनुरोध गीत 7:31 पे। नारी संसार सुनेगा भावना के साथ 5:30 पे। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। युवाणी सुनेगा वैभव के साथ शाम 6 बजे। प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना की। किसानवाणी सुनेंगे आप रविंद्र भैया और क्षमा बहन के साथ 6:30 पे। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। IVRI द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि पाठशाला सुनेंगे 7 बजे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कार्यक्रम में अगला भजन है नन्ही शरण और साथियों के स्वर में।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

अभी आपने सुने भजन संध्या में कुछ भजन। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं महिला साथियों का मनपसंद कार्यक्रम नारी संसार, शिप्रा श्रीवास्तव के साथ। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की।

नमस्कार सखियों और श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM और सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार, आपकी अपनी रेडियो सखी शिप्रा श्रीवास्तव के साथ। सखियों, आज आपको ले चलते हैं समय में थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं, बस आज सुबह तक। सखियों, सुबह आंख खुलते ही हम क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, सुबह उठते ही हम सबसे पहले तो अपना मोबाइल चार्ज पर लगाते हैं, दूध उबालने या फिर चाय बनाने के लिए पैन को गैस या फिर इंडक्शन पर चढ़ाते हैं, फिर फ्रिज से दूध निकालकर चाय बनाते हैं और उसके बाद दिन भर तो कभी वॉशिंग मशीन, कभी टीवी, कभी कूलर और ना जाने ऐसे कितने सारे उपकरण हमारी जिंदगी को और हमारी दिनचर्या में हमारा साथ निभाते हैं। और ये सारे उपकरण जो हम चलाते हैं, इसके पीछे जो शक्ति है वो है ऊर्जा, यानी कि हमारी जिंदगी को सहज और सुविधाजनक बनाने में ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन अगर इस ऊर्जा की खपत जरूरत से ज्यादा बढ़ती जाए और लगातार बढ़ती जाए, तो क्या हम हमेशा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर बोझ डालते रहेंगे या सिर्फ उसी पर निर्भर रहेंगे? देखिए, यहाँ पर हम आपसे जो बात कर रहे हैं ऊर्जा आत्मनिर्भर होने की, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिजली का प्रयोग ही बंद कर दें, बल्कि यहाँ हम आपसे कहना चाहते हैं कि ऊर्जा की अपनी जरूरतों को समझना, उसकी बर्बादी को रोकना और जहाँ तक संभव हो स्वच्छ और नवीन ऊर्जा स्रोतों को अपनाना। और हमारे पास तो देखा जाए ऊर्जा का ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जो हमारे दिन की शुरुआत से ही हमारे सामने होता है। आप सही समझी, हमारा इशारा सूरज जी की तरफ है, यानी कि सौर ऊर्जा। आज आपने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखेंगी कि आज लोग घरों, संस्थानों, कार्यालयों, दुकानों और अनेक स्थानों पर सोलर पैनल लगा रहे हैं, जो कि सूर्य की रोशनी से बिजली बनाने में मदद करते हैं। अब सोचिए, आपकी छत जो सिर्फ छत रही है, बल्कि आपकी जरूरत पड़ने पर ऊर्जा का एक छोटा सा स्रोत भी बन सकती है, तो क्यों ना हम भी इस नवीन जो एक प्रचलन है उसको अपनाएं और खुद भी ऊर्जा आत्मनिर्भर बन जाएं। सोचिए, सुबह के सूरज की रोशनी के साथ ही आपके घर की ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी होने लगे और साथ ही ये बजट फ्रेंडली भी हो, तो क्या ये आपके लिए और ज़्यादा अधिक सुविधाजनक नहीं होगा? और इसके अलावा ये तो चलिए सखियों एक विकल्प हो गया कि हम आपको सुझा रहे हैं कि आप सौर ऊर्जा को अपना सकती हैं, लेकिन अगर आपने नहीं भी अपनाया है कोई बात नहीं, हम कम से कम इन ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल जो करते हैं उसमें समझदारी बरत सकते हैं। तो जब भी आप कोई उपकरण खरीदें तो आप ये ना देखें कि उसकी डिज़ाइन कैसी है, उसका प्राइस क्या है, बल्कि ये देखें कि वो एनर्जी सेविंग करता है या नहीं करता है, क्योंकि आप देखिए उसमें कुछ स्टार्स बने होते हैं। तो जिस भी उपकरण में आपको लगे कि 5 स्टार्स बने हैं, इसका मतलब कि वो आपकी एनर्जी सेव करता है, आपके बिजली के बिल पर बोझ कम पड़ता है। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकलें तो जाहिर सी बात है लाइट्स और फैन ऑफ कर देते हैं, लेकिन सिर्फ घर के अंदर रहते भी अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं तो कहीं भी अननेसेसरी टीवी या फिर फैन या फिर कोई अन्य उपकरण को वहां चलता ना छोड़ें। बच्चों को भी सिखाएं कि हर समय टीवी ना चलाएं, फ्रिज का दरवाजा बार बार ना खोलें और खाली कमरों में लाइट और फैन ना चलने दें। इससे उनके अंदर भी इस विषय को लेकर जागरूकता आएगी और वो खुद भी इसके कंजर्वेशन पे बात करेंगे और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। इससे धीरे धीरे 1 से 2 और 2 से 4 लोगों तक बात पहुंचेगी और एक समय बाद हजारों लाखों घरों में ऊर्जा की बर्बादी कम होगी। सखियों, आने वाले समय में अगर हमें किसी चीज़ का संरक्षण करना है तो वो है ऊर्जा, तो उसको हमें रोकना है, उसकी बर्बादी को, और उसको संरक्षित करना है। और आपको भी अगर ऊर्जा आत्मनिर्भर बनना है तो बस 3 मंत्र याद करिए। ऊर्जा बचाइए, यानी कि जब जरूरत नहीं हो तो अनावश्यक रूप से उपकरणों का प्रयोग नहीं करना है, ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है, ऊर्जा कुशल यानी कि जो एनर्जी सेविंग उपकरण होते हैं उनको खरीदना है और स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प को तलाशना है। याद रखिए, ऊर्जा कम नहीं है बल्कि उसकी हमें बर्बादी रोकनी है।

0: इंसान चला जाता है, लेकिन उसके संस्कार, उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। पितृपक्ष हमें इन्हीं रिश्तों और स्मृतियों से जुड़ने का अवसर देता है। ये सिर्फ रस्मों को निभाने का समय नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को याद करने, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके दिए जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने का भी अवसर है। और इसी विषय पर आइए जानते हैं हमारी एक और सखी अनीता जी के विचार। तो अनीता जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नारी संसार। अनीता जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पितृपक्ष को एक धार्मिक परंपरा न मानकर हम इसे रिश्तों और स्मृतियों से जोड़कर कैसे देख सकते हैं?
1: आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। पितृपक्ष कोई पूजा नहीं, थैंक यू बोलने के 15 दिन हैं। हम पितरों को पिंड नहीं, अपने अधूरे सॉरी या थैंक यू दे रहे होते हैं, जो जीते जी नहीं कह पाए। ये वो दिन है जब

0: टी-शर्ट, दादी की रसोई की खुशबू और नाना की कहानियाँ फिर से जिंदा हो जाती हैं। पितृपक्ष हमें सिखाता है, रिश्ते शरीर से जाने से खत्म नहीं होते, वो आदतों से, संस्कारों से आगे चलते हैं। हम जो आज हैं, वो हमारे अकेले का नहीं, वो कई पीढ़ियों के त्याग का ब्याज है। इस बहाने ही सही पूरा परिवार एक टेबल पर बैठता है और बच्चे पूछते हैं, ये फोटो में कौन है, और कहीं से कहानी शुरू हो जाती है। पितरों के नाम पर किसी भूखे को खाना खिलाना असल में उनकी अच्छाई को आगे बढ़ाना है। पितृपक्ष एक आईना है। आज हम अपने बड़ों को जैसे याद करेंगे, कल हमें हमारे बच्चे हमको ऐसे ही याद करेंगे।
1: आपको क्या लगता है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार और जीवन मूल्य दिए हैं, उन्हें आज की पीढ़ी तक पहुंचाना क्यों जरूरी
0: है? संस्कार और जीवन मूल्य पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ रीति रिवाज नहीं, जीने का ढंग है। हमारे पूर्वज ने हजारों साल के अनुभव से सीखा है कि परिवार कैसे चलता है, मुश्किल में धीरज कैसे रखते हैं, कम में संतोष कैसे करते हैं। संस्कार वही दिशा देते हैं। सुविधा बढ़ी है, सहनशीलता घटी है। पहले संयुक्त परिवार, त्याग, अतिथि सत्कार, बड़ों का सम्मान, ये सब हमें अकेलेपन और से बचाते थे। अगर ये मोल टूट गए तो हम बाहर से मॉडर्न तो दिखेंगे, अंदर से खाली हो जाएंगे। संस्कार रोकते नहीं, बचाते हैं। लोग सोचते हैं संस्कार मतलब बंधन है, असल में जैसे सच बोलना, कृतज्ञ रहना, संयम रखना, ये हमें गलत फैसलों से बचाते हैं। आज की पीढ़ी फ्रीडम चाहती है और ये मूल्य ही फ्रीडम को जिम्मेदार बनाते हैं। भाषा, खान पान, त्योहार, कहानियाँ, ये सब हमें बताती हैं कि हम कौन हैं। नहीं तो हम ग्लोबल तो बन जाएंगे पर अपनी पहचान खो देंगे। ये भी जरूरी है डांट कर नहीं, जी कर। बच्चे उपदेश से कम, आचरण से ज्यादा सीखते हैं।
1: अच्छा अनीता जी, आपको क्या लगता है कि पितरों को याद करने का अर्थ सिर्फ श्राद्ध और तर्पण तक सीमित है, या फिर हमारे अच्छे कर्म भी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकते हैं, या फिर हम किसी और तरीके से भी अपनी कृतज्ञता, श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर सकते हैं?
2: प्रश्न पूछा। मुझे लगता है श्राद्ध और तर्पण तो एक प्रतीक है, कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका, पर पितरों को याद करने का असली अर्थ सिर्फ उन दो दिनों तक सीमित नहीं है। मेरे हिसाब से तीन तरह की सच्ची श्रद्धांजलि होती है। तर्पण, कृतज्ञता का भाव, जल पिंड देना, ये हमें याद दिलाता है कि हम एक कड़ी हैं, हमारे शरीर में उनका अंश है, हमारी पहचान में उनका नाम है, ये रुक कर धन्यवाद कहना है। दूसरा है अच्छे कर्म, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। अगर हमारे माता पिता, दादा दादी, ये ने ईमानदारी, मेहनत से दया का संस्कार दिया और हम जीवन में वहीं से जी रहे हैं, तो इनसे हमें बड़ी श्रद्धांजलि क्या? हमारा अच्छा चरित्र ही उनका जीवित स्मारक है। लोग कहें किसी अच्छे परिवार के बच्चे हैं तो समझिए पितर। तीसरा है उनके अधूरे अच्छे कामों को पूरा कर। अगर कोई सपना देखा है, बच्चों को पढ़ाना, किसी की मदद करना और हम उसे आगे बढ़ाएं तो भी तर्पण ही।
1: और अब बात करते हैं आज की व्यस्त जीवन शैली की। देखिए, बहुत सारी चीजें हमारी इस जीवन शैली के कारण हमसे पीछे छूटती जा रही हैं, और इस जीवन शैली में क्या हम किसी तरह अपने पूर्वजों की स्मृतियां और परिवार की परंपराओं को अपनी अगली पीढ़ी के साथ जीवित रख सकते हैं? और अगर आपको लगता है कि ऐसा हम कर सकते हैं तो कैसे किया जा सकता है ये काम?
0: बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। व्यवस्था रहेगी तो जड़े अगर छूट गई तो हम कितने भी आगे चले जाएं, अंदर से खाली लगेगा।

0: पूर्वजों की स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक जीवित रखने के लिए बड़ा कुछ नहीं, छोटे छोटे काम ही काफी हैं। पहला है, कहानियों को दोबारा जिंदा कीजिए। रोज 10 मिनट ही सही, दादा दादी कैसे रहते थे, किस संघर्ष से परिवार बना, उनका कोई जिम्मेदार किस्सा, बच्चे किताब से कम कहानी से ज्यादा सीखते हैं। एक परिवार कहानियों वाली डायरी बना लीजिए। दूसरा है, परंपरा को बोझ नहीं त्योहार मनाई। दीपावली पर सब मिलकर दिया बनाना, होली पर दादी वाली गुजिया, श्राद्ध पर सिर्फ कर काट नहीं बल्कि उस दिन उनके फोटो पर फूल रखकर उनके एक गुण के बारे में बात करना। तीसरा है, खाने और भाषा में संस्कृति है। हर परिवार की एक दो रेसिपी होती है जो सिर्फ वहीं बनती है, उसे लिख लीजिए, वीडियो बना लीजिए। बच्चों को अपनी बोली के दो चार शब्द ही सिखा दीजिए, रिश्ता बना रहता है। चौथा है, फोटो और वंश वृक्ष पुराने एल्बम को फोन में स्कैन करके एक फोल्डर बना दीजिए। हमारा पर एक छोटा सा फैमिली ट्री बच्चों के साथ बैठकर बनाइए। जब उन्हें पता लगे होगा वो किसकी संतान है तो जिम्मेदारी खुद आएगी। पांचवा है, संस्कार दिखाकर बोलकर नहीं। सबसे जरूरी, हम अगर छोटों की मदद करते हैं, कम संतोष करते हैं तो बच्चे देखकर ही सीख जाते हैं।
1: देखियो, अनीता जी ने हमें काफी अच्छी बातें बताई कि किस तरह से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी पुरानी पीढ़ी सिक्की विरासत सौंप सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारी सखियां भी इनकी बात से सहमत होंगी। इस विषय में क्या सोचती हैं हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम लेते हैं अनीता जी से विदा। अनीता जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

ऐसा क्यों? बात खाना बनाने की और रेसिपीज की चल रही थी, तो हमारा ये मानना है कि घर की रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनता बल्कि पूरे परिवार की सेहत भी बनती है। सुबह की चाय की महक से लेकर आपकी बनाई स्पेशल डिश की खुशबू हमारी रसोई से जुड़ी होती है। लेकिन जरा गौर करिए कि क्या हमारी रसोई जितनी सुंदर और साफ दिखाई देती है, क्या वो वाकई में उतनी साफ है या नहीं? तो चलिए जरा पास चल के देखते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत साफ किया, लेकिन फिर भी क्या कहीं कुछ छूट गया, तो कहाँ से करें शुरुआत? तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आपकी चिमनी की चिकनाई, गैस के आसपास जमे तेल, फ्रिज के हैंडल, मसालों के डिब्बों के ढक्कन, सिंक, कटिंग बोर्ड और वहां रखे कपड़ों से, क्योंकि कई बार यही छोटे छोटे कोने हमारी नजरों से अक्सर छूट जाते हैं। तो इस बार चलिए सफाई की शुरुआत करते हैं आपके प्लेटफॉर्म, अलमारियों, गैस और आसपास की जगह और अंत में सिंक और फर्श से। गैस के चूल्हे की तरफ जहाँ तेल छलक गया था, सब्जी का थोड़ा मसाला गिर गया था और हमने जल्दी में सोचा था कि बाद में साफ कर लेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये गंदगी और चिकनाई की मोटी परत बन जाती है और हमारे किचन की हाइजीन पर ये एक धब्बा भी कह सकते हैं या एक हमला भी कह सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि खाना बनाने के तुरंत बाद थोड़ा सा समय निकालकर गैस और आसपास की सतह को साफ करते रहना है। अब बात करेंगे ऐसी चीज की, वैसे तो वो हर चीज को साफ करती है, लेकिन अगर उसको ही साफ ना किया जाए तो वो गंदगी का सबसे बड़ा स्रोत बन जाती है, और ये है हमारी रसोई में इस्तेमाल में आने वाले कपड़े, डस्टर्स और स्पॉन्ज, जिससे कि हम अपने बर्तन साफ करते हैं। इनको भी सखियों नियमित रूप से धोना और अच्छी तरह सुखाना बहुत जरूरी है, वरना ये ही एक कीटाणुओं का जो गढ़ बन जाता है, जिससे हमारे पूरे किचन की हाइजीन और स्वच्छता दांव पे लग सकती है। आप अपने जब भी खाना बनाती हैं तो फल और सब्जियों को तो अच्छी तरह साफ करती ही होंगी, लेकिन याद रखें कि सब्जी काटने वाले कटिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड और चाकू को भी अच्छी तरह साफ करके रखना जरूरी है, वरना जो संक्रमण है वहां से भी पनप सकता है। खाना बनाने से पहले और खाने के पहले और बाद में हाथ धोना तो सभी याद रखते हैं, लेकिन चलिए अब जरा फ्रिज खोल के देखते हैं। अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन क्या ये क्या डिब्बे में कल की सब्जी रखी है? एक डिब्बे में कटा नींबू, दूसरे में कुछ और। सखियों, फ्रिज भले ही ठंडा रहता है लेकिन फिर भी उसके अंदर साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। जरूर से ज्यादा सामान रखने से फ्रिज की कूलिंग भी प्रभावित होती है और जो हमने बात की थी ऊर्जा संरक्षण की, वो भी नहीं हो पाती। भले ही हमारा फ्रिज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको साफ और खाली रखना भी जरूरी है। इसी तरह हमारी रसोई के सिंक की अगर साफ सफाई ना की जाए तो वहां आपके डस्टबिन से ज्यादा कीटाणु पनप सकते हैं, तो सिंक को साफ और सूखा रखें। और रसोई घर में डस्टबिन तो सब रखते हैं, लेकिन साथ ही रखना है उसका ख्याल, डस्टबिन को भी समय पर उसको साफ करें और तेज धूप में सुखाएं। तो सखियों, ये तो ही आपकी रसोई की सेहत की बात, अब थोड़ा आपका मनोरंजन भी कर देते हैं।

सखियों, अब आपके लिए लेकर आए हैं हम आज बदलते मौसम में कैसे बैठाएं स्वास्थ्य तालमेल से संबंधित कुछ टिप्स। लेकिन इन टिप्स से पहले आइए हम जानते हैं आज के सवाल का जवाब जो हमने आपसे पूछा था अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। हमारा सवाल था कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, और सही जवाब है 14 दिसंबर। और ये जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता है राजेश वर्मा जी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी जी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, अनोखे लाल जी कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से, जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य, हरीश शर्मा नैनीताल उत्तराखंड से, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी जी। और साथ ही ये सही जवाब आया है हमारे पास विष्णु मिस्कीन जी ने भेजा है, और साथ ही विष्णु मिस्कीन, रितिका, आरव, वाणी और समस्त मिस्कीन परिवार। योगराज मस्के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सही जवाब इनका भी आया है। गांव विटोडा बोयर तहसील मंगलोरपुर पीर जिला वाशिम पश्चिमी विदर्भ से, और ये जवाब भेजा है हमारे पास हीरा मणि वर्मा जी ने दतरेगी भटापारा से, और राजीव सिंह यादव जी, दिनेश वर्मा जी, नाज रेडियो क्लब परेली से निसार अहमद अंसारी जी ने भी इस सवाल का सही जवाब भेजा है। और एक है हमारे और श्रोता नानक खन्ना जी, तो इन सब ने सही जवाब भेजा है और हमारे कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सखियों, अब चलते हैं आपकी सेहत की तरफ। सखियों, मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है, सुबह शाम की हवाओं में हल्की ठंडक घुलने लगी है, और ऐसे में ज़रूरी है कि हम भी अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव ले आएं, ताकि मौसम तो बदले पर हमारी सेहत ना बिगड़े। देखिए, मौसम ठंडा होने पर शरीर में पानी की मांग कम हो जाती है, लेकिन फिर भी पानी पीना ना छोड़े। अपनी थाली को मौसम के साथ बदल दें। अब पैकेज तले भुने और स्नैक्स की जगह मौसमी फल, सब्जियां, सूप और घर का बना ताज़ा भोजन शामिल करें। सुबह की धूप को रूटीन बनाएं। कुछ समय प्राकृतिक रोशनी में बिताना दिन की शुरुआत को और बेहतर बना सकता है। एक्सरसाइज का समय बदलें, एक्सरसाइज नहीं, ठंड में आउटडोर वॉक का समय सुविधा अनुसार बदल सकती हैं। और अपने स्लीप रूटीन का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। शरीर के छोटे छोटे संकेतों को समझिए, क्योंकि इन्हें नज़रअंदाज करना आपकी सेहत के लिए भारी पड़ सकता है। और अब घड़ी का इशारा है कि हम आपसे अनुमति लें, तो सखियों दीजिए अपनी रेडियो सखी शिप्रा श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार।

नारी संसार, अभी आपने सुना शिप्रा श्रीवास्तव के साथ, प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की। आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 6 बजे हैं, अब आप सुनिएगा युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, आबिदा फातिमा के साथ। प्रस्तुति है

हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, आपकी रेडियो हम सफ़र आबिदा फातिमा लेकर आ चुकी हूँ आपका और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। और साथियों, आज भी मैं आपसे बातें बहुत सारी करने वाली हूँ, आपको खूबसूरत खूबसूरत नगमे भी सुनवाने वाली हूँ। और जी हाँ, आप अपना एक सेगमेंट भी आज एंजॉय करने वाले हैं, जो कि होने वाला है प्यार की धुन। तो प्यार की धुन में आप भी जरूर गुनगुनाइएगा उस धुन के साथ। और फिलहाल अभी आइए शुरुआत करते हैं इस प्यार से सॉन्ग के साथ।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आप बने अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। आपके कानों में आवाज और चेहरे पर मुस्कान घोलने आ गई हूँ मैं। ट्यून इन रहिए क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो आपके वार्डरोब से लेकर आपकी जिंदगी तक हर जगह फुल कंफर्ट देती है। जी हाँ, तारीख है 7 अक्टूबर और आज पूरी दुनिया मिलकर मना रही है वर्ल्ड

कॉटन डे यानी कि विश्व कपास दिवस। अब आप सोचेंगे कि भाई ये रुई और सूती कपड़ों के लिए भी क्या भला कोई खास दिन होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। जरा सोचिए आप जिस कॉटन की टी शर्ट या कुर्ते में इस वक्त एकदम चिल कर रहे हैं, आपको बढ़िया लग रहा है, वो सिर्फ एक धागा नहीं है दोस्तों, ये धरती का वो सफेद सोना है जो लगभग 75 से ज्यादा देशों के करोड़ों किसानों और बुनकरों के घर का चूल्हा जलाता है। अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, आइए जानते हैं। साल 2019 में अफ्रीका के चार बड़े देशों बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और मौली, जिन्हें कॉटन फोर कहते हैं, ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि पूरी दुनिया हमारे कपास से सजती है तो इसका एक ग्लोबल सेलिब्रेशन तो बनता है। और बस यूनाइटेड नेशंस ने मोहर लगा दी और 7 अक्टूबर बन गया वर्ल्ड कॉटन डे। आइए जानते हैं कि भाई ये इतना

अक्टूबर बन गया वर्ल्ड कॉटन डे। आइए जानते हैं कि भाई ये इतना खास क्यों है। प्लास्टिक और सिंथेटिक कपड़ों की तरह ये हजारों साल कचरे में नहीं सड़ता है, मिट्टी से आता है और आसानी से मिट्टी में मिल जाता है। गर्मी में पसीना सोखे और ठंड में भी लेयरिंग का बेस्ट ऑप्शन बनता है। तो जनाब आज के दिन अपने उस फेवरेट सूती शर्ट को जरा प्यार से देखिए और उन सभी किसानों को एक बार तो दिल से थैंक यू कीजिए जिनकी कड़ी धूप की मेहनत आपको इतना कूल और कंफर्टेबल रखती है। स्टे स्टाइलिश, स्टे नेचुरल और सुनते रहिए मेरे साथ अपना फेवरेट प्रोग्राम युवाणी।

आप बनी हुई अपनी दोस्त फ्रेंड हो आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी सिर्फ और सिर्फ 100.4 मेगाहर्ट्ज़। तो प्रोग्राम में अब वक्त है हमारे आज के सेगमेंट चक्रव्यूह का। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि चक्रव्यूह के जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं उसके बिल्कुल सही सही उत्तर आप हमें लिखकर भेजेंगे। तो आइए हम अपने चक्रव्यूह का ये राउंड शुरू करते हैं। और हमारे चक्रव्यूह का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है? एक बार फिर से सुनिए, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मानव शरीर में खून को साफ करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? और हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? एक बार फिर से सुनिए, भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? और हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से शरीर को मुख्य रूप से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से शरीर को मुख्य रूप से कौन सा विटामिन मिलता है? और हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप कौन सा है? और हमारा चक्रव्यूह का आज का अंतिम क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस रूप का उपयोग होता है? एक बार फिर से सुनिए, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस रूप का उपयोग होता है? तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी क्वेश्चन आज आपको चक्रव्यूह के बताए हैं आपने उन्हें नोट कर लिया होगा और आप उसका बिल्कुल सही सही उत्तर हमें लिख भेजेंगे।

वेलकम एक दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बने हुए अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और जी हाँ साथियों, जिस सेगमेंट की मैंने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में बात की थी, प्यार की धुन, वो सेगमेंट शुरू करते हैं। और आइए हम उस प्यार की धुन में सुनवा दें आपको ये प्यारा सा प्यार वाला सॉन्ग। आप भी जरूर गुनगुनाइए।

से लागू हुई, और इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 1962। साथियों, ये कानून 6 अक्टूबर 1860 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसे पूरे देश में 1 जनवरी 1862 से प्रभावी किया गया। और सही उत्तर देने वालों में नाम शामिल हैं शाहनूर अंसारी, धर्मेंद्र छिपा, मोहम्मद फरमान, कपिल छिपा, पूजा परिहार, जमुना प्रसाद, राम कुमार रेवार, KPS चौहान, आसिफ अली, आरवी सिंह, आबाद खान, राधेश्याम अंजुम, मुकेश कश्यप, जॉन डी कैस्ट्रो, अनोखेलाल, लाल मोहम्मद अंसारी, प्रवीण चौहान, नौजहत फातिमा, गंगा सिंह रावत और हमारे अन्य सभी साथी।

हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा पता युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और अब दीजिए अपनी दोस्त साबिता को इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी आबिदा फातिमा के साथ, प्रस्तुति थी गौरव सक्सेना की। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत, तेजा भैया और कृष्णा भैया के साथ। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की।

0: आवो कृष्ण भैया, राम राम। बड़ा लमकत झमकत चले आ रहे हो, का चक्कर है? बहुत जल्दबाजी में हो।
1: अरे राम राम राम राम तेरे भैया राम राम, और साथ ही साथ कार्यक्रम ग्राम जगत सुनने वाले हमारे सब भैया बहनों को भी हम दोनों भैया की
0: राम राम।
1: भैया आप कह रहे हैं कि बड़ा लमकत झमकत चले आ रहे हो, तो देखो लमकत झमकन की तो भैया बात है, क्योंकि 6:30 बज चुके, कार्यक्रम भी अपने भैया बहनों तक पहुँचाने हो, तो भैया जो झोला लाए हम चले आ रहे हैं लमकत झमकत, क्योंकि ढेर सारी जानकारी जो आज कार्यक्रम में जुटाई है वो अपने भैया बहनों को पहुँचावेंगे। और हमारे भैया बहन भी देखो वॉल्यूम और तेज कर लेते हैं कि भैया आज पता ना कौन सी जानकारी मिलेगी सुनंताई।
0: हाँ, सही कह रहे भैया।
1: काम काज के संग संग जो भैया रेडियो से जो जानकारी होती है उनको सुनकर हमारे जो भैया बहन है, ग्रामीण भैया बहन है, वो लाभान्वित तो होते हैं, और जाके संग संग भैया जो काम है वो भी अपने करते रहते हैं।
0: हाँ सही बात है, एक पंथ दो काज, क्योंकि संग संग में अपने जो काम धंधे चल रहे हैं खेती बाड़ी के, अब धान की फसल कटी रही है तो धान उठा रहे हैं, और दूसरी बात जो है संग संग में उनको हमारे जो कार्यक्रम के दौरान जो महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी जाते हैं उनको बड़ा चाव से सुनते हैं हमारे जो ग्रामीण भैया बहन है।
1: अब भैया चाव से क्यों ना सुना, देखो रेडियो एक ऐसा माध्यम है भैया कि जो काम होता है वो अपने चलते रहता है, और रेडियो अपने रख लो दीवार पे और बज रहो भैया, तो काम ना रुक रहो और अपने रेडियो सुनते आ रहे हैं भैया, और जानकारी जो मिल रही है उनको भैया अपने अमल में ला रहे हैं। तेजा भैया देखो अपने सब गाँव में रहते हैं, और गाँव में रह के भैया खेती बाड़ी है, जाके संग संग पशुपालन है, और जो खेती से जुड़े जो व्यवसाय है उनको अपने सब करते हैं भैया, और अपने सबको जय प्रयास रहता है कि जो काम कर रहे हैं बाद से अच्छी पैदावार अच्छो मुनाफा मिले, इसीलिए जी तोड़ मेहनत करते हैं भैया, अब ऐसे फिर खेतन में लगे रहते हैं।
0: बिल्कुल, और जो है होनू जो चाहिए, क्योंकि आज के समय में देख रहे हो एक काम से तो काम चलना रहो है, और जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं खेतीबाड़ी के संग संग और जो व्यवसाय हैं जैसे कि पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, बटेर पालन है, और इस तरीका के जो व्यवसाय हैं अगर हमारे किसान साथी अपना के चलेंगे तो जरूर अपने को लाभान्वित करेंगे और अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तेजा भैया, आप बात कर रहे हैं कि भैया धान की कटाई जो हमारे किसान साथी कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जो फसल अवशेष हैं उनको भी हम जो प्रबंधन है सही तरीके से कर दें। अब आपको मालूम होगा कि जब धान के जो ठूंठ रह जाते हैं, जो अवशेष रह जाते हैं, उनको भैया हमें खेत में ही सड़ाने हैं।
2: बिल्कुल, अब तो देख रहे हो कई तरीका की मल्चर मशीनें आ गई हैं, और जिनके माध्यम से जो नरई रह गई है हमारे खेतन की, बाको काट के और बाई में उसकी कुट्टी बना के और उसकी मिट्टी में मिलाओ जा सकता है।
1: और भैया जब मिट्टी में जो है मिल जाएगी जो अवशेष हैं, तो वहां से जो देसी खाद है वो भी हमारे खेतन में ही बन जाती है और वो हमारी फसलों के लिए बड़ी लाभदायक होती है। अब भैया जो तो आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों भैया बारिश हुई, तो जो हमें आगामी जो फसल हमें बुवाई करनी है, लेकिन चूंकि खेत हमारे गीले हैं उनमें ईंट अभी ना आ पाई, तो भैया ईंट के बाद में जो हम जुताई करेंगे उसके बाद में जो फसलें हैं उनकी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं कि भैया उनकी बुवाई करनी है, तो कोई बात नहीं भैया, समय की बात है, कुछ इंतजार कर लें और जाके साथ साथ जो फसलें हमारी तैयार हैं उनकी कटाई अच्छे तरीके से करें, लेकिन जाके साथ साथ समय को भैया खेती में विशेष ध्यान रखें क्योंकि समय की खेती होती है।
2: बिल्कुल, और देख रहे एक बात और देखी आपने, जो महीना कौन सा चल रहा हुआ है, जो महीना कुंवार को चल रहा हुआ है और कनागतो चल रहे हैं।
1: हाँ, जो तो सही कह रहे भैया,
2: और जो कनागतन में जो भी हमारे भैया बहन हैं, वे अपने
1: जो मान होते हैं,
2: हाँ हाँ,
1: उनको भैया बुलाते हैं, है ना।
2: हाँ।
1: और हम तो देख रहे हैं कि वे रामकली चाची हैं हमारे पड़ोस में ना, तो उन्होंने भैया आज अपने मान बुलाए हैं, अपने कनागत कर रहे हैं भैया, और फिर वे थरिया लेके गए भैया छत्तों पर पूड़ी बनाए के, तो कौन के लिए कह रहे हैं आवो आवो भैया।
2: देखो जो हमारी अवधारणाएं हैं और जो हमारे पूर्वज हमें बताए गए हैं, तो उनके अनुसार हमको ये काम करना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल सही बात है भैया, जो अपनों भारत देश है, कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ त्योहारों को देश है, पर्वों को देश है, कोई ना कोई त्योहार है, कोई ना कोई पर्व है, हम मनाते हैं और बड़े मिलजुल के हंसी खुशी के साथ भैया मनाते हैं, है ना। तो तेजपाल भैया देखो, बातें तो अपने भैया बहनों से बहुत सारी करेंगे ही, लेकिन जो जानकारी आप लेके आए

0: रहे हो भीड़ के दौरान जुटाए के, तो वो जानकारी अपने भैया बहनों को सुनवा दीजिए।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो आओ भैया बहनों सुनते हैं जे क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।
2: साथियों, आज हम पहुंचे हैं एक गांव में, तो वहां पे हमारी बातचीत हो रही है एक कामकाजी महिला से। तो हम क्यों ना इनसे जानकारी लेते हैं, इनके अनुभव पूछ लेते हैं इन्हीं के द्वारा। जी, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम ममता कुमारी है। मैं ग्राम रैपरा जागीर की रहने वाली हूँ और फतेहगंज विकास खंड है, तहसील मीरगंज है, जिला बरेली है, और मैं एक बीसी सखी भी हूँ।
2: अच्छा, जानना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पढ़ी लिखी हुई है?
3: हाँ, मैं दसवां पास हूँ।
2: अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि घरेलू कामकाज के साथ साथ आप एक कामकाजी महिला के रूप में काम कर रही हैं, तो घरेलू कामधाम करने के बाद आप कैसे समय निकाल लेती हैं और आपके मन में इस बात की कैसे भावना जागृत हुई कि हमें घरेलू कामकाज के साथ साथ कुछ और काम भी करने चाहिए?
3: हाँ, क्योंकि मैं एक बीसी सखी के रूप में काम करती हूँ और एक समूह भी है मेरे पास में, प्रयास स्वयं सहायता समूह, उससे महिलाओं के लिए लोन भी दिलवाती हूँ और खुद भी लोन लेती हूँ और बीसी सखी हूँ। एक मेरा जनसेवा केंद्र है, वहाँ बीसी प्वाइंट है, वहाँ पैसे का लेन देन भी करती हूँ। अपने बच्चों को स्कूल भेजकर अपना घर का काम निपटा के 10-11 बजे तक मेरा घर का काम निपट जाता है, फिर मैं अपना जनसेवा केंद्र पर बैठ जाती हूँ, वहाँ पैसे का लेन देन भी करती हूँ और बीमा सखी भी हूँ। वहाँ बीमा वाले लोग भी आ जाते हैं, उनसे भी बातचीत करती हूँ, दो चार जितने बीमा महीने में हुए वो मैं जाके बीमा जमा कर देती हूँ। वहाँ लोगों को पॉलिसी नंबर जो भी वो बीमा कराते हैं उनको मैं दे देती हूँ। मैं बीमा एजेंट भी हूँ। 10-11 बजे तक अपना घर का काम निपटाकर अपना रोजगार स्वयं अपना करती हूँ और महिलाओं के लिए समूह से पैसा दिलवा के बकरी पालन, भैंस पालन वो करती हैं। 10-11 महिलाएं होती हैं, जितना उन्हें रुपए की जरूरत होती है उतने ही समूहों द्वारा उनको पैसा दिलवाती हूँ। वो दूध बेच करके अपना जो लोन की किस्तें होती हैं तो वो पाटती हैं। किसी महिला ने दुकान खोली है, किसी ने गाय भैंस ली है, किसी ने बकरी ली है, किसी ने कोई कुछ अपने रोजगार में, वही अपने धीरे धीरे रोजगार को आगे बढ़ा रही है।
2: अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि आप कई तरीके के काम कर रही हैं, बीसी सखी के रूप में काम कर रही हैं और जनसेवा केंद्र भी चला रही हैं। दूसरा ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो पिछड़ी हुई ना रहें और स्वयं अपना रोजगार चला सकें, इसके लिए एक समूह के रूप में भी उन महिलाओं को जागरूक करके उनको छोटा मोटा जैसे कि खेतीबाड़ी से जुड़े हुए जो अन्य व्यवसाय हैं, भैंस पालन है, बकरी पालन है, इस तरीके के रोजगारों के प्रति आप जागरूक करती हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और जो है आज के समय में हम देख रहे हैं कि महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। होना भी यही चाहिए। और जानना चाहूंगा कि आपके परिवार में कौन कौन है?
3: मेरे परिवार में 8-10 लोग हैं। मेरे सास ससुर हैं, देवर हैं और हस्बैंड हैं, दो मेरे बच्चे हैं, देवरानी के बच्चे हैं, 8-10 लोग हैं मेरे।
2: अच्छा,
3: परिवार के।
2: दूसरा ये है कि घरेलू काम काज करने के बाद और भी साथ साथ में इतने काम करना बहुत बड़ी बात है एक तरीके से। दूसरा ये है कि बच्चों को स्कूल भेजना, घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना और भी घरेलू जो सदस्य हैं उनका भी विशेष ध्यान रखना, तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं वो भी निभानी पड़ती हैं। इसके साथ साथ आप जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छे से कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ आपके पास में एक मशीन भी रखी हुई है सिलाई वाली। हाँ, क्या आप सिलाई का भी काम करती हैं?
3: सिलाई भी करती हूँ। जैसे मैं वहाँ से आती हूँ फिर मेरे बच्चे आ जाते हैं जनसेवा केंद्र से, दोपहर के टाइम में 1-2 घंटे का ब्रेक लेती हूँ, फिर मेरे सिलाई वाले लोग आ जाते हैं तो सिलाई के कपड़े लेके वो मैं रात में निपटाती हूँ। ज्यादा नहीं तो 2-1 जोड़ी सिल देती हूँ रात में। सिलाई भी करती भी हूँ, 1-2 घंटे में लड़कियों को सिखाती भी हूँ सिलाई।
2: अच्छा, बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो लड़कियां हैं गांव की वो पिछड़ी हुई ना रहें, शिक्षा के साथ साथ अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपना रोजगार कर सकें, तो इसलिए सिलाई और कढ़ाई बुनाई का काम जो आप सिखाती हैं बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि आप ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही हैं उनके लिए क्या सुझाव देना चाहती हैं?
3: उनके लिए ये है, बहनों किसी से पैसा मत मांगो, बेईमानी मत करो, आराम से ईमानदारी से अपना काम करो, मेहनत करो और जिम्मेदारी से काम करो। पति से पैसे मत मांगो, खुद मेहनत करो, अपने ऊपर स्वयं डिपेंड रहो कि मुझे क्या करना है। भले ही बकरी पालो, भैंस पालो, खुद अपना काम अपने आप स्वयं करो, पति के संग संग सहयोग करो, उनका पैसा थोड़ा बचत करो। हस्बैंड जैसे 10,000 रुपए कमा रहा है तो 10 नहीं तो 5,000 तुम कमाओ महीने के, तो आराम से तुम हमारे घर का खर्चा आगे बढ़ेगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी हमारा घर

0: आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमारी जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, वो अभी भी जागरूक नहीं है। और पहले तो हम देखते थे कि शिक्षा में भी भेदभाव रखा जाता था, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता था, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, लेकिन अब बहुत जागरूक हो गए हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी, और होना भी यही चाहिए। आपका क्या विचार है कि लड़के की शिक्षा में और लड़कियों की शिक्षा में क्या कोई भेदभाव होना चाहिए?
0: नहीं, एक इंच का भेदभाव नहीं, और लड़की को और ऊंचाई पर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। वो क्या पते ससुराल में जाए उसका पति कैसा मिले। अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो खुद अपना काम धाम कर सकती है, अगर वो अनपढ़ है तो बेचारी घर घर में हो रहा है, क्या पता पति कितना मारकूट कर रहा है। अगर वो स्वयं पढ़ी लिखी है तो अपना काम खुद कर सकती है, अगर अच्छा पति है तो दोनों मिलकर अपना काम आगे बढ़ा सकती है।
1: बिल्कुल, और लड़कियों को भी देखो सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है और जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहने में आया है लड़का जो होता है वो तो एक ही घर को रोशन करता है, लेकिन लड़की दो घरों को रोशन करती है।
0: हाँ, जरूर करती है, वो दो घरों को रोशन करती है, प्लस अपने बच्चों को भी रोशन बनाती है और ढिंग पड़ोस वालों को भी रोशन बना देती है, क्योंकि लोगों को समझाती है कि लड़की लड़का में भेदभाव मत करो, लड़कियों को और अधिक पढ़ाओ जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो, किसी से पैसे न मांगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की होती है,
0: रोशनी घर की होती है, बच्चों को भी संभाल सकती है अच्छे से।
1: बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए। दूसरा ये है कि आपके यहाँ पर साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है?
0: हम सुबह 5 बजे उठते हैं, 5:30 पे उठ जाते हैं, फिर हम जल्दी जल्दी अपना घर का सारा काम निपटाते हैं, गाय का, भैंस का और गोबर का भी, और झाड़ू पोछा। 8 बजे हमारे बच्चे निकल जाते हैं, 1-2 घंटे में हमारा घर का काम सब निपट जाता है, खाना पीना जो भी है बना के रख के, झाड़ू पोछा करके, नहा धो के, और फिर हम अपनी दुकान पे बैठ जाते हैं, दुकान पे अपने पैसे का लेन देन करते हैं। अपने समय को हम बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन हम चलते कंटिन्यू हैं।
1: अच्छा, होना भी ये चाहिए, क्योंकि अगर हम खाली समय में अगर बैठेंगे तो खाली समय में जो है फालतू का दिमाग जो है इधर उधर चलाने के बजाय अगर हम अपने आप को जितना बिजी रखेंगे काम धाम में, तो होगा ये है कि हम अपने उस काम में लगे भी रहेंगे, दूसरा ये है उसके प्रति एक के बाद एक हमें रोजगार भी मिलता रहेगा, और जब हमें रोजगार मिलेगा तभी हम खुशहाल रहेंगे, अपने परिवार को खुश रख सकेंगे और अपने बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छे से करा सकेंगे, और अपने आप को भी विकसित कर सकेंगे, अपने घर परिवार को भी विकसित कर सकेंगे। जब हमारा विकास होगा, घर परिवार हमारा अच्छे से विकसित होगा, तभी जो है हमारी एक पहचान होगी, और होना भी यही चाहिए। बाकी हम तो अपने जो भैया बहन है ग्रामीण क्षेत्र के, उनको यही सलाह देना चाहते हैं कि खाली समय इधर उधर ना रहकर कोई ना कोई रोजगार अवश्य करें। बहुत से रोजगार हैं और इन रोजगारों को करने के लिए सरकार के द्वारा भी कई तरीके के अनुदान दिए जा रहे हैं, तो आज के समय में व्यर्थ ना रहकर अपना स्वरोजगार करें। और आप बता रही हैं कि पशुपालन होता है आपके यहाँ?
0: हाँ, हमारे यहाँ गाय भी है, भैंस भी है, उसका हम दूध भी निकालते हैं, अपने बच्चों को भी शुद्ध दूध रखते हैं, और हम अपने बेचते भी हैं, बेच के अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई या अपने हस्बैंड के साथ में उनकी जहाँ कमी है हम पे पैसे इकट्ठे हुए हम उनको दे देते हैं, कि कहाँ जरूरत है कि हमारे बच्चों की फीस जमा होनी है तो हम दे देते हैं, अपने पति का सहयोग करते हैं।
1: बिल्कुल, होना भी यही चाहिए,
0: बच्चों को शुद्ध दूध पिलाते हैं, शरीर पे मेहनत जरूर पड़ती है लेकिन शुद्ध चीज खाते हैं, शुद्ध ही हम अपने बच्चों को खिलाते।
1: बहुत अच्छी बात, हमारे घर की जो चीज है वही हमको शुद्ध मिल सकती है, बाकी बाजार की जो चीजें हैं कई तरीके की तो वो मिलावट भी मिलती है उनमें, लेकिन अगर हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है तो मिलावटी चीजों से बचना है, और दूसरा ये है कि हो सके तो अपने आप को बिजी रखें और अपने काम धाम को खेतीबाड़ी के साथ साथ जो अन्य व्यवसाय हैं उनको अवश्य अपनाएं।
0: शुद्ध दूध, उसमें हम घी भी निकालते हैं, मट्ठा भी निकालते हैं, दही भी बनाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, हस्बैंड को भी खिलाते हैं, परिवार में भी लोग खाते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, दूध गर्म कर दिया, उस पे मलाई उतारी, उसका हम घी बनाते हैं, घी में जो निकला उसका हम मट्ठा बनाते हैं, क्योंकि दूध हमारा सारा कामयाब हो जाता है, उसमें कई चीजें बनाते हैं एक दूध में।
1: बिल्कुल, पशुओं से कई तरीके के फायदे आपने बताए, और इसके साथ साथ देखो गोबर की जो खाद है
0: वो हमारे खेतों में पड़ती है, खेत में पड़ के जैसे गेहूं है, धान है, बाजरा है और मक्का है, उसके लिए लाभदायक होती है, वो लौट के हमारे पशु खाते हैं जब वो बड़ी हो जाती है, और खाद पड़ती है तो खेती अच्छी होती है उसमें।
1: बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई ममता जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं और भी जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए जागरूक करने के लिए बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और लड़कियों के लिए कैसे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए यानी कि अपने पैरों पर कैसे खड़ी रहें, अपना काम वो स्वयं करें, घरेलू साफ सफाई है और भी कई काम धाम आपने बताए, उनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बहनों, देखो अभी आप

0: रहे क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता, जिसमें जानकारी दे रही ममता देवी और आपसे बातचीत कर रहे तेजा भैया। और जितो तो भैया बना देखो, आपने भी जब ये बातचीत सुनी हुई तो समझ गए होंगे कि भैया ममता देवी कितने काम करती हैं और किस तरीका से अपने परिवार को लेकर चल रही हैं, अपने बालकन की पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। और सुबह भैया 4:30 बजे उठ जाती हैं, बाकी बाद जो पशु हैं उनकी अपनी देखभाल करने, कुट्टी सानी करने हैं, बाकी बाद फिर जो जनसेवा केंद्र चला रही है उसको भी चला रही है। एक तरीका से कहा कि भैया पति के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है और अपने परिवार को विकास अच्छे तरीके से कर रही है। और तेजा भैया ऐसी जो हमारी और माताएं बहनें जो कार्यक्रम को सुन रही हैं, तो वो भी अगर अपने परिवार के साथ, अपने पति हैं उनके साथ अगर कंधा से कंधा मिलाकर चलें, सहयोग करें, तो भैया उनको विकास भी अच्छे तरीके से हो पावे।
1: बिल्कुल भैया, देखो कृष्णा भैया, पहले जो है देखते है हमारे यहाँ जो हमारे भैया बहन है, वे सुबह 4 बजे उठकर कंधा पर हल धरते और खेतन पे चले जाते है, और घर की जो महिलाएं हैं वे गेहूं को, बाजरा को, मक्का को चखिया पे पीसनता है बैठे।
0: अरे अरे तेजा भैया, जाते तुम बहुत पुरानी बात कर रहे हो, जो 4 बजे हल्की बात कर रहे हो, तो पहले कठे हाल चलते और जो अपने दादा है, ताऊ है, बड़े बूढ़े है, अपने उठाओ रखो कंधा पे और मचाए अपने बैल और चले गए, अपने दिन जाए गए अपने खेते पे निकल रहे। और घर पर जो अपने महिलाएं ही, जो हमारी अम्मा दादी ही, वे अपने उनने चखिया में काऊ ने अपने गला डाल दो तो अपने पिसौनों कर रही है, कुछ ने भैया उखरी मूसल ले लो वहां कुटाई चल रही है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अब देख रहे हो कि भैया आधुनिकरण युग है, मशीनों को युग है, तो अब उतने काम तो रहना है, घंटन को काम जो है मिनटन में हेरो है, तो कहीं ना कहीं सुख भी हो भैया, लेकिन ये है कि हम जागरूक हमें आज रहने पड़ेगा।
1: हाँ भैया, क्योंकि अगर जब हम जागरूक रहेंगे तभी हम अपना विकास कर सकेंगे।
0: बिल्कुल, अब जागरूक की बात भैया कहिए तो हम तो जब देखते हैं कि भैया गांव में कई जगह जाओ ना, तो कुछ जगह जाओ तो कोई चौपार होती है, वहाँ पर जो ताऊ हैं, चाचा हैं, अपने चिलम पी रहे हैं, कुछ बीड़ी अपने सुलगाए पड़े हैं, कुछ तम्बाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो भैया ऐसे जागरूक होने से कोई फायदा ना है।
1: सही बात है, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो जब धूम्रपान से बचे रहे।
0: अरे ज्यादा से ज्यादा ना हो सके भैया, जैसे तो बचने ही बचने, क्योंकि अपने देखी हुई कि जो गांव में अपने, अरे उनको देख लियो श्यामलाल चाचा को, उनको कुर्ता तुमने को देखो अगले से कहती जाली ऐसे बन गया है।
1: हाँ,
0: अब काय से बनो बताओ,
1: बे बीड़ी के फूल जो गिरते रहते हैं और जो उन्हीं से जो है उनके छेद बन।
0: तो भैया अब आप अपने कपड़ों को नुकसान कर रहे हो और धूम्रपान कर रहे हो, तो भैया जो आपके फेफड़े हैं बेहू खराब हो रहे हैं, जाके संग संग जो पैसा है बहु आपको भैया जा रहा है। और एक चीज और देखी हुई गाँव में बैठे हैं अलाय पे और बालक से कह रहे लला जरा चिलम में तम्बाकू भल्ला, तो बालक चिलम में तम्बाकू ला रहा हो, बैठे में बैठे हैं कि लला जामा जरा तम्बाकू लिया और जा थोड़ी अंगरिया रख लेगी जाके ऊपर, बालक सोच रहे हो दादा जामा मंगा रहे हैं चिलम, पता ना क्या चीज हुई,
1: तो लाओ एकदम मुंह मार।
0: हाँ हाँ, भाऊ ने अपने दो सुट्टा लाए और बीच में अपने माल लाए, तो बालकों पर गलत प्रभाव पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो हम तो भैया जा कहेंगे तेजा भैया अपने भैया बहनों से कि देखो जो नशा पान है, चाहे वो बीड़ी को होए, सिगरेट को होए या गुटखा तम्बाकू को होए, जहाँ से कतई दूर ना है, क्योंकि कहते हैं ना नशा नाश की जो है जड़ होती है। और ऐसो ही भैया अगर काओ तो एक लोकगीत तो है, नशा हर बीमारी लग जाए, नट्ठू लाल लाही उनके साथियों के सुर में, और काओ तो भैया अपने भैया बहनों को सुनवाए दे।
1: हाँ भैया बिल्कुल सुनवाए देते हैं।
0: सुनने के लिए भैया हमारे बहुत से भैया बहनों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फरमाइश भी भेजी है भैया, उनकी फरमाइश को भी कार्यक्रम में शामिल कर ले रहे हैं। तो ये फरमाइश हमको मिली है ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से, लिखने वाले हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव और केशव यादव की।
1: और ये सादुल शहर राजस्थान से लिख रहे हैं रामकुमार रेवाड़ भाई, इनके समस्त परिवार के लोग, ग्रामबा पोस्ट गोठा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी, शिवम मिश्रा भाई, इनके समस्त परिवार के लोग।
0: और ये फरमाइश हमको भेजी है कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य ने। और यहीं से जो फरमाइश हमको मिली है अनोखलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, लिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य की।
1: और कस्बा केवलड़िया नवाबंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज गंगवार, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश मौर्य, राजू, चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल गंगवार और संजीव गंगवार।
0: और ये फरमाइश भेजी है सोशल मीडिया के माध्यम से मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद बारसी और अनम ये सब अब्बासी ने। और ये फरमाइश हमको मिली है जिला बदायूं ग्राम दूनानगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरता और अंतमा की।
1: तो आओ भैया सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश पे जो प्यारो लोकगीत।

0: तो भैया बहनों देखो, अभी हम सब ने मिलकर सुनो जो प्यारो सो लोकगीत, नशा हर बीमारी लग जाए। और तेजा भैया देखो, इस लोकगीत से भी हमको जय संदेश मिलो कि जो नशा है वो नाश की जड़ है, नशा से हमको दूर रहना चाहिए। और तेजपाल भैया, अब आप देख रहे हो कि मौसम बदल रहा है।
1: हाँ भैया, मौसम बदल रहा है, बरसात को मौसम अब खत्म हो गया है।
0: हाँ, खत्म हो गया। और आपने देखी होगी कि भैया सुबह को अब तो गांव में जो है कोहरा ये सो आ जाता है भैया, और दिन में तेज तापमान हो रहा है, रात में मौसम ठंडो हो जाते, यानी तापमान गिर जाते, तो एकदम भैया जो बदलाव का मौसम है, ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य को भी विशेष ध्यान रखने हैं। कहते ना कि बदलते मौसम में जो स्वास्थ्य होता है वो हमारा डिगमगा जाता है।
1: बिल्कुल, और स्वास्थ्य न डिगमगाए जाके लिए विशेष समय ध्यान रखने पड़ेगा अपने खान पान को और साफ सफाई को।
0: बिल्कुल।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और तेजा भैया देखो, अब कार्यक्रम ग्राम जगत से अपने भैया बहनों से विदा लेने की बेला भी हल्के हल्के आ चली है। तो हम तो अपने भैया बहनों से कहेंगे कि भैया आप अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें, जो हमारे घर में नन्हे मुन्ने बालक हैं उनको भी विशेष ध्यान रखें, जाके संग संग भैया जो हमारे खेतों में फसलें लगी हैं उनकी भैया समय से कटाई करें, और जो नई फसल हम लगाने जा रहे हैं उनको भी अच्छी तरीके से खेत में गोबर की देसी खाद मिलाने के बाद में ही रोपाई और बुवाई करें। फिलहाल अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारियों के साथ हम दोनों भैया फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने भैया कृष्णपाल
2: और अपने भैया तेजपाल को दे अनुमति। भैया बहनों
1: राम राम।

ग्राम जगत। अभी आप सुन रहे थे तेजा भैया और कृष्णा भैया के साथ। प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं IVRI द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि पाठशाला। आज का विषय है दुग्ध मूल्य संवर्धन के माध्यम से आय के अवसर। विशेषज्ञ हैं राज

0: सवाल और आपसे बातचीत कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव।
1: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।
2: किसान बहनों भाइयों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और आज का कार्यक्रम भी हर बार की तरह बहुत ही नया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इस कार्यक्रम में हम आपके सामने कुछ न कुछ नया विषय लाते हैं जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले, ज्ञानवर्धन हो। तो आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा है, वो है दुग्ध मूल्य संवर्धन के माध्यम से आय के अवसर। और हमारे बीच जो है एक्सपर्ट आ चुके हैं, IVRI बरेली से हैं राज सुवालका जी, जो STO हैं यानी कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर हैं LPT यानी कि लैब स्टॉक प्रोडक्शन पशुधन उत्पाद विभाग से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा उद्देश्य ये समझना है कि एक छोटा या सीमांत किसान कम पूंजी से डेयरी शुरू करके दूध का बेहतर मूल्य कैसे प्राप्त कर सकता है। हम ये भी समझेंगे कि दूध को बेचने की बजाय दही, पनीर, छाछ, लस्सी या अन्य दुग्ध उत्पादों में बदलकर मूल्य संवर्धन कैसे किया जा सकता है और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है।
2: बिल्कुल, सबसे पहला जो सवाल हमारे किसान बहनों भाइयों के मन में आ रहा होगा कि ये क्या चीज है दुग्ध मूल्य संवर्धन, इसको थोड़ा सा सरल करके बताइए।
3: जी बिल्कुल, किसान जब पशु से प्राप्त दूध को सीधे बेचता है तो उसे दूध का बाजार का मूल्य कम मिलता है, लेकिन उसी दूध को स्वच्छता और उचित तकनीक के साथ दही, छाछ, लस्सी, पनीर बनाकर बाजार में बेचा जाए तो किसान उस दूध से अधिक आर्थिक मूल्य प्राप्त करने का अवसर बना सकता है। इसी को हम दुग्ध मूल्य संवर्धन कहते हैं।
2: तो वैल्यू एडिशन करके दूध को बेचने की जो बात है उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बात यह है कि जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनके लिए ये कैसे ज्यादा ही महत्व रखता है।
3: देखिए, छोटे किसान के पास अक्सर जमीन एवं पशुओं की संख्या सीमित होती है और पूंजी भी सीमित होती है। ऐसे किसान के लिए हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वह ज्यादा पशु खरीद कर ही अपनी आय बढ़ाए। वह अपने उपलब्ध संसाधनों से प्रति लीटर दूध का बेहतर मूल्य प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि गांव में ताजे दही या पनीर की अच्छी मांग है तो किसान अपनी दूध की मात्रा का कुछ हिस्सा इन उत्पाद में बदलकर स्थानीय ग्राहकों को बेच सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले हमें बाजार को समझना होगा और उसी के अनुसार हमें उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा।
2: तो बाजार को फिर कैसे समझा जाए?
3: जी, उसके लिए हम सर्वे कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने आसपास के जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उसका एक सर्वे कराकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर मांग किसकी है। जैसे अगर वो ग्रामीण क्षेत्र है तो दूध, दही, छाछ और ये मौसम के अनुसार भी बदलता है, तो उसके अनुसार अगर वहां पर शादी ब्याह का वेन्यू है, वहां का कार्यक्रम चलते हैं बीच में, तो हम मिठाइयों का उत्पाद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सर्वे करके इस पर जाना होगा।
2: और उससे पहले तो जो हमारे जो किसान बहन भाई हैं, छोटे किसान खासतौर पे, उनके मन में यही सवाल आएगा, भाई इतने ज्यादा पैसा हम कहाँ से लाएं? तो इसमें कितना पैसा लगेगा, क्या मतलब 1-2 लाख की जो छोटी पूंजी है उससे ये शुरू किया जा सकता है?
3: बिल्कुल, मान लीजिए एक उदाहरण तो हम सोचते हैं कि किसी किसान भाई के पास 2 लाख रुपए हैं, तो उसके लिए मैं एक मोटा मोटा आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम उस पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। अच्छा। तो 2 दुधारू गाय लगभग आपके 1,20,000 में आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद अगर हमें शेड बनाना है, उसकी छोटी मोटी मरम्मत करानी है, उसमें मान खड़ी करनी है, तो उन सबके लिए लगभग खर्चा 20,000 रुपए पड़ेगा, तो लगभग हुए 1,40,000। और उसके बाद दूध के बर्तन, बाल्टी, कैन जो स्टेनलेस स्टील के हमें उपयोग करने चाहिए वो 10,000 के लगभग आ जाएंगे, और चारा काटने एवं अन्य छोटी आवश्यक सामग्री 10,000 मान लीजिए, और पशु चिकित्सा से रिलेटेड जो भी आपकी पूंजी लगेगी वो भी 10,000, और चारा दाना और वर्किंग कैपिटल जो रोजमर्रा के सामानों की जरूरत पड़ती है उसके लिए भी 20,000 का अनुमान लगाए, तो ये एक मोटा मोटा हमारा 2 लाख का स्ट्रक्चर बन सकता है बुनियादी तौर पर।
2: इसमें भी हमारे कई सारे किसान भाई बहन हैं, उनके पास तो पहले से ही गाय भैंस होती ही होती है, तो वो खर्चा तो जिनके पास है वो पहले से ही बच गया, अब खाली वैल्यू एडिशन पे सोचना है। लेकिन फिर भी अगर अगर किसी के पास 2 लाख नहीं है तो क्या सरकार से कुछ सहायता मिलती है?
3: जी हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना है जो छोटे पशुपालकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस योजना में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है 40%, यानी कि दो लाख का आपको 40% कितना हुआ 80,000 तक सब्सिडी आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये सभी किसानों को दी जाएगी, इसमें पात्रता निर्धारित की होगी। मान लीजिए आपके पास जमीन है, चारा भी है, तो उसको देखकर आपको सब्सिडी

0: ज्यादा दिए जा सकती है, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है तो उसके अनुसार उसको कम कर दिया जा सकता
1: है। अब इसमें ये है कि पैसा भी लगा दिए, लेकिन अपनी लागत कैसे निकाले किसान और अपनी आमदनी कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल होगा।
0: मान लीजिए किसान के पास कुछ दूध ऐसा है जिसकी उसे सीधी बिक्री में अपेक्षित कीमत नहीं मिल रही है। गाँव में ऐसा होता है कई बार, कई किसान भाई हमारे परेशान रहते हैं इस बात से। यदि उसके क्षेत्र में दही या पनीर की मांग है तो वो प्रशिक्षण और उचित सस्ता के साथ अगर उस दूध के एक हिस्से को इन उत्पादन में बदल देगा और उससे कुछ आय की ओर बढ़ेगा तो उसको बहुत लाभ होगा।
1: लेकिन इसमें कई सारी दिक्कतें भी आती हैं। कई बार होता है कि सुबह दूध निकाला जाता है, शाम तक बिक्री नहीं हो पाती है तो खराब हो जाता है, या जो प्रोडक्ट भी बनाते हैं वो भी पनीर भी खराब हो जाता है, फिर वो फेंकना पड़ता है, कोई लेता नहीं है, तो क्या करना चाहिए?
0: उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है रेफ्रिजरेशन।

0: कहते हैं इस बात से, यदि उसके क्षेत्र में दही या पनीर की मांग है तो वो प्रशिक्षण और उचित स्वच्छता के साथ अगर उस दूध के एक हिस्से को इन उत्पादन में बदल देगा और उससे कुछ आय की ओर बढ़ेगा तो उसको बहुत लाभ होगा।
1: लेकिन इसमें कई सारी दिक्कतें भी आती हैं। कई बार होता है कि सुबह दूध निकाला जाता है, शाम तक बिक्री नहीं हो पाती है तो खराब हो जाता है, या जो प्रोडक्ट भी बनाते हैं वो भी पनीर भी खराब हो जाता है, फिर वो फेंकना पड़ता है, कोई लेता नहीं है, तो क्या करना चाहिए?
0: उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है रेफ्रिजरेशन, जो ठंडा तापमान में दूध को रखें, क्योंकि दूध ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जो कि अगर आप सामान्यतः टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो लगभग 4 से 5 घंटे में खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें बचाव में 4 या 4 डिग्री से कम तापमान पर ही दूध को रखा जाए और उससे बने उत्पादों को भी रखा जाए। पनीर के लिए भी यही तापमान में कहूंगा, और जो फ्रोजन प्रोडक्ट है जैसे कि आइसक्रीम उसके लिए अलग तापमान होता है, वो माइनस में आता है,
1: उसके लिए तो अलग से व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब मान लीजिए बहुत सारे छोटे किसान हैं, पूंजी कम है ना, तो इसमें सरकार की तरफ से क्या कोई सहायता है?
0: बिल्कुल, सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी सहायता प्रदान की है और यूपी सरकार ने भी अपनी अलग सहायता प्रदान की है। तो मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। अगर किसान नया डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो वो पीएमईजीपी प्रोग्राम में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, इसके थ्रू उसमें सब्सिडी भी उनको मिलेगी।
1: इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
0: इसमें जैसे हमारे किसान भाई है, अगर वो इंटरनेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका एक पोर्टल बना हुआ है। दूसरा एक तरीका है निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी वो अप्लाई कर सकते हैं।
1: और एक बात ये भी है कि बैंक कितना सहायता करता है, लेकिन बैंक से जब तक सहायता ना मिले, पैसा ना मिले, इसके लिए किसान काफी परेशान भी रहते हैं।
0: तो मैं इसके लिए बताना चाहूंगा, एक और योजना है मुद्रा लोन। तो मुद्रा लोन में ऐसा है जैसे सीमांत जो किसान है जो कुछ पूंजी से शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें मुद्रा लोन सबसे अच्छा कारगर उपाय रहेगा, जो कम कागजी कार्रवाई के साथ होगा और जल्दी उनको लोन मिल जाएगा।
1: मान लीजिए कोई किसान चाहे कि पहले छोटा डेयरी लगा लिया, अब कुछ समय बाद लगता है कि थोड़ा और मुनाफा बढ़ाया जाए, अपनी यूनिट को थोड़ी बड़ी किया जाए, तो फिर क्या इसमें कुछ सहायता उपलब्ध है?
0: बिल्कुल, एक प्रोग्राम चला रहे हैं हमारी संस्थाएं, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF की एक स्कीम है, जिसमें छोटे उद्योग को बड़े प्रोसेसिंग प्लांट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और आप 50 से अधिक पशु रखना चाहते हैं तो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे प्रोजेक्ट के अनुसार ही स्कीम का चयन किया जाना चाहिए, ना कि स्कीम देखकर हम प्रोजेक्ट को निर्धारित करें।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो दूध के मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन करके आप अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं, उस पर जानकारी दे रहे हैं राज सुवालका जी, जो STO हैं पशुधन उत्पाद विभाग IVRI बरेली में। तो बहुत सारी चीजें हमने जानी है, किस तरह हम छोटे किसान हैं वो किस तरह अपना डेयरी उद्योग लगा सकते हैं और दूध के जो उत्पाद हैं वैल्यू एडिशन करके अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। अब एक जो बड़ा सिंपल सा, मुझे लगता है सभी किसानों के मन में सवाल रहता है कि किसान के लिए कौन सी गाय या भैंस बेहतर रहती है?
0: उत्तर प्रदेश के परिवेश को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैंस में सबसे उत्तम नस्ल की हमारे पास मुर्रा भैंस है। तो मुर्रा भैंस को आप उपयोग में ले सकते हैं या फिर अगर गाय की तरफ जाए, क्योंकि क्या होता है अगर हम क्रॉस ब्रीड जो बाहर के वेराइटीज है उनको लेके आते तो हमारे परिवेश में वो सही तरीके से दूध उत्पादन नहीं कर पाते क्योंकि उनका वातावरण बाहर के परिवेश के अनुसार है और हमारे वातावरण में गर्मी ज्यादा है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा साहिवाल, गिर, हरियाणा प्रकार की स्पीशीज जो नस्ल है, इन नस्लों का हम उपयोग कर सकते।
1: बिल्कुल, इन नस्लों की कैटल्स का यानी गाय और भैंस का उपयोग करके अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर दूध के उद्योग में ध्यान रखेंगे तो अपना व्यवसाय अच्छा निकलेगा। और इसमें एक ये भी बात है कि इस समय छोटे किसान के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी तो होनी ही होनी चाहिए।
0: जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो गौ संवर्धन योजना जिसमें हमें 40% तक की सब्सिडी मिल रही थी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, और दूसरा है अगर कोई किसान है वो अच्छी दुग्ध उत्पादक स्वदेशी गाय रखने वाला किसान बनना चाहता है तो मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना है, जहां पर प्रति गाय पर उसे 10 से 15 हजार तक प्रोत्साहन प्रावधान मिलेगा। तीसरी योजना मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मूल्य संवर्धन से जुड़ी किसान बढ़ना चाहता है तो PMFME योजना है, उसकी पात्रता की ओर वो जा सकता है।
1: जी जी।
0: और अगर उसको रोजमर्रा की कैपिटल पे, मतलब कि रोजमर्रा की व्यय पे ध्यान देना है, जैसे कई बार होता है चारा कम पड़ गया तो उसको चाहिए, या फिर कैन मुझे ज्यादा बढ़ाने हैं वो चाहिए, तो उसके लिए वो किसान क्रेडिट सोसाइटी में जाकर अपना लोन ले सकता है।
1: अच्छा।
0: तो उसके थ्रू भी किसान क्रेडिट कार्ड जो उपलब्ध कराया जाता है सरकार के

0: द्वारा उसका लाभ उठा सकता है।
1: तो इसका मतलब बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चल रही हैं और बैंक से लोन भी मिल रहा है, मुद्रा लोन, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। और मतलब रास्ते कई सारे हैं, बस आपको शुरुआत करनी है। तो क्या शुरुआत करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है इसमें?
0: जी बिल्कुल जी। अगर किसान भाई 500 लीटर से कम का उत्पाद करना चाहते हैं तो लाइसेंस की जगह रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी जो एफएसआई देगा। देखिए दो चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, वो दोनों अलग हैं। रजिस्ट्रेशन उन किसान भाइयों को चाहिए जो 500 लीटर से कम का उत्पाद कर रहे हैं। अगर 500 लीटर से ऊपर जाते हैं तो उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता होगी। और वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एफएसआई का फॉस्कोस पोर्टल है, फूड सेफ्टी कंप्लायंस पोर्टल, उस पे जाकर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसकी मात्र फीस 100 रूपए है। उसमें आपको दस्तावेज भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो तीन चीजें ही चाहिए जो कि सभी किसान भाइयों के पास आसानी से उपलब्ध है।
1: जी, तो ये नोट भी कर लीजिएगा आप सभी श्रोता। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ जानकारी आपको हमारे इस कार्यक्रम से मिल रही है। इसमें अब महिलाओं की भी बात, तो क्या महिलाओं के लिए कुछ अन्य लाभ है या उन प्रायोरिटी देने का भी कोई प्रावधान है?
0: महिलाओं के लिए जैसे नाबार्ड जैसी संस्था ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रयोजन बनाया है। वो प्रोजेक्ट चलाती है कि एक किसान समूह बनाती है जो मोस्टली निर्भर करता है महिलाओं, किसानों से जुड़ा हुआ है। जो गौपालक हमारी महिलाएं हैं वो इस संस्था से जुड़ सकती है और अपना एक परिवेश बना सकती है जहां पर वो दूध उत्पादन के साथ साथ प्रोडक्ट के निर्माण में भी नाबार्ड उन्हें सहायता देगा, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
1: जी जी जी जी, तो सहायता के बहुत सारे बिंदु हैं। और प्रोग्राम के आखिर में 5 ऐसे टिप्स दे दीजिए सर तमाम पशुपालकों को जिनके जरिए वो अपना ये वैल्यू एडिशन कर सकें।
0: देखिए अगर मैं 5 टिप्स देना चाहूं तो सबसे पहले आप बाजार खोजिए, दूसरा आपको पशु का सही चयन करना है जैसे कि हमने डिस्कस किया है, और तीसरा आपके पास चारे की व्यवस्था होनी चाहिए और आपको अपने पशुओं का स्वास्थ्य भी ध्यान रखना है, और चौथा हमें ये ध्यान रखना है कि हिसाब किताब, रोज का मेरा आय, मेरी व्यय कितना है उसका हिसाब बिल्कुल रखना है। और सबसे जरूरी, जो भी आपके कारीगर हैं, जो आपके काम करने वाले हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, किसान भाई इसको एक साइड बिजनेस के तौर पे ना रखें, इसको मेन बिजनेस बनाने की रखें। कई बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई दूसरों पे निर्भर ज्यादा कर जाते हैं, तो उसकी अपेक्षा वो ऐसे लोगों को, हैंडलर्स को रखें जो इस बारे में ट्रेनिंग प्राप्त हो पहले से, और या फिर ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रेनिंग कराएं।
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से तमाम दुग्ध उत्पादक, और उत्पादक ही नहीं विक्रेता भी जरूर लाभान्वित होंगे। तमाम किसान भाई बहन जो सोच रहे हैं दुग्ध के व्यवसाय को अपनाने की, शुरू करने की, उनको भी लाभ मिलेगा और अपना वैल्यू एडिशन करके अपना मुनाफा भी बढ़ाएंगे। तो राज सुवालका जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: ग्राम जगत कार्यक्रम के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक थे भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI, इज्जत नगर, बरेली।

अभी आप सुन रहे थे IVRI द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि पाठशाला। आज का विषय था दुग्ध मूल्य संवर्धन के माध्यम से आय के अवसर। विशेषज्ञ थे राज सुवाल का और आपसे बातचीत कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचना सुनते हैं। एक महिला पुष्पा पत्नी जगवीर निवासी कलाकंद थाना हजरतपुर जिला बदायूं। इनकी उम्र करीब 40 वर्ष, लंबाई 3 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ, औसत कद काठी, चेहरा लंबा है। ये 1 सितंबर 2026 से लापता हैं। अगर इनके विषय में आपके पास कुछ सूचना है तो थाना प्रभारी हजरतपुर बदायूं को सूचित करें। सूचना एक बार और सुन लें। एक महिला पुष्पा पत्नी जगवीर निवासी कलाकंद थाना हजरतपुर जिला बदायूं। इनकी उम्र करीब 40 वर्ष, लंबाई 3 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ, औसत कद काठी।

0: चेहरा लंबा है। ये 1 सितंबर 2026 से लापता हैं। अगर इनके विषय में कुछ सूचना है तो थाना प्रभारी हजरतपुर बदायूं को सूचित करें। एक और सूचना सुनिए। एक महिला नीरज पत्नी राजवीर निवासी छेदा नगला थाना उसहद जिला बदायूं। इनकी उम्र 27 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ, आंख नाक कान औसत, काले बाल, चेहरा गोल है और साथ में एक अरहा शरीर है। ये 7 सितंबर 2026 से लापता हैं। अगर इनके विषय में कोई सूचना है तो थाना प्रभारी हजरतपुर बदायूं को सूचित करें। सूचना एक बार और सुन लें। एक महिला नीरज पत्नी राजवीर निवासी छेदा नगला थाना उसहद जिला बदायूं। इनकी उम्र 27 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंगे हुआ, आंख नाक कान औसत है, इनके काले बाल और चेहरा गोल, एक अरहा शरीर है। ये 7 सितंबर 2026 से लापता है। अगर इनके विषय में कोई सूचना है तो थाना प्रभारी हजरतपुर बदायूं को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प सभा को किया संबोधित, कहा समाधान पर केंद्रित है वर्तमान सरकार की नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेवा ज्योति यात्रा को किया रवाना। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण, कहा जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय युवा ऊर्जा से मिलेगी दोनों देशों के विकास को गति। और राज्य के कई जनपदों में बारिश ने दी गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। इस मौके पर आज उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल किया गया अनुभव उनकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये

0: भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब भारत के लिए बड़े लक्ष्य तय करने का समय है। उन्होंने कहा कि समाधान पर केंद्रित दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा।
0: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप थ्री में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प भी दिलाया। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही सेवा ज्योति यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के हर नागरिक के मन में विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में नए भारत के निर्माण में सफलता प्राप्त की है।
2: प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 12 वर्ष में उन्होंने भारत को दुनिया के सामने एक समर्थ और सशक्त देश के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के हर नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में इस नए भारत का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की, और इसलिए आज हर भारतवासी के लिए, हर उत्तर प्रदेशवासी के लिए गौरव का क्षण है।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में गुजरात के वडनगर से काशी तक निकाली गई बाइक सेवा यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, नेतृत्व, नीतियों और शासन मॉडल पर आधारित पुस्तकों का एक मंच पर लाने वाले नमो बुक फेस्ट जन वी का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में आयोजित सेवा ज्योति कार्यक्रम यात्रा में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में अभियान के अंतर्गत सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
3: इतना बड़ा आर्थिक संकट पैदा होने के बावजूद भी हमने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रुकने नहीं दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था जहां 2%, 1.5% और 3% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं पर विश्व में इतना बड़ा संकट पैदा होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था आज भी 7.4% की दर से बढ़ रही है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में सेवा ज्योति कलश यात्रा में करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर कार्यकर्ताओं और लोगों का उत्साह बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आगरा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रगति प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी

0: मना है, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली।
1: यूपी एसटीसी के सीईओ मनोज सिंह ने बताया कि प्रगति की बैठकों के कारण जवाबदेही तय होती है।
2: पीएम प्रगति जो मीटिंग होती है उसमें प्रोजेक्ट्स के नाम होते हैं और एक ब्रीफ होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से चल रहा है और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ जबकि इसे 4 साल में पूरा होना था। तो ये जब चीजें सभी डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट में आती हैं तो लोगों को पता होता है कि उनका रोल क्या है। मीटिंग होने के पहले 80-90% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं।
1: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अके आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इसे 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से श्री आबे को विनम्र श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की मित्रता का जिक्र करते हुए कहा कि 2027 में भारत जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे और ये गलियारा उस अमृत पर्व की पहली भेंट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की युवा ऊर्जा दोनों देशों के विकास को गति देगी।
4: आज लगभग 1400 जापानी कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं। अब भारत जापान की साझेदारी भविष्य के क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंच चुकी। जापान के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास टैलेंट, जापान के पास अनुभव है और भारत के पास युवा ऊर्जा।
3: कार्यक्रम में जापान की पूर्व प्रथम महिला अके आबे ने कहा कि काशी में आबे मेमोरियल का निर्माण इसलिए अहम है क्योंकि शिंजो आबे के मन में वाराणसी आने की प्रबल इच्छा थी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने 16 सदस्यीय रणजी टीम का ऐलान कर दिया है। आर्यन जोयल की कप्तानी में टीम में भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ लखनऊ के जीशान अंसारी, करण शर्मा, प्रशांत वीर, यश दयाल और कार्तिक त्यागी जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जगह दी गई है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में आज तेज हवा और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कुछ जगहों पर तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प सभा को किया संबोधित, कहा समाधान पर केंद्रित है वर्तमान सरकार की नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सेवा ज्योति यात्रा को किया रवाना। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे की पत्नी अके आबे के साथ आबे मेमोरियल कॉरिडोर का किया अनावरण, कहा जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय युवा ऊर्जा से मिलेगी दोनों देशों के विकास को गति। और राज्य के कई जनपदों में बारिश ने दी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय है हाइट्स हार्निया, पेट की गंभीर बीमारी, कारण और आधुनिक इलाज। विशेषज्ञ हैं गंगाशील और गंगाचरण अस्पताल के वरिष्ठ गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर अतुल कुमार राठौर।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी, गंगाशील हॉस्पिटल, दीनदयालपुरम, बरेली।
1: महिला रोगियों के संपूर्ण आधुनिकतम इलाज का उच्चीकृत किफायती अस्पताल
0: गंगाशील हॉस्पिटल, गर्भाशय का बिना चीरे का ऑपरेशन डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी द्वारा
1: आधुनिक विधि से बहुत कम खर्च में।
0: गंगाशील हॉस्पिटल, गर्भावस्था में दौरे पड़ना, पीलिया और गर्भावस्था में खून कटना, सांस फूलना, दमा और दिल की मरीज, गर्भवती स्त्रियों के इलाज की विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी महेश्वरी।
1: गंगाशील हॉस्पिटल, दीनदयालपुरम, बरेली।
0: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा फोन नंबर 9927544444।
2: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मुकेश कुमार पांडे, और स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद है गंगाशील हॉस्पिटल बरेली के गेस्ट सर्जन डॉक्टर अतुल कुमार राठौर जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार साहब।
2: डॉक्टर साहब, आज का हमने विषय दिया है अपने श्रोताओं को, हाइटस हर्निया, पेट की गंभीर बीमारी होती है ये, ऐसा हमारा भी मानना है और शायद आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे। इसके क्या कारण है वो जानेंगे आपसे, और आज के दौर में क्या इलाज हो रहा है ये बात भी हम जानेंगे। तो इससे पहले हमारे किसी श्रोता की कोई कॉल आए, वो अपना प्रश्न आपके समक्ष रखे, हमें ये बताइएगा कि हर्निया क्या होता है। सबसे पहले तो हर्निया समझ लेते हैं, फिर हाइटस हर्निया की बात करेंगे।
3: हर्निया का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जब वो अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे आ जाते हैं उसे हर्निया कहा जाता है।
2: अच्छा,
3: एक ब्रॉड बड़े उसमें समझे तो।
2: अच्छा,
3: हाइटस हर्निया क्या है साहब, कि जैसे हम मुंह में खाना खाया
2: जी,
3: खाने के पाइप के माध्यम से वो पेट में गया,
2: हाथों में जाता,
3: हाथों में गया
2: जी।
3: हमारी छाती और पेट के बीच में एक पार्टीशन होता है, एक विभाजन होता है
2: जी,
3: कि छाती के अंग जो है वो छाती में रहें, पेट वाले अंग पेट में रहें।
2: अच्छा,
3: क्योंकि दोनों पे जगहों पे उनका अलग अलग काम है
2: जी। जी,
3: ये जो पर्दा है
2: जी जी,
3: इसकी वीकनेस अगर हो जाए तो पेट का हिस्सा जो नीचे का है वो उठ के ऊपर छाती की तरफ आ जाता है
2: जी, डायफ्राम के,
3: डायफ्राम के ऊपर स्टमक का आ जाना
2: जी जी,
3: है ना। तो जो वीकनेस है, जिस जो पाइप जिस उसमें जिस छेद से आ रहा है नीचे, वो वीक हो जाए तो स्टमक को भी वो ऊपर खींच लेता है,
2: मतलब आते हैं हमारी जो है अगर
3: वो ऊपर आ जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं।
2: अच्छा,
3: तो इस बीमारी को हाइटस हर्निया कहा जाता है
2: जी। जहाँ तक डॉक्टर साहब हाथों का सवाल है, तो ये कहा जाता है लगभग 8 मीटर लंबाई होती है मनुष्य की हाथ की
3: जी जी,
2: और उसमें छोटी हाथ भी होती है, बड़ी हाथ भी होती है
3: जी।
2: तो क्या दोनों हाथें ऊपर आ सकती हैं या फिर छोटी हाथ ही आती है, ऐसा भी कुछ होता
3: नहीं
2: है?
3: छोटी हाथ से ऊपर स्टमक एक होता है जिसमें अच्छा, हमारा खाना मेनली जाकर के स्टोर होता है।
2: अच्छा अच्छा,
3: वो जो है जो पहला ऑर्गन है जो नीचे जिसमें एसिड बनता है मेनली, वो ऑर्गन ऊपर खींच सकता है
2: जी। हमारे एक श्रोता लाइन पर आ गए, इनकी बात सुन लेते हैं, ये क्या जानना चाहते हैं। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
4: जी, मैं निधि बात कर रही हूँ।
2: जी निधि जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
4: जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो मेरे फादर हैं, जब वो खाना खाते हैं तो उनको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कि वो खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए और उनको एक एसिड सा बनने लगता है
2: जी।
4: कभी कभी वो नाक के जरिए बाहर भी आ जाता है, तो उन्हें क्या समस्या है?
2: ये अगली आवाज डॉक्टर अतुल कुमार राठौड़ की, जो आज एक्सपर्ट हैं और विशेष तौर से इसी विषय पर हम लोग बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब।
3: हाँ निधि जी।
4: जी,
3: कितनी एज होगी फादर के आपकी?
4: मेरे फादर की 65।
3: तो आपने ऐसा बताया कि खाना डाइजेशन नहीं होता और खाना खाने के बाद वो ऊपर नाक की तरफ आता है, ऐसा बताया आपने?
4: जी।
3: हाँ, तो ये एक बहुत ही कॉमन फीचर है इस बीमारी का, हाइटस हर्निया से बोलते हैं। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि एक बार पिताजी का एंडोस्कोपी से इवैल्यूएशन करा लीजिए, उसके बाद चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी।
4: अच्छा, उनकी दूसरी चीज डॉक्टर साहब ये है कि जो एक छाले छाले से हो जाते हैं ना, थोड़ी सी एक कांटे वगैरह सी, वो उनके पूरे पेट पर हो गई है, तो क्या वो इससे कुछ रिलेटेड है?
3: नहीं, मतलब स्किन के बाहर छाले हो गए हैं या अंदर हुए हैं?
4: अंदर अंदर अंदर।
3: तो इसका मतलब एंडोस्कोपी कराई है आपने?
4: एंडोस्कोपी तो सर नहीं कराई है।
3: तो फिर कैसे पता लगा आपको कि छाले हो गए हैं अंदर?
4: नहीं नहीं सर, वो थोड़े थोड़े अंदर को ही हैं, लेकिन वो छूने पर महसूस होते हैं। तो हाँ, एक बार एंडोस्कोपी हुई थी तो उसमें एक, हाँ सही है बोल रहे हैं सर आप, तो उसमें एक बार उनको अपडेट हो गया था, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी गांठ उसका, और उसके बाद में वो ठीक है, लेकिन ये जो उनकी अंदर की गांठें हैं वो बढ़ती चली जा रही है पेट में, तो इससे रिलेटेड तो नहीं है कोई?
3: मैडम जी, गांठें कई टाइप की होती है ना, बहुत ही ज्यादा उनका वो है, कुछ नॉर्मल गांठें भी होती हैं, कुछ खतरनाक गांठें भी होती हैं, तो ऐसे ब्रॉडली गांठें बोल के तो कुछ बोल पाना मेरे लिए अभी संभव नहीं है, तो ये रिपोर्ट देखने के बाद ही फिर मैं आपको कुछ बोल पाऊँ। मैडम जी,
4: एक जो ये एसिड आ जा रहा है, नाक से निकल जा रहा है, कभी मुंह से आ जा रहा है,
3: उसके लिए ये है, उसके

0: नहीं बच पा रहा है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते
1: उसके
0: हैं?
1: लिए यह है कि एक इवेल्युएशन करा लीजिए, एक एंडोस्कोपी से, अपर जीआई एंडोस्कोपी होगी, उसकी रिपोर्ट के
0: जी
1: हिसाब से आगे का मैनेजमेंट रहेगा। जी
0: ठीक है ठीक है,
2: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए।
0: ओके ओके, थैंक यू।
2: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता ने जो बात कही उसमें दो चीज़ें इनकी मेरे समझ में आ रही थी। एक तो ये था कि जो आपने हाइटस हार्निया की बात की उसके लक्षण भी थे, और वो शायद
1: गाठों
2: गांठ
1: का
2: वाली
1: भी
2: बात
1: था,
2: जो कह
1: गाठों
2: रहे
1: का
2: हैं
1: भी
2: वो
1: था।
2: शायद दूसरी कोई समस्या से संबंधित भी हो
1: गांठें कई
2: सकता
1: टाइप की
2: है।
1: होती हैं, कुछ नॉर्मल भी होती
2: जी
1: हैं, कुछ
2: जी
1: कैंसर की भी गांठें होती हैं, तो ऐसे
2: बिल्कुल
1: कुछ कह पाना सिर्फ गांठ सुन के तो संभव नहीं है।
2: जी,
1: जी
2: बेहतर यही है कि ऐसे मरीजों
1: रिपोर्ट
2: में
1: रिपोर्ट देख लिया जाए एक
2: जी
1: बार,
2: देर ना की जाए, तुरंत जो है वो अच्छे डॉक्टर को
1: एक बार कंसल्ट कर लिया जाए।
2: कंसल्ट कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, हाइटस हार्निया भले ही शब्द पुराना हो, बहुत से हमारे श्रोता जानते भी होंगे हाइटस हार्निया के बारे में, लेकिन आज चूंकि हम यहाँ पर अपने श्रोताओं के समक्ष वो जानकारी उन तक पहुँचाने जा रहे हैं जो शायद कम लोगों को होगी, हाइटस हार्निया के लक्षण जरूर हम जान लेना चाहेंगे आपसे।
1: लक्षण से पहले मैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर बता दूं
2: जी
1: आपको।
2: बिल्कुल
1: फूड का पाइप है,
2: जी
1: नीचे ऐसे स्टमक है,
2: जी
1: स्टमक में सारा डाइजेशन जो है मेन स्टार्ट होता है,
2: जी जी
1: उसमें सारी एसिड भी रहती है।
2: बिल्कुल
1: ठीक, जो हमारा खाने का पाइप है जो मुंह से लेके छाती के थ्रू जाके पेट में उसको जोड़ता है,
2: जी
1: उसका काम है कि उस खाना जो हमने खाया उसको नीचे ले जाए, और सारा डाइजेशन नीचे स्टार्ट होता है।
2: जी
1: तो नॉर्मली भगवान ने, ऊपर वाले ने ऐसा बना के भेजा है कि जो नीचे डाइजेशन स्टार्ट हो तो वो खाना ऊपर ना आए, इसके लिए एक वॉल्व जैसी मैकेनिज्म होती है।
2: जी
1: अगर वो वॉल्व किसी भी कारणवश वीक हो जाए तो जब वो खाना उसका डाइजेशन स्टार्ट करेगा तो वो एसिड और खाना ऊपर की तरफ आएगा,
2: जी
1: इसे कहते हैं हाइटस हर्निया।
2: अच्छा
1: तो जो एसिड नॉर्मली पेट के अंदर होनी चाहिए थी
2: जी
1: वो अब ऊपर उठ के फूड पाइप में आने लगेगी।
2: अच्छा
1: नॉर्मल फूड पाइप उस एसिड के लिए नहीं बनाया है, उसका काम है सिर्फ खाने को ऊपर से नीचे लाना, वो एसिड के लिए नहीं बनाया कि एसिड को टॉलरेट करे।
2: जी
1: तो जब नीचे का एसिड उसको बार बार एसिड उसकी लाइनिंग को इरिटेट करता है तो
2: जी
1: पेशेंट को कई टाइप के सिम्टम्स आते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को ये लगता है कि मेरी छाती में जलन हो
2: जलन हो
1: रखी
2: रही
1: है।
2: है जी, बड़ा
1: खाना
2: कॉमन
1: बहुत
2: शब्द है
1: कॉमन है
2: जी
1: कि जलन है, कुछ भी खा लिया जलन हो पड़ी है,
2: जी
1: चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया खाना खाने के
2: जी
1: बाद, या कई बार होता है कि खाना ऊपर ही उल्टी आ गई, लगातार उल्टी बनी हुई है,
2: जी जी
1: तो वो इसीलिए होता है कि वो एसिड जो है ऊपर आकर के इरिटेट कर रहा है। तो
2: अच्छा
1: ये हैं कुछ इसके बहुत कॉमन फीचर्स हैं,
2: जी
1: बाकी अनकॉमन तो फिर बहुत सारे।
2: जी वजह अगर हम जानना चाहें डॉक्टर साहब, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, वजह क्या होती
1: वजह
2: है?
1: है साहब इसके, एक तो एज के साथ है कि लाइक जैसे बॉडी की एज बढ़ती है तो इसे स्किन लटक जाती है, इस
2: जी
1: टाइप से अंदर की मसल्स भी वीक हो जाती हैं,
2: बिल्कुल
1: वीक हो गई तो वहाँ से गैप बन गया, गैप बन गया तो वो स्टमक ऊपर आ गया, ये एक वजह है। दूसरा है कि पेट का प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहे, जैसे किसी पेशेंट्स को होता है कि लंबे समय से खांसी चली आ रही है,
2: जी
1: या किसी पेशेंट को होता है कि बहुत मतलब सालों दर साल कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, तो
2: जी
1: वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, तो पेट का प्रेशर बढ़ा, ऊपर डायफ्राम है, वो
2: जी
1: वीक होगा धीरे धीरे जा करके।
2: निश्चित
1: तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं।
2: जी। अच्छा अच्छा इसमें अगर हम खान पान को जोड़ें और जो हमारी हैबिटेट्स हैं, जो हमारा दिनचर्या है हमारी, क्या वो भी जिम्मेदार है सबके
1: बिल्कुल
2: लिए?
1: जिम्मेदार है, जैसे जैसे मोटापा बढ़ेगा इस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी।
2: अच्छा
1: तो एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड खाना,
2: जी
1: बहुत ऑयली या बहुत घी या प्रोसेस्ड फूड, ये सब अगर खाएंगे तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है।
2: जी आपने डॉक्टर साहब जांच के रूप में ये कहा कि एंडोस्कोपी करानी जरूरी है, तो एंडोस्कोपी किस तरह की जांच है, और क्या ऐसे केसेस में जो हाइटस हर्निया की बात हम कर रहे हैं मुंह के द्वारा होती है ये जांच या फिर लेटिन के रास्ते से होती है?
1: अब एंडोस्कोपी मतलब हम आंत के अंदर का देख रहे हैं, अपर और लोअर दो टाइप की
2: दोनों
1: होती है,
2: जी
1: क्योंकि ये ऊपर की हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो इसमें हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं।
2: अच्छा
1: इसमें क्या है कि साहब एक लंबा सा कैम एक वायर होता है, एक पाइप होता है छोटा पतला सा, उसके आगे कैमरा लगा होता है
2: जी
1: और एक लाइट सोर्स होती है, तो उसको हम पेट मुंह के थ्रू डालते हैं और वो जैसे जैसे आगे जाता जाता है पूरी चीज़ें दिखाता जाता है,
2: अच्छा
1: उससे फिर आइडिया लग जाता है कि इसको है
2: मुंह के थ्रू डालते हैं डॉक्टर साहब या नाक के थ्रू?
1: मुंह के थ्रू।
2: मुंह के थ्रू डालते हैं। तो जिस समय आप ये जांच करते हैं उस समय क्या मरीज को बेहोशी वगैरह देने की जरूरत होती है, कैसे?
1: अगर पेशेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं,
2: जी
1: उनमें हम उनको हल्का सा नींद में रख लेते हैं जिससे उनको ज्यादा पता ना लगे,
2: जी
1: और कुछ एक होते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ पर ये मुश्किल से 30 सेकंड का प्रोसीजर है,
2: अच्छा
1: 30 सेकंड से 1 मिनट का काम है, ये मुंह में पाइप डालना है, देखना है और फिर उसको बाहर निकाल देना है।
2: क्या देखते हैं डॉक्टर साहब दूरबीन अंदर डाल के? आप
1: दूरबीन अंदर डालने के बाद जो फूड पाइप की जो लाइनिंग है
2: जी
1: उसको देखना पड़ता है सबसे पहले।
2: अच्छा,
1: और उसके बाद फिर पेट के अंदर जो स्टमक जहाँ एसिड बनती है उसको

0: होता है, और
1: जी
0: फिर कुछ मैन्यूवर से हम ऊपर देखते हैं कि डिफेक्ट कितना बड़ा है, गैप कितना हो गया है, उससे आइडिया लगता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये एज वार प्रॉब्लम हो सकती है, बढ़ती उम्र इसकी एक वजह है। क्या डॉक्टर साहब कम उम्र में या युवावस्था में भी ऐसी समस्या होती है? क्योंकि जो जलन वाली बात है वो युवाओं को भी होती है, गले में जलन, और कई बार तो बहुत छोटी उम्र में बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि बहुत जलन हो रही है पेट में।
0: बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक बाद की एज में ही जलन की ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये कभी भी हो सकती है।
1: जी
0: बट किताबों में जो लिखा है कि ये कॉमन फैक्टर्स हैं वो मैंने आपको बताया है।
1: अच्छा,
0: ऐसा नहीं है कि यंग एज में नहीं हो सकती, किसी भी एज में ही हो सकती है।
1: अगर किसी यंग एज में किसी को हो रही है, किसी युवा को ये समस्या हो रही है, तो क्या उसको भी एंडोस्कोपी करानी होगी?
0: बिल्कुल, अगर लगातार अगर आपको एसिड की प्रॉब्लम है, किसी को छाती में प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाने के बाद खाना वहीं रुका हुआ रखा हुआ है, भारीपन स्टार्ट हो गया या ऊपर की तरफ आ रहा है, तो और जो कि सिंपल गैस की जो गोली खाता है पेशेंट, 1-2 दिन अगर उससे नहीं ठीक हो रहा है तो एक एंडोस्कोपी करा लेना चाहिए।
1: क्या इसके पीछे बजे दवाइयाँ भी होती हैं? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि दवाई अगर खाली पेट खाई जाए, या विशेष तौर से दर्द की दवाओं की बात हम करें, तो उनसे जलन और एसिडिटी होती है, हो सकती है।
0: जलन और एसिडिटी हो सकती है,
1: जी
0: बट दर्द की गोली ये सब खाने से हाइटस हर्निया नहीं होता,
1: अच्छा
0: वो स्टमक जो लाइनिंग है उसको खराब करती है
1: अच्छा
0: दर्द की ज्यादा गोली खाने से,
1: जी
0: तो वहां पे फिर एसिड की वजह से वो प्रॉब्लम होता है,
1: जी
0: अदरवाइज हाइटस हर्निया दर्द की गोली से नहीं होता,
1: अच्छा उसके पीछे की वजह कुछ और
0: वो
1: होती
0: अलग
1: है,
0: वजह है।
1: और उसके लिए फिर एक अच्छे इलाज की जरूरत
0: हाँ,
1: होती
0: उसके
1: है।
0: लिए ये है कि सारी जितनी भी दवाइयाँ, कुछ लोगों को हैबिट पड़ जाती है दर्द की गोली खाने की,
1: जी
0: लगातार खाते रहते हैं, तो उस हैबिट को हटाना होता है और फिर एसिड न्यूट्रलाइजिंग ड्रग्स को दिया जाता है।
1: अब हम इलाज की बात आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
0: इलाज को साहब 2-3 उसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है लाइफस्टाइल चेंजेस, आप अपने जीवन जो जी रहे हैं उसके तरीकों को थोड़ा बदल
1: यानी
0: लें,
1: जीवन शैली में
0: जीवन शैली में परिवर्तन
1: बदलाव
0: कर
1: लाना
0: लें
1: है।
0: तो
1: जी
0: बहुत अच्छा रहता है। जैसे इसमें क्या क्या करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अपना वजन को कम करें, कैसे भी करें,
1: अच्छा
0: एक्सरसाइज करें, खाना कम खाएं, और जिन पेशेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो जैसे हम नॉर्मली 3 बार खाना खाते हैं, वो उसी खाने को 3 बार ना खा के 6 बार में खा लें,
1: अच्छा
0: थोड़ा थोड़ा करके खाएं, पेट भर के पूरा ना खा लें,
1: अच्छा
0: थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें, और सोने से और खाने के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप
1: दो
0: रखें,
1: ढाई घंटे का
0: दो
1: गैप
0: ढाई घंटे
1: रखें।
0: का जैसे 7 बजे खाना खा लें तो 9 बजे तक सो जाएं, मतलब
1: अच्छा
0: 2 घंटे का गैप हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
1: अच्छा
0: दूसरा, जब आप सो रहे हैं तो सिरहाने साइड के जो चारपाई या बेड के जो पाव हैं उनके नीचे एक एक ईंट रख लें, तो आपका सिर जो है थोड़ा सा उठ जाएगा, पैर थोड़े से नीचे हो जाएंगे, तो एसिड ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे जाता रहेगा, ये है। दूसरा, स्मोकिंग वगैरह इन सबसे बिल्कुल बचें, अल्कोहल से
1: अच्छा
0: बचें, ये कुछ एक तरीके हैं इसे कर सकते हैं।
1: जी।
0: और इसके बाद अगर लाइक इसके बाद भी परसिस्ट करता है तो किसी की सलाह लें, एंडोस्कोपी कराएं, दवाई से खा के देखें, अगर दवाई से भी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ एक में देखा गया कि दवाई से आराम मिल जाता है बट बहुतों में आराम नहीं मिलता,
1: जी
0: तो अगर लगातार दवाई खा रहे हैं 10-15 दिन या अभी 1 महीना उसके बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो मेरी सलाह है कि जिंदगी भर दवाई ना खा के बेटर है एक छोटा सा ऑपरेशन होता है
1: जी
0: उसको करा लें, ये प्रॉब्लम फिर लाइफ लॉन्ग के लिए खत्म हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, हाइटस हर्निया आपने बताया कि डायफ्राम के नीचे जो जगह होती है, छेद होती है, जो कि आंतों को ऊपर पाइप को जोड़ती है, खाने के पाइप को और आंत को या स्टमक को जोड़ती है, तो वो एरिया बड़ा हो जाता है।
0: हाँ, वो एरिया, वो पाइप, जिस ऐसे सोचिए कि एक दीवार के थ्रू एक पाइप को गुजारना है,
1: जी
0: उस पाइप में जहां से गुजर रहा है दीवार में, अगर वो दीवार में सुराख बड़ा हो जाएगा तो
1: जी
0: और भी कुछ चीज जा सकती है,
1: बिल्कुल
0: तो वही वही हाइटस हर्निया है।
1: जी। लेकिन क्या ये आप कह रहे हैं कि इलाज दवाइयों से भी करते हैं, दवाइयों से भी ये ठीक हो जाता है,
0: दवाइयों से आपकी जो एसिड वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो
1: वो
0: जाएगी,
1: खत्म
0: है
1: हो जाएगी?
0: ना,
1: जी
0: और लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, जैसे छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएंगे तो इतना वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा कि जो ऊपर जाए,
1: जी
0: तो इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: बट कई बार देखा गया है कि जिनका ग्रेड 3 या ग्रेड 4 हर्निया है वो सबसे रिस्पॉन्ड नहीं करता, उनमें फिर अल्टीमेटली ऑपरेशन चाहिए होता है।
1: ऑपरेशन के विषय में बताइएगा, क्योंकि आज का दौर आधुनिक दौर है और तकनीकी का ज़माना है, तो अब तो ऑपरेशन के तरीके की बिल्कुल बदल गए, रोबोट भी ऑपरेशन करता है डॉक्टर
0: रोबोटिक भी
1: साहब।
0: होता है,
1: जी
0: लैप्रोस्कोपिक भी है, ओपन
1: जी
0: तो
1: जी
0: आजकल कोई प्रेफर नहीं
1: जी
0: करता,
1: जी तो
0: तो
1: ये हाइटस हर्निया का जो ऑपरेशन आप लोग करते हैं वो किस तरह करते हैं?
0: इसमें से आप पेशेंट को हम लोग लाइक सुबह को बुलाते हैं खाली पेट,
1: जी
0: फिर उसको ओटी में लिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरी बॉडी को बेहोश कर लिया जाता है,
1: अच्छा
0: उसके बाद बॉडी में 5-5 mm के 3 कट और 10-10 mm के 2 कट,
1: अच्छा
0: छोटे छोटे कट्स होते हैं ये पेट में मतलब लगाए जाते हैं, उसके बाद लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक किसी भी विधि से हम इसको करते हैं, 1.5 घंटे का इसमें लगभग टाइम लगता है।
1: अच्छा
0: हाँ, और उसके बाद फिर ये है कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है,
1: अच्छा
0: ये बेटर है कंपैरिजन टू के पेशेंट जिंदगी भर वो गैस की गोली खाए।
1: जी।

0: है ना, उससे अच्छा है कि एक बार ऑपरेट कराएं और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म।
1: क्या दोबारा भी संभावनाएं रहती हैं एक बार ऑपरेशन कराने के बाद? क्या ऐसा है कि दोबारा ये दिक्कत हो
0: नहीं,
1: जाए?
0: दोबारा नहीं होती, बहुत रेयर है, 1000 में किसी एक को हो जाए तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो आप 5 छोटे छोटे छेद करके और पेट के अंदर दूरबीन और औजार डाल के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कितना सुरक्षित है? आपने कहा 1 से 1.5 घंटा तक लग जाता है इस ऑपरेशन में।
0: ये पूर्णतः सेफ है,
1: अच्छा,
0: हाँ, और सही तरीके से किया जाए तो कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है।
1: धारणा ये है डॉक्टर साहब कि नंगी आंख से तो आप देख सकते हैं सब कुछ सामने होता हुआ, अब कैमरे से देखना और नंगी आंख से देखना दोनों में बहुत फर्क होता है। अंदर पेट के कोई औजार डालेंगे, दूरबीन डालेंगे, तो क्या वाकई में वो सही जगह सही स्थान दिखा पाता है? कैसे करते हैं
0: वो
1: आप?
0: नॉर्मल आँख से 10 गुना ज़्यादा बड़ा करके इमेज दिखाता
1: जी
0: है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है और पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं रहती हैं खतरे की, वो काफ़ी कम हो जाती हैं।
1: अच्छा
0: जैसे दूरबीन से हम दूर का देख सकते हैं, नॉर्मल जो दूरबीन बचपन में हम
1: जी
0: देखते थे, नॉर्मल आंखें नहीं देख सकती, लेकिन वो मशीन दिखा देती है, ऐसा ही हमारे साथ है, ये बड़ा करके दिखाती है हमें,
1: जी
0: तो
1: जी
0: काफ़ी सही रहता है।
1: यानी आसमान में दिन में तारे दूरबीन से जिस तरह
0: दूरबीन
1: हम
0: से
1: देख
0: देख
1: लेते हैं,
0: सकते हैं,
1: नंगी आंख
0: बस
1: से नहीं
0: बस
1: देख
0: बस नहीं
1: पाते,
0: देखते वही,
1: तो वो अगर प्रोसेस समझा जाए तो शायद ये स्पष्ट हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऑपरेशन होने के बाद व्यक्ति को हॉस्पिटलिटी की जरूरत निश्चित ही होती होगी? कितने लंबे समय तक रहता है व्यक्ति?
0: हॉस्पिटल के नेक्स्ट डे हम पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से 5 कट्स हैं,
1: जी
0: है ना, तो उसमें कुछ ऐसा दर्द भी पेशेंट को नहीं होता और ऐसा कुछ नहीं रहता कि पेशेंट ना चल सके या कुछ भी रहे, तो हम उसको नेक्स्ट डे घर भेज देते हैं,
1: अगले दिन छुट्टी कर
0: अगले दिन
1: देते हैं।
0: छुट्टी।
1: उसके बाद कितने दिनों तक प्रिकॉशन रखने की जरूरत पड़ती है?
0: उसके बाद प्रिकॉशन ये रहता है कि 2 हफ्ते तक लिक्विड, मतलब तरल चीज़ें खाएं, क्योंकि
1: अच्छा
0: टांके अंदर लगाए होते हैं, उनको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है,
1: जी
0: और इस दौरान प्रिकॉशन ये रखना होता है कि आपको उल्टी ना आए, तो उसकी
1: अच्छा
0: हम दवाइयाँ दे के रखते हैं,
1: अच्छा
0: और 1 महीने के बाद पेशेंट फुल्ली जैसे पहले था, अच्छा वैसा हो जाता है।
1: वाकई में तकनीकी ने बहुत सी चीज़ें आसान कर दी हैं, और एक गंभीर बीमारी है निश्चित ही हेटस हार्निया पेट की, और बीमारी से छुटकारा पाने का जो आप तरीका बता रहे हैं वाकई
0: इसमें
1: में।
0: मैं एक चीज़ सर ऐड करना चाहूँगा,
1: जी जी
0: बहुत से पेशेंट बस गैस की गोली खा खा के, मैं देखता हूँ ना,
1: बिल्कुल
0: 6 साल 5 साल 10 साल उसे गोलियाँ खा खा के ज़िंदगी को बस चला रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: उन सब के लिए सजेशन है कि एक बार ऑपरेट का सलाह देके इस पे सोचें ज़िंदगी भर, क्योंकि गोली खाना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है,
1: जी जी
0: स्पेशली उस बीमारी के लिए जो कि कम्प्लीटली ट्रीटेबल है।
1: अच्छा ज़्यादातर ये देखा गया है जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, खाने वाली तंबाकू विशेष तौर से, और आजकल गुटखा प्रचलन में है सर, लोग गुटखा नाम देते हैं, तंबाकू मिला हुआ पान मसाला खाते हैं जो, तो ऐसे लोगों को एसिडिटी की समस्या ज़्यादा रहती है, तो ऐसे केसेस में भी क्या आपका सजेशन ये ऑपरेशन या यही तकनीक है?
0: उनमें नहीं, तंबाकू से हाइटस हर्निया नहीं होता, बट
1: हाँ
0: एसिडिटी या जो और प्रॉब्लम्स हैं उनका मैनेजमेंट अलग है।
1: अच्छा,
0: जी,
1: डॉक्टर साहब आपने कहा बहुत सुरक्षित भी है, तो आपने ये भी कहा कि दोबारा होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती जी, तो ये और बताइएगा कि महिलाओं में चूंकि एसिडिटी की समस्या ज़्यादा ही रहती है पुरुषों की अपेक्षा, तो महिलाओं में भी इलाज का तरीका यही है या कुछ और है, या
0: सेम
1: उनके लिए कुछ
0: सेम,
1: अलग सजेशन है
0: नहीं,
1: आपका?
0: दोनों के लिए सेम तरीका है।
1: डॉक्टर साहब चूंकि हार्निया के साथ जुड़ा हुआ ये शब्द हाइटस हार्निया, हमारे श्रोताओं को, कुछ श्रोताओं को नया जरूर लग रहा होगा, लेकिन समस्या बड़ी कॉमन है और बहुत पुरानी समस्या है जिस समस्या पर हम बात कर रहे हैं, गैस एसिडिटी सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। इलाज आपने बताया कि एक बार अगर करा लिया तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, आप बार बार एक बात पर डॉक्टर साहब जोर दे रहे हैं कि जो गैस की गोली खा के लोग अपना जीवन चला रहे हैं उनको खाली गैस की गोली पर निर्भर रहने की जरूरत
0: एक
1: नहीं
0: बार
1: है।
0: एंडोस्कोपी करा के जरूर देख
1: जी
0: लेना
1: जी
0: चाहिए उनको।
1: पहले एंडोस्कोपी ही करानी है, पहले ऑपरेशन एकदम से नहीं
0: नहीं,
1: होगा।
0: पहले जांच होती है साहब, उसके बाद फिर ऑपरेशन होगा।
1: जी, अच्छा गैस की गोली जो लोग खाते हैं डॉक्टर साहब, अगर गैस की गोली से किसी को आराम आ रहा है तो वो किस तरह का आराम है?
0: उसमें जो नीचे से हमारे पेट के जो ऊपर फूड पाइप में एसिड जो जा रही थी,
1: जी
0: बस वो एसिड के सिम्टम नहीं आएंगे, बट जो वॉल्यूम जो ऊपर आ रहा था, जो खाना ऊपर आ रहा था, वो आता रहेगा, तो जो भारीपन था वो रहेगा, बट आपको जलन नहीं होगी, ये स्थायी इलाज नहीं है।
1: खट्टी डकार अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं, खट्टी डकारें आती हैं,
0: जी
1: तो क्या खट्टी डकार हम ये मान लें कि हाइटस हर्निया का एक
0: नहीं,
1: लक्षण
0: खट्टी
1: है?
0: डकार नॉर्मली कभी कभी आना या एक दिन में एक दो बार आना कॉमन है,
1: जी
0: बट हाँ, अगर इस चीज से बहुत बार आ रही है या पेशेंट की दिनचर्या प्रभावित हो रही है इससे, तो फिर एक बार इवेल्युएट कराना चाहिए।
1: अगर हाइटस हर्निया का इलाज परमानेंट ना कराया जाए, ऑपरेशन ना कराया जाए, तो किस तरह की आगे समस्याएं आने की संभावना रहती है?
0: संभावना इसमें साहब ये रहती है कि एसिड जो है फूड पाइप में आ रहा है लगातार।

0: फोकस को सालों दर साल इरिटेट करता रहेगा तो वहाँ पे सिकुड़न पैदा हो जाएगी, फिर आपका खाना नीचे नहीं जाएगा, वो पाइप को ही बंद कर देगा, और पाइप को बंद कर देगा तो फिर ऑपरेशन दूसरे तरीके का, फिर बड़ा ऑपरेशन होगा।
1: हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एक श्रोता लाइन पर हैं, डॉक्टर साहब इनकी बात सुन लेते हैं पहले। रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
2: ऋचा बोल रही हूँ, बरेली से।
0: हाँ ऋचा जी
1: जी जी
0: बताएं।
1: ऋचा जी, अगली आवाज डॉक्टर अतुल कुमार राठौर की।
2: डॉक्टर
0: हाँ जी
2: डॉक्टर मैं
0: बोल।
2: ये जानना चाह रही हूँ, मेरे ना पेट में बहुत ऐंठन होती है, एक्चुअली मुझे ना कॉन्स्टिपेशन रहता है, और मैंने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर साहब ने मेरा IBS डायग्नोज किया है,
0: अच्छा
2: तो मैं ये जानना चाह रही थी क्या मेरा रूटीन कुछ ऐसा है कि मतलब पूजा करते करते मुझे 12 बज जाता है, तो मैं तभी खाती हूँ, तो क्या मैं ज्यादा देर भूखी रहती हूँ इसकी वजह से होगी, लेकिन मुझे बहुत मोशन से पहले बहुत दर्द होता है मेरे पेट में, मोशन के बाद भी बहुत दर्द होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मेरे ये काफी टाइम से ये प्रॉब्लम है। अभी मैंने दिखाया है डॉक्टर को, तो उन्होंने दवाई दी है, दवाई खा रही हूँ, उससे मुझे अभी तो थोड़ा रिलीफ है, लेकिन दर्द मेरे हल्की हल्की से ऐठन होती रहती है पेट में, तो क्या मेरा ये खाने वाला सिस्टम गड़बड़ा है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्या?
0: IBS में बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से
2: जी
0: सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्ट्रेस लेना। तो स्ट्रेस ना लें, दिमाग में स्ट्रेस ना चढ़ने दें, और थोड़ा योगा वगैरह करें। दिमाग जितना शांत रहेगा उतनी IBS की प्रॉब्लम कम होती जाती है समय के साथ। बाकी कुछ एक डायट्री मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, खान पान में चेंज करना होता है, और वो
2: जी
0: सब करेंगे तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है IBS।
2: लाइट
0: मेन
2: में डॉक्टर क्या मत, मैं तो बहुत ही लाइट खाती हूँ, खाना भी बहुत लाइट खाती हूँ,
0: मैं
2: ऐसा
0: बोल
2: नहीं
0: रहा हूँ ना,
2: कोई
0: खाने से
2: स्ट्रेस भी नहीं
0: प्रॉब्लम
2: है, खुश
0: है।
2: भी रहती हूँ मैं तो।
0: तो फिर इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा ऐसे तो, मतलब
1: जी
0: भाई।
1: बिल्कुल। अच्छा,
0: हाँ
1: एक बार आप अपने डॉक्टर से
0: एक
1: मिलिएगा
0: बार
1: और उन्हें
0: मिलिएगा उनसे
1: बताइए।
0: IBS के, देखिए कारण क्या होते हैं ना, वो कारण पिकआउट करना बहुत जरूरी है कि किस वजह से हो रहा है। तो वो आप एक बार कर लेंगे तो फिगर आउट हो जाएगा कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर वर्क किया जा सकता है। उतना खतरनाक है,
1: पीएच कम होगा तो
0: उतना
1: खतरनाक
0: खतरनाक।
1: होगा।
0: नॉर्मल जो pH पानी का है वो 7 साढ़े 7 के आसपास है।
1: जी
0: एसिड के अंदर जब pH बनता है तो वो 2 के आसपास होता है।
1: अच्छा।
0: अब सोचिए 2 pH का एसिड ऊपर खाने के पाइप में अगर आएगा तो वो उसको परेशान, इरिटेट ही करेगा, तो इसीलिए सिम्टम्स आते हैं सारे।
1: एक खास तरह की लेयर होती है आंत के अंदर सर, जो सुरक्षित रखती है आंतों को,
0: जी
1: उस लेयर को सुरक्षित रखने के लिए भी हमें लगता है लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, क्या कोई ऐसी दवाइयां भी होती हैं?
0: बिल्कुल साहब, लिक्विड्स आते हैं कई सारे जो कोट कर देती हैं, जो उसकी सतह को पूरी तरीके से एक लेयर बना लेती हैं।
1: जी
0: लेकिन ये सब टेम्परेरी इलाज हैं,
1: जी जी
0: इनसे परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।
1: जी एक और श्रोता लाइन पर है डॉक्टर साहब, इनसे बात
2: हाँ
1: करते हैं। जी रेडियो हेल्पलाइन
2: सर,
1: कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
3: हम रविंद्र कुमार बोल रहे हैं, मीरगंज तहसील से।
1: जी
0: जी
1: रविंद्र
0: बताएं।
1: जी
3: सर, हम ये बता रहे हैं कि हम अभी एक दिन वॉशरूम गए थे,
1: जी हाँ बताइए।
3: और हमारा वही इंडियन वॉशरूम है, उसमें गए थे, थोड़ा सा हमारा वजन बढ़ा हुआ, पेट निकला हुआ है, तो हम जब वॉशरूम करने के बाद शौच कर रहे थे,
1: जी
3: तो राइट साइड में हमारे मतलब बहुत तेज एक दर्द उठा, और एक मतलब ऐसे लगा कि गुल्ला गुल्ला सा, जैसे गुल्ला गुल्ला सा एकदम फूल गया थोड़ा सा, और बहुत तेज दर्द हुआ, और पीड़ा इतनी हुई जैसे बिल्कुल जान निकल जाए, तो क्या ये हार्निया का तो नहीं है डॉक्टर?
0: नहीं, गुल्ला कहाँ पे उठा था आपको?
3: मैं सीधे सीधे तरफ उठा है,
1: दाहिनी ओर बता रहे हैं, राइट
3: पेट
1: साइड
3: में,
1: में,
0: नहीं
1: पेट के
0: पेट में,
1: नीचे,
0: ऊपर नीचे या बीच में,
3: मतलब
0: किस तरह?
3: नीचे नहीं ऊपर की साइड, बिल्कुल
0: ऊपर की साइड,
1: डायफ्राम के नीचे,
3: ये पसलियों के पास समझ लीजिए एक तरह से। हाँ
0: पसलियों के साइड, सीधी तरफ को।
3: सीधी तरफ को, और एकदम सब है बिल्कुल कांप गया, बहुत तेज गुल्ला उठा, मुझे मतलब 15 मिनट तक तो बहुत बुरा लगा, मतलब 2 मिनट तो शुरुआती बहुत खराब थे, और उसके बाद भी हल्का हल्का दर्द सा महसूस हुआ मुझे पूरे दिन।
0: आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए पेट का,
3: अच्छा,
0: है ना, क्योंकि राइट साइड अपर एब्डोमेन में आप बता रहे हैं तो पित्त की थैली में पथरी होने की संभावनाएं रहती हैं अगर किसी को दर्द हुआ है वहां पे तो।
3: लेकिन बहुत ज्यादा पेन हुआ। अच्छा, एक बार और ऐसा ही डॉक्टर साहब पहले हो चुका है?
0: तो क्योंकि 2 बार हो गया है तो जरूर तरीके से करा लीजिए अल्ट्रासाउंड एक पेट का,
3: अच्छा, तो
0: उसमें
3: अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का करा
0: पूरे
3: लेता।
0: पेट का करा लीजिए, इससे पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम है।
3: अच्छा, हार्निया की संभावना तो नहीं है साहब?
0: नहीं, पेट के सीधी तरफ अगर लाइक आपकी कुछ ऑपरेशन पहले तो नहीं हुआ आपको? हाँ,
3: हमारा कोई ऑपरेशन नहीं
0: तो
3: हुआ था।
0: हर्निया होने की संभावना है, बहुत कम है उस एरिया में।
3: अच्छा, आज लीवर का हो सकता है साहब क्या?
0: सब मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा आप बता रहे हो, पित्त की थैली में स्टोन होने की संभावनाएं लग रही हैं।
3: अच्छा,

0: जो भी है
1: इसका
0: जब
1: मतलब पहले हम वो अल्ट्रासाउंड ही
0: एक
1: करा लें तभी
0: अल्ट्रासाउंड,
1: क्लियर
0: एक
1: हो पाएगा।
0: अल्ट्रासाउंड कराइए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा।
2: जी जी
1: ठीक है, धन्यवाद सर।
2: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। तरह तरह के संदेह मन में होते हैं लोगों के और समस्याएं होती रहती हैं, फिर भी इंतज़ार करते हैं। बेहतर यह है डॉक्टर साहब, अगर किसी समस्या की शुरुआत हो रही है तभी जांच करा के और पता लगाया जाए,
0: किसी भी बीमारी का साहब जितनी जल्दी इलाज करा लो उतना अच्छा है,
2: उतना अच्छा है।
0: देर करके कोई फायदा नहीं है।
2: जी इंतज़ार करने में नुकसान ही होता
0: नुकसान
2: है। चलते चलते क्या खास बात हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के माध्यम से, क्या टिप्स हैं आपकी हमारे श्रोताओं के लिए, विशेष तौर से हाइटस हार्निया के विषय में?
0: इसमें साहब टिप्स यही है कि अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है काफ़ी लंबे समय पे, तो सिर्फ गैस की गोली को दिनचर्या ना बना लें, एक बार एंडोस्कोपी कराएं, और अगर ये बीमारी आती है तो ऑपरेशन से डरें बिल्कुल नहीं,
2: बिल्कुल
0: है ना। छोटे छोटे 5 कट्स लगते हैं जो आपको ऑपरेशन के 1-2 महीने के बाद दिखेंगे भी नहीं,
2: अच्छा
0: और कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं है, आप ऑपरेशन कराएं और ज़िंदगी भर के लिए फ्री हो जाएं। हमारे यहाँ गंगाशील में आयुष्मान माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट इनका ट्रीटमेंट होता है।
2: यानी सरकार ने भी
0: आयुष्मान,
2: व्यवस्था की हुई
0: सरकार
2: है
0: ने व्यवस्था की हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट।
2: जी, अब आवश्यकता इस बात की है कि हमारे श्रोता कम जागरूक होंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता करें।
0: बिल्कुल, डरने लोग अक्सर डर जाते हैं कि हमारा ऑपरेशन होगा, क्योंकि ऑपरेशन का नाम ही सब बुरा है,
2: ऑपरेशन के नाम से
0: नाम ही
2: डर लगता
0: बुरा
2: है।
0: है।
2: जी
0: बट कुछ बीमारियां हैं जो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होती,
2: जी
0: और किसी भी बीमारी को लंबे समय तक शरीर में रखना उचित नहीं है।
2: उचित नहीं है। हाइटस हार्निया ऑपरेशन से पूरी तरह ठीक हो जाता है,
0: जी।
2: ये हमारा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
0: जी
2: डॉक्टर अतुल कुमार राठौड़ जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हाइटस हार्निया के विषय में बहुत विस्तार से जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, उनकी शंकाओं के समाधान किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी, गंगाशील हॉस्पिटल, दीनदयालपुरम, बरेली।
4: महिला रोगियों के संपूर्ण आधुनिकतम इलाज का उच्चीकृत किफायती अस्पताल
3: गंगाशील हॉस्पिटल, गर्भाशय का बिना चीरे का ऑपरेशन डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी द्वारा
4: आधुनिक विधि से बहुत कम खर्च में
3: गंगाशील हॉस्पिटल। गर्भावस्था में दौरे पड़ना, पीलिया और गर्भावस्था में खून कटना, सांस फूलना, दमा और दिल की मरीज, गर्भवती स्त्रियों के इलाज की विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी महेश्वरी,
4: गंगाशील हॉस्पिटल, दीनदयालपुरम, बरेली।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा फोन नंबर 9927544444।
5: अभी आप सुन रहे थे रेडियो हेल्पलाइन, विशेषज्ञ थे डॉक्टर अतुल कुमार राठौर। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनील हर्ष का काव्य पाठ।
1: प्रस्तुत है मेरी पहली रचना। कविता का शीर्षक है रावण नहीं मरा करते खुद को।

जाना, लक्ष्मण नहीं डिगा करते हैं, रावण नहीं मरा करते हैं, खुद को राम बताने वालों।

ढूंढ रहे फिर भी मंदिर में हम अपने भगवान को, भौतिक समृद्धि की खातिर नैतिक मूल्य चुकाए, भौतिक समृद्धि की खातिर नैतिक मूल्य चुकाए, द्वंद फंद छल छंद से आखिर हम भी

ढूंढ रहे फिर भी मंदिर में हम अपने भगवान को। एक गीतिका से पहले एक मुक्तक पढ़ते हैं, तदुपरांत एक गीतिका। भले यूरोप की नजरों में एक बाजार हो भारत, भले यूरोप की नजरों में एक बाजार हो भारत, समझता विश्व को आया मगर परिवार है भारत। मिलोगे आत्मवत फिर तो ये माँ आंचल सरीखा है, दुश्मन के लिए पर विष भरी तलवार है भारत, दुश्मन के लिए पर विष भरी तलवार है भारत। मित्रों, गीत का समर्पित है कि आपके अंदर भरा जो

द्रवित जो बस वही भगवान है। दीन दुखियों हित द्रवित जो

0: है उसी से तो घटी व्यक्तित्व की पहचान, व्यक्तित्व की पहचान।
1: अभी आप सुन रहे थे सुनील हर्ष का काव्य पाठ। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: This is Akashwani. On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force, we now bring you a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishist Seva Medal, Ati Vishist Seva Medal.
1: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश।
2: नमस्कार, भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ। वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमय यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है। सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है। आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है। हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं। इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है। देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म द पिवोटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस, डेमोंस्ट्रेटिंग आवर कैपेबिलिटी and capacity to defend our sovereignty. Through major milestones this year, including exercise Vayu Shakti, various bilateral exercises, Dronathon, and the ongoing historic multilateral air exercise Tarang Shakti, we are actively testing our combat readiness and rapidly absorbing niche technologies into our operational plans. Apni marak shamta ke alawa, Bharatiya Vayu Sena ne sankat ke samay mein hamesha aage badhkar देश और मानवता की सेवा की है। चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है। हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है। नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक

0: हमारी वायुसेना ने HADR मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है, जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियां इसी संकल्प का प्रमाण है। आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर फंक्शनिंग। आवर विजन इज टू बिल्ड एन AI ऑगमेंटेड फोर्स वेयर टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स अस बट ह्यूमंस रिमेन इन कमांड। आवर रोल्स एंड टास्क नेचुरली टेक अस बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फियर एज स्पेस इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द एयर डोमेन। आवर डीपनिंग पार्टनरशिप विद इसरो इंक्लूडिंग आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू गगनयान मिशन रिफ्लेक्ट्स दिस कमिटमेंट। These capabilities form an integral part of our vision for 2047. Technology is only an enabler. The foundation of decisive victory has always been in the unity of purpose. Modern wars are not won by the strength of a single service, but through the combined strength of the entire nation. For Indian Air Force, jointness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed, and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. इस अवसर पर मैं अपने आदरणीय एयर वेटरन्स को नमन करता हूं। आपकी दूरदृष्टि, समर्पण और मार्गदर्शी नेतृत्व ने ही इस सशक्त भारतीय वायुसेना की नींव रखी है, जो आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। साथ ही मैं अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर अपनी प्राणों की आहुति देकर तिरंगे का मान रखा। आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज दैट थ्रू एवरी चैलेंज द अनवेवरिंग सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ऑफ आर फेलो सिटीजन्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द इंडियन एयरफोर्स। देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और आप सभी का आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में हम समस्त वायु योद्धा भारतीय वायुसेना अचूक अभेद एवं सटीक की अवधारणा का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र की रक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे तथा अपने आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम पर अडिग रहेंगे। जय हिंद।
1: ऑन द ईव ऑफ द 94th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स यू वर लिसनिंग टू अ मैसेज बाय द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: अभी आप भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण की गाई कबीर वाणी। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं ये कबीर वाणी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की गायी कबीरवाणी। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब आइए सुनते हैं आज दिनांक 7 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा आयोजित मैराथन दौड़ की रेडियो रिपोर्ट।

एड्स से डरना नहीं, जागरूक रहना है। एड्स के खिलाफ हथियार जागरूकता और जिम्मेदारी अपार। अफवाह नहीं, जानकारी फैलाएं, एड्स को दूर भगाएं। एड्स को हराना है, समाज को जागरूक बनाना है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज दिनांक 7 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में भारत सरकार के यूथ फेस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय मैराथन रेड रन उत्तर प्रदेश का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 17 से 25 वर्ष आयु के दो वर्गों में 5 किलोमीटर महिला एवं पुरुष तथा 10 किलोमीटर महिला एवं पुरुष वर्गों की ये मैराथन दौड़ सम्पन्न हुई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और

0: चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले धावक धाविकाओं को मुख्य अतिथि वाइस चांसलर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ प्रोफेसर राजकुमार मित्तल द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। उपस्थित अतिथियों को संबोधित करते हुए आप हैं मशहूर एथलीट और डिप्टी कमिश्नर राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश आदरणीय अंजलि चौरसिया।
1: यहाँ आप सभी का यह उत्साह देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। एक एथलीट और एक सिविल सेवक होने के नाते मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि फिटनेस सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक जीवन का अनुशासन है। जब आप सुबह सुबह ट्रैक पर उतरते हैं तो आप सिर्फ एक रेस की तैयारी नहीं कर रहे होते, बल्कि जीवन की हर चुनौती से लड़ने के लिए खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। ये इवेंट केवल एक दौड़ नहीं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। जैसे एक स्वस्थ शरीर के लिए नियमित मेहनत और संयम जरूरी है, वैसे ही स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए HIV एड्स के प्रति जागरूकता और सावधानी बेहद जरूरी है। आप सभी युवा इस देश की सबसे बड़ी ऊर्जा हैं। यदि आप फिट हैं और जागरूक हैं तो आप पूरे समाज की दिशा बदल सकते हैं। खेल हमें कभी हार ना मानना सिखाता है, हमेशा आगे बढ़ना सिखाता है। ऐसे ही एड्स के प्रति जागरूक होना और उसके प्रति शिक्षित होना हम लोगों को भविष्य के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा मानव संसाधन देगा। आज आप जब ट्रैक पर दौड़े हैं तो पूरी ताकत और जोश के साथ दौड़े हैं। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी जीत यह है कि आप स्वास्थ्य और जागरूकता के संदेश को आपने अपनाया और उसको अमल किया। आप सभी को रेड रन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: युवाओं को स्वस्थ रहने तथा खेल के प्रति अभिरुचि बढ़ाने का संदेश दिया मुख्य अतिथि वाइस चांसलर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने।
2: रेड रन उत्तर प्रदेश 2026 का आज एक बहुत ऐतिहासिक और सफल आयोजन हुआ, इसके लिए मैं सभी उत्तर प्रदेश के और यहां पर आए सभी अधिकारियों और विश्वविद्यालय से हमारे सभी जो साथी इसके आयोजन में रहे उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं सभी खिलाड़ियों को और विद्यार्थियों को जिन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और आज जो मेडल जिनको मिले उनको भी बधाई। और आपने ये दिखा दिया कि यदि हम इकट्ठे रहकर कोई काम करें तो निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। और इस रेड रन जो हुआ इसके माध्यम से यही संदेश पूरे समाज को जाता है कि हम समाज के साथ हैं और इकट्ठे मिलकर जो आज भारत की जो भी समस्याएं हैं, हम भारत विकसित भारत की कल्पना 2047 तक करते हैं। ऐसे भारत में जब तक हमारे युवा साथी स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक पूरी पॉपुलेशन हमारी जनसंख्या स्वस्थ नहीं होगी, उनको कोई बीमारियां नहीं होंगी, तब तक इस उद्देश्य को प्राप्त करना भी मुश्किल है। एक हेल्दी बॉडी में ही हम हेल्दी विचार रहेंगे, इसलिए शरीर को एक स्वस्थ रखना जरूरी है और खेलों के माध्यम से, दौड़ के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी जो हमारे विद्यार्थीगण यहाँ पर उपस्थित हैं उनको यही कहूँगा कि अपने खान पान पर जोर दें, एक अच्छा खान पान रखें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, दौड़ें, खेल कूद में भागीदारी सुनिश्चित करें। जो हम अननेसेसरी इंटरनेट पे हमारा जो समय लगता है वो समय खेल के मैदान में लगाएं, उसका थोड़ा सा भी प्रतिशत, मुझे लगता है 10-15-20 आधा घंटा भी हम लगा देंगे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम अच्छे विचार हमारे आएंगे। तो अपने अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे मित्रों की कंपनी रखें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब एक जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका चरित्र है वो निखर कर आएगा और ऐसे चरित्र और स्वास्थ्य के माध्यम से ही हम एक विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। मैं पुनः सभी विजेताओं को बधाई देता हूं। धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे आज दिनांक 7 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा आयोजित मैराथन दौड़ की रेडियो रिपोर्ट। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट से। सबसे पहले आइए सुनते हैं गजेंद्र वर्मा की आवाज में टेबल नंबर 21 फिल्म का ये गीत।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: और अब आइए सुनते हैं गजनी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं जावेद अली और सोनू निगम की।

0: चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में

0: तिरंगा शान से लहराएं।
1: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
0: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी, और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे, और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे, और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी, और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।

0: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
1: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
2: Is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
1: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
3: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
4: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
5: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
4: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए

0: वरिष्ठ भारतीय और ईएफटीए के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
1: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आइची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का।

कोई प्यार की देखे जादूगरी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में कोहिनूर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अनारकली फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी की बोल, सी रामचंद्र की धुन।

0: नाएं संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दीवानापन है।
1: ये मेरा दीवानापन है, यहूदी फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। अभी आप सुन रहे थे, शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
2: एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे है।
2: संगीत के साधक।
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचना।

आप सुन रहे थे नूरजहां फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रोशन का संगीत था। इस गाने के पहले आपने सुना था मुगले आजम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे और नौशाद की

मधुमती फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों सखियों की आवाजों में। शब्दकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे सलील चौधरी। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पियाए।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

आज जबकि संगीत तकरीबन चोर में बदलता जा रहा है, गजलों का वो सुनहरा दौर, गजलों की वो रोशन महफिलें बार बार याद आती हैं। हमारे जहन में अक्सर ये सवाल उठता है, वो शम्मा क्यों मध्यम पड़ गई,

दरअसल ये जमाना तेज रफ्तार हो गया। लोगों के भीतर वो सब्र नहीं रहा जो गजल सुनने के लिए लाजमी है। आइए आज के इन लम्हों को यादगार बना दें अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर की याद से।

0: जो हम
1: अख्तरी बाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में हुआ था। बचपन से संगीत की तरफ रुझान था, परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन चाचा ने साथ दिया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सरंगी के उस्ताद ईमान खां और अता मोहम्मद खां से संगीत की शुरुआती तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बचपन की एक बहुत ही यादगार घटना है। उन दिनों अख्तरी बाई सही सुर नहीं लगा पाती थीं। उनके गुरु ने इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वो सीख नहीं पाईं तो डांट दिया। उसके बाद बेगम अख्तर रोने लगीं और कहा, हमसे नहीं बनता नाना जी, मैं गाना नहीं सीख पाऊंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बिटिया इतने में हार मान लिए? नहीं बिट्टू, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ। उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए।

80 के दशक में जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो बेगम अख्तर के सामने कोलकाता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने अपनी फिल्मों में अभिनय की पेशकश की। इस तरह सन 1933 में बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद मशहूर निर्देशक महबूब खान ने उन्हें सन 1942 में आई अपनी फिल्म रोटी की नायिका बनाया। इस फिल्म में चंद्रमोहन और शेख मुख्तार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था और फिल्म के तकरीबन 6 गीत बेगम अख्तर की आवाज में रिकॉर्ड किए।

सन 1945 में जब बेगम अख्तर की शोहरत अपने शबाब पर थी, तब उन्होंने इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया और अख्तरी बाई फैजाबादी बेगम अख्तर बन गईं। वो गायकी छोड़कर पर्दा नशी हो गईं। उन दिनों में वो बीमार रहने लगीं। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी की एक वजह ये है कि वो अपने पहले प्यार यानी गायकी से दूर हैं और उनके शौहर ने उन्हें प्रेरित किया। सन 1949 में एक बार फिर वो गायकी की दुनिया में लौटी और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाना गाने लगी।

रेडियो में गाना शुरू हुआ तो बेगम अख्तर संगीत सम्मेलनों में जाने लगी। इस बीच फिल्मों में भी वापसी हुई। महान संगीतकार मदन मोहन के कहने पर बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी का एक गाना गाया।

सन 1954 में उन्होंने फिल्म एहसान का एक गाना गाया। सन 1958 में सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में भी उन्होंने गाना गाया।

बेगम अख्तर मदन मोहन को तब से जानती थीं, जब वो लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। बेगम अख्तर दिल्ली आई हुई थीं और उन्होंने रेडियो पर मदन मोहन का एक गाना सुना। फिर आधी रात को बेगम अख्तर ने मदन मोहन को फोन किया और कहा कि वही गाना सुनाओ, कदर जानी ना। मदन मोहन ने फोन पर ही गजलों की रानी बेगम अख्तर को यह गाना सुनाया और करीब 22 मिनट तक मदन मोहन फोन पर ट्रंक कॉल के जमाने में बार बार ये गाना सुनवाते रहे और बेगम अख्तर सुनती रहीं।

0: बेगम अख्तर की सबसे बड़ी खासियत है उनका क्लासिकी गजलों को गाना और क्लासिकी अंदाज में गाना। गजलों की शुद्ध दुनिया को उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, नए साजों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। बेगम अख्तर गजलों की दुनिया की एक क्लासिकी आवाज के तौर पर हमेशा बहुत इज्जत के साथ याद की जाती हैं।
1: बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां मुसीकी ने भी नई कदरों की कदर की है। मैं नएपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहां तक आज के फनकार और मुसीकार नएपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

0: भारत सरकार ने बेगम अख्तर को सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1972 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला और सन 1975 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: गजल में एक ऐसी कैफियत है और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान, यानी सुन के तबीयत खुश हो जाती है। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा कि अगर वो उस अंदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाया करते थे, तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए उसको।

बेगम अख्तर की आवाज का जादू अपने शबाब पर था। उन्होंने गजलों की दुनिया को रोशन कर रखा था, पर तभी 30 अक्टूबर 1974 को अचानक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गजलों की दुनिया की एक शम्मा हमेशा के लिए बुझ गई, लेकिन शुक्रगुजार हैं उन रिकॉर्ड्स का जिनके जरिए बेगम अख्तर की आवाज को हमने संजो कर रखा।

ये था बेगम अख्तर की याद में हमारा विशेष कार्यक्रम। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे तीन देवियां फिल्म का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में इस कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम दो बदन।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड, और इस कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इस कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम दिल्ली का ठग।

0: इस कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं हम दोनों फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

इस गीत के साथ ही ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग रागेश्वरी में सिद्धनाथ मिश्र का संतूर वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग रागेश्वरी में सिद्धनाथ मिश्र का संतूर वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आप सुनेंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार शाम 6:30 से 7:20 तक कृषि कार्यक्रम, प्रायोजक नमामि गंगे एवं राज्य स्वच्छ जलापूर्ति उत्तर प्रदेश। कृषि एवं किसान कल्याण

0: मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार शाम 6:50 से 7:20 तक।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
4: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
5: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
4: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि

0: connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The 2026 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to French chemist Henry B. Kagan and Japanese chemist Kenzo Sohai for their pioneering discoveries of nonlinear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis. The Royal Swedish Academy of Sciences today said Kagan and Sohai solved a century-old mystery of how molecular asymmetry or homochirality can emerge spontaneously in nature. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 और 25 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी और अंतिम सभा समाप्त होती है। कल प्रातः 5:52 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।